कहते हैं कि जैसी हमारी सुबह होती है ना, वैसा ही हमारा पूरा दिन गुजरता है। अगर आज सुबह आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। अपने घर की बालकनी या छत पर बेजुबान पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी रख दीजिए। जब आप काम पर निकलें तो रास्ते में मिलने वाले हर उस इंसान को मुस्कुरा कर देखें जो आपकी सुबह को बेहतर बनाने में मदद करता है, चाहे वो आपके घर अखबार देने वाला हो या दूध वाला। और हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, आज का दिन मेरा है और मैं अपनी पूरी मेहनत से इसे बेहतरीन बनाऊंगा, क्योंकि जिंदगी क्या है किसी को खबर नहीं।

तो जनाब, आज की भोर आपके लिए क्या संदेश लाई है? जी हाँ, ये संदेश लाई है कि किरणें चाहे सूरज की हों या आशा की, जब भी निकलती हैं वो अंधकार को मिटा ही देती हैं। तो अपनी उम्मीदों को जगाए रखिए, रोशन करते रहिए। जी हाँ, और ऊर्जावान बने रहिए।

जिंदगी के लम्हों को और भी खूबसूरत बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल रूपा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको आज के खास कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6:10 पर होगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे आपके लिए लेकर आएंगी बबीता शर्मा। 6:44 से आपके पास आएगा कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आप सुन सकेंगे बालकांड का भाग 119। छः बजकर 55 से आपके साथ रहेंगे संस्कृत में समाचार, हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात, जिसमें एक बार फिर से आपके साथ होंगी बबीता शर्मा। 7:30 से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक दिल लगी। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 9:05 पर म्यूजिक दिल लगी में आपके साथ होंगी कुसुमलता।

एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे आपके लिए लेकर आएंगी बबीता शर्मा। 6 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management, dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: Vietnamese Prime Minister Le Minh Hanh has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hanh asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister also directed authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The tragic incident occurred yesterday when a speedboat carrying 36 people, including four crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Root Ngoi Islet. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including two women, were dead. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. The U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshm Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed Strait of Hormuz until further notice. The announcement came after the IRGC claimed it fired a warning shot and stopped the vessel. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate action. Legal action will be initiated. Consumer complaints allege the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. The food regulator's notices also raise concerns over incorrect, invalid or non-existent license numbers and food business entities allegedly operating under names different from those registered with FS.

रविवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

और हमारे आपके जीवन में, प्रत्येक के जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ होता है वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया है।

कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।

शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है।

वक्त हुआ है 6:31 और 32 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज साथ हूँ मैं आपके एम बबिता।

ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य उपान्त्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रविवार की खूबसूरत सुबह में स्वागत है आप सभी का। हर सवेरा हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, मुस्कुराने का, अपनों के साथ खूबसूरत पल बिताने का। तो आइए इसी सोच के साथ चलते हैं गोल्ड सुप्रभात के इस सुरीले सफर पर। और आज साथ हूं मैं आपके बबिता। नमस्कार, सुप्रभात।
1: जहाँ

जहाँ तक घटा चले मौसम की अगर बात करें तो बादलों की लुका छिपी पूरा दिन बनी रहेगी और कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। और हाँ, जब भी आप घर से बाहर निकले ना तो छाता और पीने के पानी की बोतल जरूर साथ रखें। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वक्त हुआ है 7:16 और 27 सेकेंड और आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात।

0: वक्त तो चला है 7:21:50। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और अब शर्मिली फिल्म का ये गीत आपकी नजर।
1: ओ मेरी ओ

बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकती है। जैसे पानी को हमेशा उबाल कर पिए, ताजा और गर्म भोजन को ही प्राथमिकता दें, खुले में बिकने वाले कटे फल या स्ट्रीट फूड से बचे, भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी जुकाम के जोखिम से बच पाए। ये भी ध्यान रखें कि मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। हाथों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता और अच्छी आदतें इस सुहाने मौसम का आनंद भी बनाए रखेंगी और आपकी सेहत भी।

0: रात कितनी भी काली हो, सवेरा होकर रहता है और उम्मीद की हर किरण से जग रोशन होता है। इसी खूबसूरत सोच और ताजगी भरे पैगाम के साथ आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम आज सवेरे, और मैं हूं आपके साथ जया भारती। श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ इतिहास का एक नया पन्ना और प्रेरणा की एक नई कहानी लेकर आती है। आज तारीख है 12 जुलाई और आज का यह सवेरा कई मायनों में बेहद खास है। चाहे वह कला की दुनिया हो, खेल का मैदान हो या फिर समाज को बदलने का हौसला। तो चलिए अपने रेडियो की आवाज को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर। मेरे साथ है आज सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार जया, एंड संडे मॉर्निंग ग्रीटिंग्स टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ट्यून्ड इन। सो गेट योर कप ऑफ टी और कॉफी एंड सेटल डाउन एज वी गेट रेडी फॉर अनदर एडिशन ऑफ आज सवेरे। फॉर स्टार्टर्स जया, लेट्स बिगिन विद सम न्यूज़ हेडलाइंस।
0: बिल्कुल, और हेडलाइन शुरू करने से पहले मैं अपने श्रोताओं को बता दें कि देश और दुनिया के समाचार के साथ हम उन्हें वो सारी जानकारी देंगे जिनका है उनसे सरोकार। महानगर की खबरें होंगी, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र होगा और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। तो अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore in Ahmedabad today. During the program, the minister will also kickstart an ambitious mass afforestation campaign for his Gandhinagar Lok Sabha constituency. We have a report from our correspondent.
2: Union Home Minister Amit Shah has undertaken an ambitious initiative to transform his Gandhinagar Lok Sabha constituency into one of the greenest constituency in the country through a massive plantation drive. As part of this campaign to combat climate change, over 1.25 crore saplings are being planted across the constituency this year. Under this drive, the Forest Department will plant nearly 60 lakh native saplings across Ahmedabad and Gandhinagar districts using the Van Kavach model, that is Gujarat's indigenous version of the Miyawaki technique designed for rapid ecological restoration. Tomorrow, on the last day of his visit, Mr. Shah will inaugurate the 11th Interpol Digital Forensic Expert Group meeting and the first International Investigator Crime Competition at National Forensic Science University in Gandhinagar. He will also visit Dehgaon to open a newly constructed APMC market and attend Amrit Mahotsav celebrations. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: और आज वियतनाम से काफी दुखद घटना आई है सुभद्रा।
1: यस आई नो,
0: एक हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन होंग ने फूक वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई है। यह हादसा कल उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूक वॉक द्वीप के पास रट नगोआई ट्वीप के निकट अचानक ऊंची लहर की चपेट में आ गई और नाव पलट गई। चालक दल के 4 सदस्य भी सवार थे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A report.
3: U.S. military said these strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in

0: और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो शुरुआत चेन्नई से करें सुभद्रा।
1: यस जया, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द ओरोविल पुलिस हैव सीज 35 किलोग्राम ऑफ मेथामफेटामीन वैल्यूड एट अबाउट रुपीज 1 लाख एंड अरेस्टेड 6 पीपल इन कनेक्शन विद द रैकेट। द इंटर स्टेट स्मगलिंग इंसिडेंट्स वर कनेक्टेड टू तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड कर्नाटक। अ टीम फ्रॉम ओरोविल नियर विलुपुरम पुदुचेरी बॉर्डर एक्टेड ऑन अ टिप ऑफ रिलेटिंग टू इलिसिट ड्रग कंजम्पशन एंड रेड a guest house and seized 10 grams of meth and arrested 5 people in the guest house. On inquiry, they revealed that they received the contraband from a person from Thiruvannamalai district. On interrogation, he exposed an international link operating out of Karnataka. We have another news from Chennai. 4 workers were electrocuted and another was injured while they were drilling a bore well at a private resort near Mamallapuram on Saturday. The Tamil Nadu Electricity Board and State Police have launched an investigation on the incident. Preliminary inquiries indicated that the accident happened after the drilling equipment hit a high-tension overhead power line. The resort management had engaged a private contractor to drill a deeper bore well after the existing borewell had failed to provide sufficient water due to the declined water level in the area.
0: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। तो दिल्ली रेलवे के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस वे का ठहराव अब दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यह सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। दिल्ली से एक और अच्छी खबर है कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखा

0: रोजगार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं के माध्यम से राजधानी के इतिहास का शोध आधारित और प्रामाणिक रूप से नई पीढ़ी और दुनिया भर के शोधकर्ताओं तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। युवाओं से जुड़ी एक और खबर है कि युवाओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली में जन से गण तक नाम का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराना है।
1: गेटिंग टू बेंगलुरु नाउ, जया, द चेयरमैन ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन Dr. Ashok Dalwai has emphasized on the significance of vetiver grass in reducing the ill effects of soil erosion, global warming and other environmental challenges. He was speaking at the Karnataka Regional Conference held at IAT Auditorium in Bengaluru, organized by the Institution of Agricultural Technologies, IAT, and India Vetiver Foundation, IVF, along with CSIR, Central Institute for Medicinal and Aromatic Plants, Bengaluru. In his speech, Dr. Dalwai emphasized on promoting vetiver grass, which he said is eco-friendly, cost-effective biological solution for soil and water conservation. Speaking on this occasion, the Vice President of India Vetiver Foundation, P.N. Subramanian, informed that an international vetiver conference will be organized in Chennai in the coming months. Over 300 participants who are vetiver growers, oil extractors, weavers, handicraft developers and innovators took part in the conference. Sanjaya.
0: और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में उप नगरीय रेल यात्रियों को आज असुविधा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सेंट्रल और हार्बर लाइन की रेल सेवाएं रखरखाव और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए लंबे समय तक बंद रहेंगी। रेलवे अधिकारियों ने आवश्यक मरम्मत और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए यह बंद निर्धारित की है। रखरखाव की अवधि के दौरान कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी जबकि अन्य संशोधित समय सारणी के अनुसार चलेंगी। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के समय की जाँच अवश्य करें और जहाँ संभव हो वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करें। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार।
1: नो, आई हैव सम मोर। I have Hyderabad and also have another one from Bengaluru. In the DACCS Maharaja Trophy T20 cricket match organized by Karnataka State Cricket Association, the Shivamogga Yodhas team has marched into the finals. They recorded a convincing 4-wicket victory over Coastal Kings Mangaluru in Bengaluru today to claim the final clash with Bengaluru Blasters. The Mangaluru team was restricted to 143 for the loss of 8 wickets by disciplined bowling led by Shivamogga Dhanush Gowda, who took 4 wickets, giving away 21 runs. Moving to Hyderabad now, friends. Mera Yuva Bharat, My Bharat, under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, organized an interaction between the Governor of Telangana and the winners of the Viksit Vibrant Villages Program, VVVP, and Viksit Bharat Youth Parliament, VVYP, at Lok Bhavan, Hyderabad. A total of 18 participants, including 15 participants from the Viksit Vibrant Villages Program and 3 participants from the Viksit Bharat Youth Parliament, participated in the interaction with the Governor Shiv Pratap Shukla. During the program, the Governor Shiv Pratap Shukla inaugurated the My Bharat Intensive Registration and Awareness Drive by unveiling the campaign poster. He appealed to the youth of Telangana to register on the My Bharat platform and actively participate in its programs and initiatives aimed at youth empowerment and nation building. The participants of the Viksit Vibrant Villages Program and Viksit Bharat Youth Parliament shared their experiences and learnings with the Governor. Congratulating them on their achievements, the Governor encouraged the young participants to continue contributing towards the vision of Viksit Bharat at 2047 through leadership, volunteerism and community service.
0: तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और अब रुक करते हैं मेट्रो के मौसम का और जानते हैं कि वहाँ क्या हाल है। तो मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में लगातार कई दिनों की मानसूनी बारिश के बाद शनिवार को गर्म और उमस भरा मौसम रहा, लेकिन आज मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और शहर में आज का न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: And Jaya, to the rest of the country now, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees Celsius. Maximum will be around 39 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will be between a minimum of 25 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius. And Jaya, you know, in order to give meaning to our life, we all need this ingredient called hope. Mm-hmm. So this driving force, of course, keeps us alive, makes us alive and keeps us always motivated. Today is the International Day of Hope, celebrated annually. This day recognizes hope as a powerful force for transforming lives, communities and our world. Initiated by global mental health leaders and now formally recognized by the United Nations, the International Day of Hope is a call to action to make hope a public health priority and to recognize it as a protective factor against vices we find in the society, violence, addiction, and so many other like suicides and stuff. In times of challenges, hope can be a guiding principle to help inspire action for a better world.
0: बिल्कुल सुभद्रा, और इसीलिए हम हमेशा कार्यक्रम में ये जरूर कहते हैं कि हर सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है.
1: Start with hope all the time. Yes. Now let's get back to history now.
0: जी, तो जानते हैं कि आज यानी 12 जुलाई का दिन इतिहास के झरोखे से हमारे लिए क्या खास यादें लेकर आए हैं। श्रोताओं, आज का दिन भारत और दुनिया के इतिहास के लिए कई ऐतिहासिक मोड़ों का गवाह रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की। आज ही के दिन 1799 में शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर विजय प्राप्त की थी और यह सिख साम्राज्य की स्थापना की दिशा में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था।
1: एंड 1674 छत्रपति शिवाजी साइंस अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द ईस्ट इंडिया कंपनी।
0: वर्ष 2001 में भारत और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के रिश्तों में आज का दिन एक नई मिठास लेकर आया था, जब अगरतला और ढाका के बीच ऐतिहासिक मैत्री बस सेवा की शुरुआत हुई थी।
1: एंड 1823 इंडियाज फर्स्ट स्टीमशिप द डायना वाज लॉन्च। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन किडरपोर नियर कोलकाता। एंड 1862 द मेडल ऑफ ऑनर अवार्डेड फॉर बैटल फील्ड ब्रेवरी वाज क्रिएटेड फॉर द यूएस आर्मी। एंड इन This is in 1979. Kiribati Independence Day marks this day when Gilbert Islands became the independent nation of Kiribati, straddling the international date line and equator, making it the first country to see both the first sunrise and the last sunset of any given day. And which year do you have? Anything else you have?
0: आपने भी 1862 की बात की थी, तो हम
1: मेडल ऑफ ऑनर, यस,
0: हम 1962 यानी कि 1962 चलते हैं, जहां संगीत की दुनिया के दीवानों के लिए यह दिन बेहद यादगार रहा था।
1: टॉकिंग अबाउट द रोलिंग स्टोन्स,
0: जी
1: ऑफ कोर्स माय फेवरेट बैंड, हाउ डिड यू गेट,
0: मशहूर रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स,
1: yes,
0: ने लंदन के मार्की क्लब में अपना पहला आधिकारिक ऑफिशियल कंसर्ट,
1: यस ऑफ कोर्स, हाउ डिड यू मिस दैट, आई एम सो ग्लैड यू टुक दैट अप, ओके, द ब्रिटिश रॉक बैंड, टुडे इज द डे देयर वेरी फर्स्ट कॉन्सर्ट। Yes, and 1998, France win their first World Cup title, defeating defending champions Brazil 3-0.
0: जी, और जब हम आज 1998 में फ्रांस के पहली बार फुटबॉल विश्व विजेता बनने की ऐतिहासिक याद साझा कर रहे हैं, तो बता दें कि वर्तमान में भी फ्रांस का जादू अभी विश्व कप में सिर चढ़कर बोल रहा है।
1: Of course.
0: तो अब आइए याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं,
1: यस, 1932 जॉर्ज ईस्टमैन, इन्वेंटर ऑफ द कोडाक कैमरा, वाज बोर्न इन वॉटरविल, न्यूयॉर्क। ही फाउंडेड द ईस्टमैन कोडाक कंपनी एंड पॉपुलराइज्ड फोटोग्राफी। एंड टुडे इज आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑस्कर हैमरस्टीन, द the 2nd, 1895, he was born this day. American director, producer, songwriter, well known for several musicals. And also J.R., the poet who wrote his poetry in green ink, as he considered green to be his color of hope. Renowned Chilean poet, diplomat, and Nobel Prize winner, Pablo Neruda was born this day in 1904. And also, let me talk about one more guy. He's in, for all the music lovers. 2013, Amar Bose, the vision.

0: की दुनिया के महाबली दारा सिंह जी को हमेशा के लिए खो दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। पंजाब के अमृतसर में जन्मे दारा सिंह सिर्फ एक पहलवान नहीं बल्कि अजय योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में करीब 500 से अधिक पेशेवर कुश्तियां लड़ी और इतिहास गवाह है कि वे अपने पूरे जीवन में एक भी कुश्ती नहीं हारे। खेल के बाद जब उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो इतिहास रच दिया। दारा सिंह जी का जिक्र हो और रामानंद सागर की रामायण की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब वे पर्दे पर गदा लेकर खड़े होते थे तो लगता था कि त्रेता युग का जो दृश्य है ना, वो साक्षात कलयुग में उतर आया है। तो आइए उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं रामायण सीरियल की का वह संवाद जब उन्होंने लंका की सभा में रावण के सामने अपना परिचय दिया था।
1: इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज, इतनी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं, अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है।
0: हनुमान बने दारा सिंह के ऐसे संवाद सुनते ही उस दौर में घरों में टीवी के सामने बैठे लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ लिया करते थे। और दारा सिंह जी को साधारण और सादगी भरा जीवन पसंद था। वे भले ही हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी सादगी, उनकी फौलादी काया और वो मनमोहन मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।
2: एंड ऑफ कोर्स जया, ही वाज नॉट ओनली एन एक्टर रेसलर, ही वाज आल्सो द फर्स्ट स्पोक्सपर्सन टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा एंड इन द ईयर 2018 WWE इंडक्टेड इनटू हिम इन द हॉल ऑफ फेम। Okay, now let's move on to another birth anniversary of Eric Carr, drummer for the American rock band Kiss, an excellent drummer who stayed with the band from the beginning till his tragic death at age 41 in the year 1991 due to cancer. Carr was a self-taught drummer and also played guitar, drums, bass and piano.

0: श्रोताओं, जब हम हिंदी सिनेमा के खलनायकों की बात करते हैं तो एक चेहरा हमारे जहन में उभरता है जिसकी सिर्फ आंखों की एक तिरछी नजर और आवाज का भारीपन ही दर्शकों की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुपहले पर्दे के बेताज बादशाह प्राण साहब की। आज उनकी पुण्यतिथि है। सिनेमा के इतिहास में विलन तो बहुत आए लेकिन प्राण जैसा विलन न कभी हुआ और न कभी होगा। प्राण साहब सिर्फ डायलॉग से नहीं डराते थे बल्कि वे अपने हर किरदार के लिए एक नया लुक, नई चाल और नया तकिया कलाम इजाद करते थे।
1: अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर, हमारा कुछ किस्मत ही कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत?
2: तुम्हारा नाम शेर खान है?
1: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता।
0: भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें साल 2013 में दिया गया। कला और सिनेमा के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए भारत सरकार ने 2001 में प्राण साहब को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
3: And friends, today we also remember pianist, singer, songwriter Christine McVie, a British-American band Fleetwood Mac, who started out with a jazz outfit called Chicken Shack. With Mac, she had several hit albums and enjoyed great success. Sadly, we lost this lady 4 years ago at the age of 79. She was born this day, 1943.

आज का यह सवेरा भारतीय सिनेमा के इतिहास के उस चमकीले सितारे को भी नमन करता है जिसने पर्दे पर आम इंसान के सुख दुख और उसकी सामाजिक सच्चाई को बेहद संजीदगी से उतारा। आज हिंदी और बांग्ला सिनेमा के महानतम फिल्मकार बिमल रॉय की जयंती है। बिमल दास सिर्फ फिल्में नहीं बनाते थे बल्कि वे कैमरे के जरिए समाज को आईना दिखाते थे। उनकी फिल्म दो बीघा जमीन ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था और यह आज भी सिनेमा के छात्रों के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह काम करती है। इसी फिल्म में मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में गाया गया यह गीत देश की मिट्टी से जुड़ाव और किसानों के संघर्ष को बयां करता है।

और आज जब हम अपनी सिनेमाई विरासत को याद कर रहे हैं तो इसमें एक ऐसा नाम गूंजता है जिसने 60 के दशक में कामयाबी की एक नई इबारत लिखी। आज हिंदी सिनेमा के सबसे सफल सितारों में से एक राजेंद्र कुमार की पुण्यतिथि है। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार जी की फिल्मों के गाने आज भी रेडियो की जान है। मोहम्मद रफी की आवाज में गाया हुआ फिल्म सूरज का यह गीत भला किसने नहीं सुना होगा।

0: सिनेमा में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था।
1: Kannada actor Nagaraju Shiva Puttaswamy, popularly known by his screen name Shiva Rajkumar, was born this day in 1961. Besides being an actor, he's also a producer, playback singer, television presenter.
0: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का यह सफरनामा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा ताजा रहेगी। चलते चलते सुनिए ये खूबसूरत लाइन कि सूरज की किरणें हर सुबह को एक नया पैगाम लाती है, उठो और छू लो आसमान, मंजिलों के रास्ते तुम्हें बुलाती है।
1: Stay tuned for coming up now with Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा

0: और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists.

वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसलिए हालातों को पीछे छोड़ वक्त के साथ चलिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। जी हाँ, हमें भी वक्त के साथ चलना है और वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का। तो आइए चलते हैं आज के सुरीले सफर पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और आज साथ हूँ मैं आपके पविता। नमस्कार।

वक्त हुआ है 8:54। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। आप कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आपकी जो आंखें हैं ना, वो सब कुछ बयां कर देती है। इसलिए आंखों को व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा गया है। लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, उन्हें समझने के लिए आंखों की भाषा की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आंखों के हाव भाव पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आंखें ही हैं। अगर झुक जाए तो हया, और कभी स्वीकृति को दर्शाती है, तो वहीं अगर उठ जाए तो आपके व्यक्तित्व की गहराई के साथ कई बार आपकी नाराजगी को भी जता देती हैं। क्यों, मानते हैं ना आप?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ विचार विमर्श किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फु कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फु कोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिन तक मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इंग्लैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का मैच अभी जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम 1-1 गोल से बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
1: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. Bharat New Zealand ki yahi का एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मिसकल दिल्ली के सफर पर अब मैं हूं आपके साथ कुसुम। ये रविवार का दिन, बेफिक्र सी सुबह और जिंदगी की आंख में चली तो फुर्सत भी है और मौसम भी। आइए जिंदगी को जी भर के जिया जाए। फिजा फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आपके लिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल लगी, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ होप, यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि आशा एक बेहद मजबूत शक्ति है, और ये हमारे ही भीतर है कहीं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बदलाव लाने और सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है ना कि जिंदगी का सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हम सबकी जिंदगी का सफर लगभग ऐसा ही है, चलते चलते कई बार बहुत अनिश्चित सा मोड आ जाता है जिंदगी के सफर में, और तब हमारी समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसा भी होता है कि कई बार तो हम हिम्मत भी हारने लग जाते हैं, तो ऐसे समय पर जो दिल के किसी कोने से चुपके से आवाज आती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वही आशा की शक्ति है, और इस शक्ति को हमें हर हालत में संभाल कर रखना है। आशा हमारे मन के भीतर किसी कश्ती की तरह तैरती रहती है। जब भी हालात डराने लगते हैं तो वो कश्ती चुपके से कहती है, मैं इधर हूँ, धैर्य रखो, यकीनन सब अच्छा होगा, यकीनन सब अच्छा होगा। इसी विश्वास के साथ हम जिंदगी के सफर में आगे बढ़ें। और जहाँ तक आशा की बात है, तो फिल्मी गीतों में एक गीत है बहुत प्यारा सा, रोजा फिल्म से। आइए सुनते हैं कि आशा क्या कहती है।

साथियों, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की। ये भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज, विशेषकर दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना है। तो है ना कमाल की योजना। फिलहाल मुझे याद आ रहा है उपकार फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए सुने।

बहुत खास है हमारे देश की धरती, और हमारे देश की धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, और हर एक दिन कुछ खास होता है। आज एक और खास दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय रेत और धूल के तूफान से निपटने का दिवस। प्रकृति में सबसे भयावह दृश्यों में से ये एक है, रेत और धूल के काले बादल जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। ये उत्तरी चीन से लेकर उप सहारा अफ्रीका तक हर जगह तबाही मचा देते हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को रेत और धूल भरी आंधी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य है रेत और धूल के तूफान से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और प्रभावित देशों की मदद करना। तो आइए हम सभी मिलकर इस ओर जागरूक हों और मिलकर कदम बढ़ाएं। नया दौर फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: इस गीत के साथ ही मैं उसका दिल लगी यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वतन का राग से।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है गणेश घोष। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नई दिल्ली से SM मित्तल और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे।

कालखंड अपने सामाजिक और राजनैतिक ताने बाने से, अपने तेवर और तासीर से अपनी भाषा चुनता है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का समय एक ऐसा आंदोलित समय था जिसने अपने लिए एक विशेष भाषा गढ़ी। इस भाषा में तलवार सी चमक थी, दुश्मन के लिए हुंकार थी, मातृभूमि के लिए त्याग था और जनमानस के लिए जागरण का मंत्र। शब्द जो सुनाई देते हैं उनका वास्तविक घर मनुष्य का अंतर्मन होता है। यहीं से वो समय का स्वभाव बदलते हैं, यहीं से वो इतिहास की दिशा बदलते हैं। एक ऐसे ही शब्द साधक थे बाबा कांशीराम, एक ऐसे जनकवि जिनकी कविता केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं थी, वो स्वाधीनता की आकांक्षा, स्वाभिमान की चेतना और राष्ट्र प्रेम का स्पंदन थी। वो एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और कवि थे जिनका संपूर्ण जीवन भारत को समर्पित था। बाबा कांशीराम का जन्म 11 जुलाई सन 1882 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के डाडासीबा के गांव पदियाली में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित लखनूराम और माताजी का नाम रेवती देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह सरस्वती देवी के साथ संपन्न हुआ। शिक्षा के साथ साथ कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो बचपन से ही चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लोकगीत गाया करते, नाटक तथा रामलीला में भाग लिया करते थे। जब बालक कांशीराम मात्र 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और एक वर्ष बाद ही उनकी माताजी भी चल बसीं। इसके बाद वो अपने बड़े पिताजी के साथ रहने लगे। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नूरपुर के एक वकील के पास मुंशी की नौकरी कर ली, लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगा। उन दिनों पूरे भारत में स्वाधीनता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस वातावरण का प्रभाव उनके कोमल मन पर भी पड़ने लगा।

किशोरावस्था से ही कांशीराम को आंदोलन, स्वराज और क्रांति जैसे शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे थे। सन 1902 में वो अपने एक मित्र के साथ लाहौर चले गए। यहाँ वो कांगड़ा के उन युवकों से मिले जो रोजगार के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ के साहूकार उन युवकों का खूब शोषण कर रहे थे। इस बात से वो अत्यधिक व्यथित हो गए। यही वो घटनाएं थीं जिन्होंने उनके भीतर क्रांति के बीज बोए, स्वाधीनता संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की। बाबा कांशीराम यूं तो अपनी आजीविका कमाने के लिए लाहौर आए थे, लेकिन तत्कालीन घटनाओं ने उन्हें स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं के संपर्क में ला दिया। उन दिनों जिन स्वाधीनता सेनानियों से उनकी भेंट हुई, उनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, सूफी रमजाहिद शाह, सरदार अजित सिंह आदि। इन देशभक्तों ने बाबा कांशीराम को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। लाहौर में रहते हुए उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। ये वो समय था जब पंजाब की फिजाओं में एक गीत अंगारा बनके तैर रहा था, पगड़ी संभाल जट्टा। इस गीत के रचयिता बांके दयाल और महान देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद तथा लालचंद फलक से जब उनकी भेंट हुई, तब उनके भीतर का सोया हुआ कवि और संगीतकार जाग उठा। उन्होंने तय कर लिया कि अब स्वर केवल राग रागिनियों के लिए नहीं, बल्कि आजादी की जंग के लिए साधे जाएंगे। उन्होंने पहाड़ी भाषा में देशभक्ति की मर्मस्पर्शी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। इसी बीच सन 1905 में कांगड़ा में तेज भूकंप आया, भारी क्षति हुई। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां राहत कार्य आरंभ हुआ। बाबा कांशीराम भी इसमें सम्मिलित हुए। इसी समय लाला जी से उनका संपर्क बढ़ा। सन 1908 में लाला हरदयाल के सानिध्य ने उनके भीतर देश को आजाद कराने की छटपटाहट को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। सन 1911 में वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का दिल्ली दरबार देखने पहुंचे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की योजनाएं पक रही थीं। जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया तो ब्रिटिश खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया। बाबा कांशीराम के कई साथी बिखर गए, वो खुद भी पुलिस की नजर में आ गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कुछ समय तक भूमिगत भी रहे। अंग्रेजों के बढ़ते दमन चक्र ने उनकी लेखनी को और भी धारदार बनाया। सन 1917 में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो बहुत भारी मन से वो अपने गांव पदियाली लौट आए। यहाँ उन्होंने अपने बड़े पिता की दुकान में हिस्सेदारी कर ली। दुकानदारी के काम में सामान लेने के लिए उन्हें अक्सर होशियारपुर और अमृतसर की मंडियों के चक्कर काटने पड़ते थे। 13 अप्रैल सन 1919 को वो दुकानदारी के काम से अमृतसर में ही थे जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बौछार करवा दी। चारों ओर चीख पुकार, खून से सनी माटी और जान बचाने के लिए कुएं में कूदते लोग। इस घटना ने बाबा कांशीराम को स्तब्ध कर दिया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बाबा कांशीराम के भीतर देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने का संकल्प कर लिया और गांधी जी के सच्चे अनुयायी बन गए। अब बाबा कांशीराम एक जलती हुई मशाल बन चुके थे। वो गांव गांव जाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहाड़ी गीतों के माध्यम से क्रांति का बीज बो रहे थे। अंग्रेज सरकार भांप गई कि ये कोई साधारण कवि नहीं है। सन 1920 में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन इस जेल यात्रा ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। जेल से छूटते ही वो दुगने वेग से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सन 1921 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर धर्मशाला और गुरदासपुर की जेल भेज दिया गया। यहां उन्होंने 2 साल तक अमानवीय यातनाएं सही। उन दिनों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी मांडले जेल से धर्मशाला जेल लाया गया था। सन 1922 में लाला लाजपत राय को भी लाहौर से धर्मशाला जेल में लाकर बंद कर दिया गया था। इस तरह अनेक स्वाधीनता सेनानी इस जेल में बंद थे, जिनका बहुत गहरा प्रभाव बाबा कांशीराम पर पड़ा। अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक कविताएं लिखीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1931 में जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई तो बाबा कांशीराम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आजीवन काला वस्त्र धारण कर ब्रिटिश सरकार से जूझने का व्रत ले लिया। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने केवल काला वस्त्र ही धारण किया तथा मृत्यु के बाद उनके कफन का रंग भी काला ही था। आजीवन काला वस्त्र धारण करने के कारण वो स्याहपोश जर्नैल कहलाए। एक सभा में उनके स्वाधीनता आंदोलन संबंधी गीतों और कविताओं को सुनकर सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने सुरीले कंठ से कविताएं गा गाकर स्वतंत्रता का संदेश कांगड़ा के समस्त पहाड़ी क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और अनेक बार गिरफ्तार हुए। वो गांधी जी के ऐसे अनुयायी थे कि उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि से विभूषित किया गया। वो लगातार गांव गांव घूमते रहे, पहाड़ी भाषा में आजादी के गीत और कविताएं सुनाकर लोगों को जगाते रहे। आजादी के परवानों के लिए उन्होंने लिखा, भारत माँ जो आजाद कराने ताई, मावा दे पुत्र चढ़े फांसियां, हंस दे आजादी दे नारे लाई। वो स्वयं को केवल एक भारतवासी की दृष्टि से ही देखते थे। जाति धर्म का कोई अर्थ उनके लिए नहीं था। एक भारतीय होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तभी तो उन्होंने कहा, मैं कुण कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा, भारत माँ है मेरी माता, ओ जंजीरा जकड़िए, ओ अंग्रेजा पकड़िए, उसनु आजाद कराना ए। उनकी कविताओं में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के स्वर सुनाई देते हैं। वो कहते हैं, कांशीराम जिंद जवानी, जिंद बाज दी लाणी, इक्को बार जमणा, देश बड़ा है कौम बड़ी है, जिंद अमानत उस देश दी, कुलजा मत्था टेकी कने, इनकलाब बुलाना। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं, 8 कहानियां और 1 उपन्यास लिखा। इस तरह उन्होंने अपनी लेखनी से हमेशा देश, धर्म और राष्ट्रीयता का स्वर बुलंद किया। आजादी का स्वप्न लिए हुए ही 15 अक्टूबर सन 1943 को उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका वो सपना जैसे हवाओं में तैरता रहा। आओ रली मिली सारे, हिंद जो आजाद कराइए, नरक बनी गया देश असंदा, फिर तो सुरत बनाइए। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल

रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल है। विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लैक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लैक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा कल उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू क्वोक द्वीप के पास रट नगुआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान बावी के कल रात पूर्वी चीन के तटीय शहर ताइझोउ में आने की खबर है। इस बीच लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इससे पहले तूफान बावी जापान के दक्षिण साकिशिमा द्वीप से टकराया और उत्तरी ताइवान के पास से गुजरा। हालांकि यह अब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ तेज वर्षा का खतरा बना हुआ है। सरकारी मीडिया के अनुसार झेजियांग प्रांत से 17 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फूजियान प्रांत और बीजिंग से 1-1 लाख से अधिक तथा शंघाई से करीब 34,000 लोगों को भी निकाला गया है। जापान और ताइवान में अब तक इस तूफान से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। हालांकि बावी के असर से दक्षिण पश्चिम मानसून के और सक्रिय होने के कारण फिलीपींस में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। ताइवान के अग्निशमन विभाग के अनुसार 113 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश लोग तेज हवाओं के दौरान मोटरसाइकिल या साइकिल से गिरने, फिसलने या किसी वस्तु की चपेट में आने से घायल हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: वेनेजुएला

0: में पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 4,300 से अधिक हो गई है। 24 जून को ला ग्वाइरा में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। ये एक सदी से अधिक समय में वेनेजुएला के सबसे भीषण भूकंप माने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सप्ताह 13 लाख लोगों की मदद के लिए 29,60,00,000 अमरीकी डॉलर की राहत राशि जुटाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को ला ग्वाइरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लापता बच्चों की माओं से भी मुलाकात की। उधर दक्षिण पूर्वी स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में भीषण जंगल की आग को काबू में करने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी और सैन्य कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। ये आग हाल के दशकों में देश की सबसे घातक जंगल की आग में से एक बन गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी जागृति, खेल खबरों में सबसे पहले चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। तो फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टिनिया म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफिनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और जागृति, अगर बात करें क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो जागृति, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। तूफान बावी पूर्वी चीन के तटीय इलाके से टकराया। लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम नरेश मागो विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. Typhoon Bavi makes landfall in eastern China, 2 million people evacuated. Argentina beats Switzerland to set up FIFA World Cup semi-final clash with England. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and has departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was a community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सेड प्राइम मिनिस्टर मोदीज थ्री कंट्री विजिट डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट आउटकम्स एडवांसिंग कोऑपरेशन अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एजुकेशन इनोवेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस अमंग अदर्स. After concluding his three-nation visit, Prime Minister has arrived in New Delhi. Vietnamese Prime Minister Le Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by the Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine the causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar accidents in the future. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to provide assistance to the victims and their families. The tragic incident occurred yesterday when the speedboat carrying 36 people, including 4 crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Rutnungwai Islet. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including 2 women, died. The Indian Embassy in Vietnam has released the list of the deceased provided by the Vietnamese authorities. Of the 15 deceased, 10 are from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A report.
4: U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshem Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed the Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The force said no ships will be allowed to transit through the strategic waterway until what it called U.S. interference in the region ends. The announcement came after the IRGC claimed it fired a warning shot and stopped the vessel. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said that negotiations with Iran will continue despite tensions. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
2: This is Akashvani. You're listening to World News. We bring you top international news and updates from around the globe. Typhoon Bavi made landfall late last night in the coastal city of Taizhou in eastern China, where nearly 2 million people were evacuated. The typhoon had earlier hit Japan's southern Tsukishima island chain and brushed past northern Taiwan. State media said more than 1.7 million people had been evacuated across Zhejiang province, along with more than 100,000 each from neighboring Fujian province and Beijing, and some 34,000 from Shanghai. In the Philippines, 17 people have died due to heavy rains brought by an enhanced southwest monsoon and worsened by Bavi's impact. Taiwan's fire department said 113 people had been injured. The death toll from the earthquakes that devastated Venezuela last month has risen to more than 4,300. The June 24 twin quakes in La Guaira, the first of a 7.2 magnitude shock, followed seconds later by another reaching a magnitude of 7.5, were the biggest the country has seen in more than a century. President of the Venezuelan National Assembly, Jorge Rodriguez, said that over 16,000 people were injured in the devastating earthquake. Currently, thousands of volunteers remain deployed across the country to ensure the welfare of the affected population. Moving on to sports, in the FIFA World Cup, defending champions Argentina will face England in the semi-finals after beating Switzerland 3-1 in Kansas City, Missouri this morning. Julian Alvarez, Alexis McAllister and Lautaro Martinez scored for Argentina. Earlier, England defeated Norway 2-1 in a quarter-final match at Miami Stadium, Florida. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. In tennis, 21-year-old Linda Noskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final at Centre Court, London last night. Noskova became the third Czech woman in 4 years to win the grass court major after Markita Vondrousova in 2023 and Barbora Krejcikova in 2024. After winning the title, Linda said it's never easy to get to the last point.
5: Ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Noskova.
6: It feels incredible, and all these matches have been so tough, so physically or mentally tough, especially, you know, it's never easy to get the last point. I think we made a history.
2: The stage is also set for the men's singles final tonight, where world number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev. And now before we close, here are the highlights of the bulletin. Prime Minister Narendra Modi arrives in New Delhi after concluding his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. Typhoon Bavi makes landfall in eastern China, 2 million people evacuated. And Argentina beat Switzerland to set up FIFA World Cup semi-final clash with England. And that is the end of this World News Bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर दिल का मेल बॉक्स आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। साथियों, इस कार्यक्रम में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हमने जिसकी पसंद पर लिया है वो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फारिया फरहीन और ताहिरा की पसंद का। आइए सुनते हैं फिल्म मिलन का ये गीत।

बहुत सारे संदेश आप सभी साथियों के हम तक पहुंच रहे हैं। पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का संदेश हम तक पहुंचा है। जिला खरगांव सनावद मध्य प्रदेश से माष्टक अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप का संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जो संदेश है ये है बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांव का। और किसी भी गीत पर अपना नाम शामिल करने के लिए लिख रहे हैं ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। ये अगला संदेश है स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से लिखने वाली मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक। अगला संदेश शामिल करते हैं फरुखाबाद से साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया का ये संदेश है। इसके बाद हमें अनारकली बाजार जगराव से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीप कमल होत्रा और

अव्या मल्होत्रा जयपाल यादव का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से लिखने वाले धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार लिखते हैं, मैसेज जरूर शामिल करें। तो देखिए हमने आपका ये संदेश शामिल कर लिया है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है बड़ा बम खंडवा चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू हैं। सुनना चाहते हैं फिल्म सूरज का गीत, हम जरूर सुनाएंगे। इस गीत के बाद अगला गीत आपका ही पसंद का होगा। और फिल्म धनवान का गीत सुनना चाहते हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। लेकिन हम शामिल कर रहे हैं अगला जो संदेश है, ये लिखने वाले हैं प्रेम पूर्वक आदाब, आपको भी आदाब, कुमार हिड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइनिया हसन, नाजिया। और ये संदेश हम तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और नवीन भाटिया जी मोती नगर दिल्ली से नमस्कार भेज रहे हैं। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? जरूर अच्छे होंगे। अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म फकीरा से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं। और ये जो पसंद है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की, तो चलिए इन्हीं की पसंद में हम सभी अपनी पसंद को शामिल करते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा।
3: ध्यान रखना बेटा।
4: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
4: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
4: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स, और दिल के मेल बॉक्स में आप सबके जो संदेश हैं बड़े प्यारे प्यारे से रखे हुए हैं, मैं शामिल कर रही हूँ। ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम का संदेश हम तक पहुँचा है। पद्मा टाकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमें संदेश भेजते हैं। मजनू कटिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का भी संदेश हम तक पहुँचा है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी हमें संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता भी हमें सुन रहे हैं, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जो संदेश है किनका है, ये है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार का पहुंचा है हम तक। कमलेश मुकुल, सचिन, दीपांशु फिल्म सूरज का गीत,

सुनना चाहते हैं, ये दिल्ली से हैं, तो हम ज़रूर सुनवाएंगे ये गीत, लेकिन अभी आप थोड़ा सा करें इंतज़ार। ये संदेश हम तक पहुंचा ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाले, अर्चना ताई गोंडाले, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि। ये संदेश है नलेश्वर नगर नरविल महाराज से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर का, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहेकर का। और अगला संदेश है सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग का, जो हमें सहारनपुर चंद्रनगर से भेजते हैं। फारूक अली का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और इनके अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र से तेजस्विनी चौहान, भाई इंदुरकर, बेबी शौर्या, सुरेश, अंकिता, अनिकेत चौहान, किवलेगांव पुणे से अंकिता कामले, सैदापुरकर, विजय कामले, सैदापुरकर, बेबी शौर्या, सुरेश कामले। और अगले संदेश की ओर हम बढ़ते हैं। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये किनका संदेश है, चलिए अभी हम पहले ये गीत सुनवा देते हैं, इसके बाद हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। ये गीत है सूरज फिल्म से, इसकी फरमाइश है बड़ा बम खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे और परिवार के सदस्य, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु।

और अब मैं आपके अगले संदेशों की ओर बढ़ती हूँ। बबलू कश्यप, सिराज मिथुन, अशरफ अली, नवाब अहमद, सलीम अख्तर का ये संदेश हम तक पहुँचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अबान और समस्त अब्बासी परिवार ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये हमें संदेश भेजते हैं। अगला संदेश है सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर का, डाबकी चौक अकोला से। और ये संदेश हमें भेज रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, इल्जा नायब और लड्डू, रघुवीर नगर दिल्ली से। अगला संदेश हमें भेज रहे हैं, ये फिर से आप दो दो बार संदेश भेजते हैं तो जिसमें कहीं मुश्किल हो

आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का। और ये संदेश हमें भेजा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्यंद भूषण संस्कृति पौरुष का वाइट फील्ड बेंगलुरु से। अगला संदेश के लिए हम बढ़ते हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना का, और साथ में है तुलसी मस्किन। शाहदरा से हमें ये संदेश पहुंचा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य ये संदेश भेजते हैं। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन का भी संदेश हम तक पहुंचाया। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। और ये है विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम गुड़िया, मोताला महाराज से हमें ये संदेश भेजते हैं। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, वायाल कुमार, प्रतिमेश कुमारी, प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख का। अब हम अगला गीत आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है आया सावन झूम के फिल्म का। ये फरमाइश आप सबकी है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान की पसंद का ये।

अब जल्दी से हम आपके संदेशों को शामिल कर लेते हैं, नहीं तो आपको शिकायत रहेगी। तो ये संदेश हम तक पहुंचा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का। किसी भी गीत में ये नाम शामिल करने के लिए कह रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से ये संदेश आया है और ये संदेश है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो का, जनकपुरी सहारनपुर से। ये संदेश है राम राम कुसुम जी, लिख रहे हैं उग्रसेन यादव और शकुंतला यादव, गरिमा नई दिल्ली से। अगला संदेश हम शामिल करते हैं संदीप मकर का। ज्योति मकर हैं साथ में, मन्नत मकर, भारत मकर और साथ में परिवार के सदस्य हैं। ये भी सूरज फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो वो हम सुनवा चुके हैं। और शेगांव बुढ़लाडा महाराष्ट्र से ये संदेश आया है संतोष काले, तेजस काले, लोकेश काले का। और हमारे पास ये भी एक संदेश है अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक का, पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया का भी संदेश हम तक पहुंचा। गाजियाबाद से ब्रजेश कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, मोनू सोनू सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आपके लिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू कोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले चार दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his six-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi had visited Indonesia from the 6th to the 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both the countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The visit to New Zealand was the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. Bharat New Zealand ki yahi vaaka ek nayi yatra par nikalne ke liye taiyar hai. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन सकते हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आज की मेहमान में आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक ऐसी शख्सियत जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, साहित्यकार है, वो है जयंती रंगनाथन, जो लंबे समय से पत्रकारिता करती रही हैं और साथ ही साथ लिखती रही हैं कहानियां, उपन्यास, कविताएं। ये सारी जो उनकी रचनाएं हैं उनके पाठकों में बहुत लोकप्रिय रही और वो हम कहें अगर कि वो अनुभव का तो एक खजाना है उनके पास तो गलत नहीं होगा। तो आज की जो ये मुलाकात है बहुत मज़ेदार रहेगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे जयंती रंगनाथन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत जयंती जी गोल्ड के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, क्या कहूँ, सब सुनने वालों को ढेर सारा प्यार।
0: वाह जयंती जी, मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगी यादों के गलियारों में और मुंबई शहर में जहां से आपने करियर की शुरुआत की, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: बिल्कुल, पर मुंबई से पहले मैं आपको भिलाई ले जाना चाहूंगी।
0: हाँ,
1: ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत खूबसूरत सा शहर है जहां मेरी पैदाइश हुई, जहां मैं पली बड़ी। भिलाई स्टील प्लांट में मेरे अप्पा काम करते थे। मैं अप्पा कह रही हूँ तो सब सुनने वालों को पता लग ही गया होगा कि मैं दक्षिण भारती हूँ, अप्पा और अम्मा कहते हैं। बचपन बड़ा खुशहाल सा था, बड़े मजे मजे में हम लोगों की जिंदगी बीती। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो घर में खुशियां तो थी लेकिन पैसे थोड़े कम थे, तो हमारी माँ ने एक तोड़ निकाला था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुंबई और अब दिल्ली के तार वहीं से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो तार ये जुड़ा हुआ है कि बचपन में जब सब घूमने जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, हम जा नहीं पाते थे चारों भाई बहन, तो हमारी अम्मा कहती थी कि इसको इस तरह से मनाओ घर में रहते हुए कि तुम्हें लगे कि ये तुम लोगों की सबसे मजेदार छुट्टियां हैं। तो वो क्या करती थी, हम सबको कहती थी कि तुम लोग कुछ कलर पेंसिल ले आओ, कागज ले आओ, जिसको जो मन है करो। मुझे याद है मैं छठवीं में थी और उस साल हमारी अम्मा ने हम लोगों को कुछ सफेद कागज लाके दिया और कहा कि चलो तुम लोग बैठ के इस पे लिखो, जो मन की बातें हैं लिखो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे घर में पढ़ने का मतलब एक तरह से कहूं कि भयंकर सा रिवाज है। घर में और कोई काम हो न हो लेकिन पढ़ने में तो इतने उस्ताद रहे हैं हमारे अम्मा अप्पा और घर के हर सदस्य कि हम सबको ये एक बीमारी की तरह आदत लग गई है। बिल्कुल।
0: हाँ, और किताबें तो अपनी यात्रा खुद ही करवाती
1: हैं। बिल्कुल, और घर में हिंदी की, अंग्रेजी की, तमिल की, मलयालम की, हर भाषा की पत्रिका, उपन्यास, सब कुछ अम्मा अप्पा मंगवाते थे तो हम लोग सब पढ़ते थे। कहीं कोई हम लोगों को रोक टोक ही नहीं था पढ़ने में, बच्चों की सारी पत्रिकाएं आती थी उस वक्त। और प्लस गर्मी की छुट्टियों में जो लाइब्रेरीज होती थी किताबों की, वहां की सदस्यता लेके दे दी जाती थी कि आप लोग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, भाषा इंप्रूव करिए, फिर खूब चर्चा करिए आपस में। तो हम सब जो है बहुत कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। और अभी जैसे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो है एक दौलत थी हमारे पास।
0: मुझे तो यही लग रहा है कि आपके पास तो बहुत बड़ा धन था।
1: जी,
0: का धन,
1: और इतना पढ़ते थे। तो उस गर्मी की छुट्टी में जब माँ ने कहा कि कुछ लिखो तो मैंने एक कहानी लिख दी। मेरी पहली कहानी थी 6 महीने की चाबी, वो हमारे अप्पा ने किस्सा सुनाया था। तो अप्पा जो है व्हीलचेयर में रहते थे उन दिनों, तो किस्सा सुन के उन्होंने कहा बेटा लिखो तुम ये जयंती। मैं तीसरी घर की उनकी बेटी थी तो मैंने लिख के जब सुनाया शाम को तो अप्पा को बहुत अच्छा लगा, तो उनकी शाबाशी मिली। मैंने कहा चलो और लिखते हैं कहानी। तो इस तरह से मैं कहूंगी 10-11 साल की उम्र से मैंने कहानी लिखना शुरू किया। और अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने एक कहानी लिखी, धांसू के आंसू। तो एक कॉमेडी कहानी थी, कुछ मजेदार किरदार जो है,
0: शीर्षक सही लग रहा है कुछ।
1: तो उसके बाद अप्पा ने कहा ये कहानी बहुत मजेदार है, इसे तुम बिल्कुल रफ करके लोटपोट में भेजो। और मैं आपको क्या कहूँ, वो कहानी लोटपोट में छप गई और 40 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया। उससे पहले तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और मैं आपको बता रही हूँ साल 78 या 79 की बात है। बिल्कुल,
0: और आप 10-11 साल की,
1: बिल्कुल उतनी उम्र थी मेरी। और वो ऐसा था कि मेरे हाथ में जैसे एक तुरुप का पत्ता लग गया, कोई खजाना लग गया कि लिखो और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि पैसे की सच में कमी थी घर में, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही था, तो वो एक जरिया बन गया। लेकिन मन के किसी कोने में ये बात नहीं आई थी रश्मि जी कि लिखना आपका करियर बन सकता है, आपका पेशा बन सकता है, पता ही नहीं था उस
0: मतलब
1: छोटे शहर
0: शौक
1: में।
0: था बस एक।
1: तो मैं तो भाई कॉमर्स की छात्रा थी और ये था कि भाई कॉमर्स पढ़ के आप बैंक में नौकरी करेंगे और आपकी एक स्थायी नौकरी होगी, लिखेंगे शौकिया। तो जब मैंने बीकॉम कर लिया तो हमारी माँ ने तय किया, तब तक अप्पा का निधन हो चुका था, कि हम सब मुंबई जाएंगे क्योंकि मुंबई में दीदी की नौकरी लग गई थी।
0: अच्छा।
1: तो हम मुंबई गए और मैंने एमकॉम करना शुरू किया और उसके बाद बैंक में नौकरी मिल गई।
0: ये तो मतलब आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रही होंगी उस समय, बैंक के लिए भी बहुत एक
1: रश्मि जी कॉम्पिटिशन होता था। ज्यादा मैं कहूंगी कि हम लोगों को पता था कि निशाना कहाँ मारना है। वो हमारी माँ जो है, हम तीन बहनें और एक भाई, भाई छोटा, इस तरह तैयार किया था कि बचपन से वो हमें ये कहती थी कि तुम्हें जिंदगी में जो भी सपने पूरे करने हैं कोई ऊपर से राजकुमार उतर के पूरा नहीं करेगा,
0: अपने आप करना है।
1: आपको आपको जो भी मन है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जो भी संसार चाहिए वो आपको खुद जुटाना होगा और आपकी कमाई ही आपकी दौलत है। तो उन्होंने उस तरह से हमें ट्रेन किया, तो वो बात दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर गई। तो हम तीनों के सामने यही था कि जल्द से जल्द नौकरी करनी है, घर को सपोर्ट करना है और अपने लिए एक जिंदगी बनानी है।
0: देखिए माँ जब इस प्रकार से शिक्षा के हथियार आपके हाथों में दे देती है ना, तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं लेकिन इस प्रकार के जब आपकी शिक्षा हो तो फिर तो क्या मतलब, मुझे नहीं लगता किसी और भी मदद की भी जरूरत है।
1: बिल्कुल आप बहुत सही कह रही है। इसलिए जब भी मैं लड़कियों से मिलती हूँ, जब भी मैं इस तरह के किसी शिविर में जाती हूँ या लड़कियों को संबोधित करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आज की तारीख में पढ़ना और आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर लड़कियां जो है वो बहुत सुंदर संसार बनाती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और पति के लिए। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो आज से 30-40 साल पहले अम्मा ने कहा, हमारी अम्मा बड़ा अंग्रेजी में डायलॉग मारती थी कि मैरिज इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द लाइफ।

0: वो कहती थी राह चलते कोई मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जिए, कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके मत जिए।
1: जी
0: फिर वो भी कहती थी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तो उसमें फिर रहे मत, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। तो इस तरह की शिक्षा को लेके
1: जी
0: हम बहनें बड़ी हुई बिल्कुल।
1: हाँ
0: और वाकई में अम्मा की शुक्रगुजार हूँ कि जब बैंक की नौकरी मिलने के बाद मैंने एक बार एक अखबार में ऐड देखा और वहां ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया को पत्रकार चाहिए, तो मैंने कहा अम्मा मैं इसमें जाना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग जो जो मांग रहे हैं वो मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि लिखने का अनुभव होना चाहिए, देखिए इतनी मेरी कहानियां और इतने लेख छपे। मैं लिखा करती थी कॉलेज के दिनों में और उसमें बहुत कहानियां छपी थी, पराग वराग सब में छपती थी। तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। अम्मा ने कहा ठीक है जो मर्जी है कर ले। मैंने जो है वो फॉर्म भर दिया और मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। रश्मि जी मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मैंने धर्मयुग ज्वाइन किया
1: वाह
0: और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे हाथ में क्या कारू का खजाना लग गया है।
1: जी, धर्मयुग ऐसी पत्रिका जो हम याद करते हैं, वो सुनहरा समय, वो साहित्य का मैं कहूँ जमावड़ा जिसे कहते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: जो कुछ बेहतर होना चाहिए वो सब कुछ था धर्मयुग में। इतनी सुंदर सुंदर कहानियां, मैंने बचपन में बहुत धर्मयुग पढ़ा
0: और
1: है।
0: कहानियों के अलावा जिस किस्म के लेख, साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका आप कह रही हैं और मैंने जिया है।
1: मुझे लगता है
0: हाँ
1: एक जो साहित्य की जो संस्थान होता है ना अपने आप में, वो था धर्मयुग।
0: बिल्कुल
1: और आप
0: बिल्कुल
1: बड़ी किस्मत वाली थी
0: मैं
1: कि
0: बहुत
1: आपने
0: बिल्कुल
1: वहीं से
0: मैं
1: शुरुआत
0: पीछे
1: की।
0: मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे धर्मवीर भारती जी के साथ काम करने का
1: जी
0: मौका मिला। 3 साल वो मेरे संपादक, उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था। तो फाइनल इंटरव्यू में जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो तुम नाम के आगे जयंती रंगनाथन लगाती हो तो सिर्फ ये ऐसी है कि तुम्हें तमिल वमिल बोलना आता भी है? तो मैंने कहा कि सर ना नन्ना वे पेशवे तमिल कलुंगो निकल एन ककड़वा कलुंगो। वो इतने जोर के ठठा के हंसे, बोले
1: पर
0: वाह लड़की तुम तो बोल लेती हो। मैंने कहा हाँ
1: इसका अर्थ
0: लगता
1: क्या था जो अभी आपने बोला, ये
0: हाँ
1: भी
0: मैंने
1: बताएं।
0: कहा कि मैं बहुत अच्छे से तमिल बोल लेती हूँ, आपको जो पूछना है
1: वाह क्या बात है, मुझे
0: पूछिए।
1: लगता है कि भारती जी समझ गए होंगे कि क्या कहा है जयंती जी ने।
0: अच्छा मैं वही कह रही हूँ, उस उम्र के उस पड़ाव में थी जब आपको पता नहीं था कि कितने बड़े लोग हैं क्या है। वो तो आप एक मासूमियत के साथ या एक उसके साथ आपको कह देते हैं। तो वो खूब हंसे और बाद में बोले इसने तो मेरे को तमिल में जवाब दे दिया।
1: वाह
0: तो मैंने उस तरह से अपने करियर की शुरुआत की और सच कहूं तो एक तरह से हिंदी ने मुझको अपनाया या मैंने हिंदी को अपनाया वो धर्मयुग में जाने के बाद ही हुआ। उससे पहले लिख लेती थी लेकिन जो संस्कार पड़े, जो प्रशिक्षण मिला वो, और मेरा शुद्धिकरण हुआ एक तरह से मैं कहूंगी, भाषा को लेके, समझ को लेके, साहित्य को लेके, वो सब वही हुआ। धर्मयुग से बड़ा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल
0: वहां रोज मतलब आप देखें पद्मा सचदेव जी आती थी, चित्रा जी आती थी और चुपके से मुझसे कहती थी एक लड्डू दे रही हूँ तुझे, दो दे रही हूँ चुपके से खा ले। मैं छोटी सी थी तो कंधे
1: हाँ
0: पे हाथ फेरते हुए, हर बड़ा साहित्यकार वहां आता था। कई बार फिल्म सितारे भी आ जाते थे जिनका इंटरव्यू हम करते थे, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते थे। रश्मि जी वो कितने बड़े कद के थे, वहां जाके समझ में आया।
1: बातें हो रही हैं धर्मयुग की और बातें हो रही हैं मुंबई की और फिल्मी सितारों की भी आपने बात की, और
0: जी
1: हमारा जो चैनल है गोल्ड इसमें तो हम लगातार गाने भी सुनते हैं, तो इस मौके पे आप बताएं कौन सा एक मीठा सा गीत हमारे सुनने वालों के लिए सुनवाना चाहती हैं।
0: एक गाना मेरे दिमाग में हमेशा हॉन्ट करता है, आवारा ए मेरे दिल जाने कहां है तेरी मंजिल।

0: बहुत मीठा ये गीत आपने चुना, और हम वापस आते हैं उसी मुकाम पर जहां हमने बातचीत छोड़ी थी कि आप बहुत सारे साहित्यकारों से मिलती थी और एक बहुत अच्छा सा माहौल था वहां पर, तो उस समय कुछ रोचक घटना।
1: देखिए, पत्रकारिता कहूँ या लेखन कहूँ, उन सब का मेरा बहुत पहला अनुभव था। जब मैंने ज्वाइन किया और मैं कई बार असाइनमेंट के लिए बाहर जाती थी और मैं बहुत दूर रहती थी पनवेल में, मेरा अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता था। ट्रेन नहीं थी डायरेक्ट वहां उन दिनों पनवेल से, तो मैं ट्रक मिला तो ट्रक, बस मिले तो बस, कोई भी गाड़ी मिले मानखुर स्टेशन, और फिर वहां से भागती हुई ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा रही हूँ और वहां अटेंड कर रही
0: हूँ। और का ऑफिस किधर?
1: बीटी स्टेशन के बिल्कुल सामने था, है ना, तो ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर कहते हैं उसे, बहुत आलीशान और बहुत शानदार ऑफिस, जैसे वहां जाओ तो बड़ी गर्व की अनुभूति होती थी कि आप धर्मयुग में काम करने जा रहे हो। तो एक बहुत मजेदार मैं वाक्य आपको सुनाना चाहूंगी। इस वाक्य का जो संबंध है, आज जितनी भी लड़कियां काम करने आ रही हैं वो भी एक तरह से इससे लेसन ले सकती हैं। तो क्या होता था, हम लोगों का टाइम जो था वो 9:30 से 5 बजे तक का था, और मैं दूर रहती थी तो मुझे भाग के जाना पड़ता था बिल्कुल, ताकि घर मैं 8:30-9 तक पहुंच जाऊं। तो हमारे जो एक सीनियर थे सुदीप जी, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम ले रही हूं, अब वो जो है नहीं, तो वो बहुत मसमोला पत्रकार थे, बहुत अच्छा जो है ट्रांसलेशन करते थे, सारा काम बहुत अच्छा करते थे। तो उनके साथ जो है मुझे कहा गया था कि आप उनके साथ काम करिए, तो रोज मैं 4 बजे उनके पास पेज लेके जाती थी कि सुदीप जी, वहां सर बोलने का रिवाज नहीं था, आप जो है पेज जरा देख लीजिए। तो वो पेज यूं उठा के फेंक देते थे, कहते थे कि तुम जो है सिर्फ 4 शीर्षक बना के लाइयो, 25 शीर्षक बना के लाओ, 25 शीर्षक से कम बात नहीं बनेगी, और एंट्रो भी 10 होनी चाहिए इसके, बना के आप लेके गए। और उसके बाद वो रखे रहते थे, बात करते रहते थे। और 5 बजे जब मैं जाती थी उनके पास तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, बिना देखे यूं कट लगा देते थे, कहते थे चलो और 25 बना के लाओ।
0: अच्छा,
1: तो ये जब लगातार होने लगा तो मैं जो है थोड़ी घबरा गई, मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी भाई, और फिर उसके बाद मैं अगर 8 बजे निकल रही हूँ तो इसका मतलब है 11 बजे घर पहुंच रही हूँ, मुझसे संभल नहीं रहा था, छोटी थी, और सच कहूँ तो पहली नौकरी थी, आदत नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। तो ये जब बहुत दिन तक ये चला और मैं मैनेज नहीं कर पाई तो मैं भारती जी के कमरे में चली गई। अच्छा। तो मैंने कहा भारती जी आप मुझे ना यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए कहीं और। तो बोले अरे क्या हो गया, तुम तो अच्छा काम कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर नहीं पाऊंगी। कहते कहते आंखों में आंसू आ गए, वो मुझे लगता है पहली बार और आखिरी बार मैं नौकरी में रोई होंगी, और इतने बड़े जो है बैठे हुए साहित्यकार मेरे बॉस, उनके सामने रोते हुए मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, और सुदीप जी जो है वो 4 बजे से मैं बैठी रहती हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ बताइए। वो खूब हंसे, फिर हंसे, और फिर उसके बाद हमारी एक और सीनियर थी वहाँ सुदर्शना जी, उनको बुलाया, उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जो है बिल्कुल
0: सुदर्शना द्विवेदी
1: बिल्कुल, तो उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जी बिल्कुल लौंडो लपाड़ों की तरह ले रहा है बच्ची से काम, बस आप जो है अब इसको अपने इसमें ले लीजिए, आप इसके साथ रहिए ठीक है। फिर बोले तुमको कहीं जाने वाने की

0: जरूरत नहीं है, ये तो मजाक कर रहा है, ये तो सिखाने का उसकी अदा है तो सुदीप की। बाद में जो है सुदीप जी निकले, बोले अरे भारती जी से डांट खिलवा दिया पर आप तो ऐसे ही करते हैं ना, मैं रोते रोते मैं भी चलो कॉफी पिलाता हूँ तुम्हें। फिर कॉफी पिलाते, बोले अरे लड़की झल्ली, झल्ली कहते थे, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। भाई पत्रकार है, पत्रकारों के लिए समय थोड़ी होता है, तुम ऐसे भागती रहोगी तो कैसे सीखोगी पत्रकारिता। हम लोग ऐसे नहीं, मतलब डेस्क पे पत्रकारिता नहीं होती, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के काम करना चाहिए, और जितना मैं कहता हूँ तुमसे उतना करोगी तो कल तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। पत्थर की लकीर की तरह मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, एकदम उन्होंने बहुत गुरु की तरह सब कुछ सिखाया। मैं मानती हूँ कि ये एक शुरू में ही आपको एक छोटा सा
1: रास्ता है,
0: तराशना चाहिए, छोटा सा चपत लगनी चाहिए आपको कि काम ऐसे होता है। पत्रकारिता जो है 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। तो हर लड़की जो आज इस फील्ड में आती है, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पत्रकारिता 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। कोई भी क्रिएटिव काम आप समय के इसमें बंद के आप नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते।
0: आपको जो है अपने आप को फैलाना होगा, बाहर जाना होगा, मिलना होगा। जब तक आप दुनिया नहीं जानेंगे, आप दुनिया को सच्चाई कैसे बताएंगे
1: जी, लिखोगे कैसे, कागज पर कैसे उतारोगे?
0: बिल्कुल, चाहे कहानी हो या आपका जर्नलिस्टिक कोई भी रिपोर्ट हो, आपको मैदान में उतरना होगा,
1: उतरना पड़ेगा।
0: तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा
1: जी,
0: और शुरू में ही मिल गया मुझे।
1: वाह, तो वो जो मूर्ति जो गढ़ी गई वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजबूत निखर कर आई।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: अब तो आप दिल्ली में है, फिर मुंबई से दिल्ली आना हुआ?
0: जी जी, तो फिर मुंबई में मैं धर्मयुग में 10 साल रही, 1 साल ट्रेनिंग के और 9 साल वहां रही। फिर उन दिनों जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल बड़ा बूम कर रहा था, तो मुझे भी लगा कि थोड़ा हाथ माजमाना चाहिए, उम्र का तकाजा भी था, तो मैंने सोनी टेलीविजन ज्वाइन कर लिया था 3 साल के लिए, बिल्कुल शुरुआती दिनों में। और काफी सीरियल्स लिखे वहाँ पे मैंने।
1: अच्छा।
0: मैं आइडिएशन डिपार्टमेंट में थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था।

0: हमारे श्रोता आज एक ऐसी शख्सियत के अनुभव सुन रहे हैं जिन्होंने, हम कहेंगे ना, कि रचनात्मकता के हर पहलू पर काम किया हुआ है। ये बहुत बड़ा खजाना है, मतलब जो निखर कर आता है ना, वो एक एसेंस निखर कर आता है, और वो आपकी कहानियों में, उपन्यास में जो आप लिखती हैं उसमें वो पता चलता है। जयंती जी, हम जब पढ़ते हैं तो ना लगता है कि अगला पेज क्या
1: अरे क्या
0: होगा,
1: बात है, ये
0: अगला
1: तो
0: पेज क्या होगा,
1: बहुत
0: वो मैं तो महसूस करती
1: शुक्रिया।
0: रही हूँ।
1: नहीं, ये
0: तो
1: अनुभव जो थे वो तो सच में मेरे लिए बहुत, क्या कहूँ, एक तरह से विटामिन का ही काम किया। तो ये जो किस्सा सुना रही हूँ सोनी टेलीविजन का, तो मैं वहां गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है एक रोमांटिक सीरियल लिखना है।
0: अच्छा।
1: 27 मिनट का सीरियल होता था, उसे मशी मशी जो भी आप बोलिए,
0: हाँ।
1: रोम कॉम कॉम तो नहीं था, बट बिल्कुल वैसा सीरियल था, रोमांस की कहानी। तो कहानी वहानी पे हमने जो है डिस्कस कर लिया। फिर मुझे जो है शुक्रवार के दिन ऐसी सुबह एक मीटिंग में मुझे वो पूरा उनको सुनाना था। तो वहां एग्जीक्यूटिव एडिटर, डायरेक्टर और बाकी दो तीन लोग आ गए और मुझसे कहा गया कि आप नरेशन दीजिए। और मैं आपको बताऊं तो 3-4 दिन लग के मैंने लालित्य पांडित्य सब कुछ उढ़ेल के मैंने वो एपिसोड लिखा था। कुछ ऐसा लिखा था कि भारती जी सुने तो शाबाशी दें और कहें कि जयंती तुमने क्या लिखा है।
0: वाह,
1: पूरा पांडित्य लाल, मतलब जो कुछ पता था भाषा का पूरा। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ू और निर्देशक जो है वो हंसने लगे, मैं उनका चेहरा देखूं, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को नहीं कहा। मैं फिर पढ़ रही हूँ, फिर वो हंस रहे हैं। मुझे लगा मैं कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, बहुत तेज तो नहीं बोल रही, बहुत गलत तो नहीं बोल रही। फिर आराम आराम से पढ़ना शुरू किया, वो फिर हंस रहे हैं। वो पूरा आधा घंटा ऐसा ही गुजरा कि मैं पढ़ू और वो हंसे, मैं पढ़ू और
0: अच्छा।
1: वो हंसे। मैंने जब खत्म किया और उनका चेहरा देखा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हंस क्यों रहे हैं? मैं कोई कॉमेडी सीरियल तो लिखा नहीं है मैंने, ये तो शुद्ध रोमांटिक है। लड़का लड़की छोटे से कोई शहर में है, कॉलेज के स्टूडेंट है, मिलते हैं। और फिर मैं उनका चेहरा जब देखने लगी तो उन्होंने कहा, जयंती तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया? और खूब हंसे। मैं फिर यूं देख रही हूँ उनकी और हक्का बक्का होके बोले, अरे जैसे बोलती हूँ वैसे लिखो ना, ये जिस भाषा में तुमने लिखा है उस भाषा में कौन समझ पाएगा? ये हम लोगों की बोलचाल की भाषा थोड़ी है। और तुमने जो हमारे लिए बाकी जो लिख के दिया था वो तो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल बनेगी इतनी बात का एक एपिसोड। और अब ये जो लिखा है वो तो तुमने ऐसी भाषा में लिखा है जो कोई समझ ही नहीं पाए। उस दिन मुझे जिंदगी का दूसरा एक लेसन मिला कि भाषा वो होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, जो संप्रेषणीय हो।
0: जी,
1: अगर आपकी भाषा ऐसी है जो दूसरों की समझ ही ना आए, आपके पाठकों की या देखने वालों की या सुनने वालों की, उस भाषा का कोई मतलब नहीं है।
0: खासकर वो जब वो पर्दे पर बोल रहे हैं तो आपकी भाषा वास्तविक भाषा होनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: होनी
0: असल
1: चाहिए।
0: भाषा होनी
1: तो
0: चाहिए।
1: मैंने, रश्मि जी, यहाँ ये किया कि लिखने की भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ आए। देखिए, अब पत्रकारिता शुरू किए हुए भी मुझे कुछ साल हो गए थे, दुनिया तेजी से बदल रही थी और पलट के जब देख रही थी तो हर कोई शिकायत कर रहा था कि हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं, हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं। अब भाषा को अगर हम बहती नदी नहीं बनाएंगे, लोगों से जोड़ेंगे नहीं, तो नई पीढ़ी कैसे जुड़ेगी, बताइए। तो उस दिन मुझे ये दूसरा सबक मिला कि मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, किसी भी उम्र के लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे मैं लेख लिखूं, कहानी लिखूं, उपन्यास लिखूं, लेकिन भाषा मेरी ऐसी हो जो हर किसी की समझ में आए। तो वो मैंने दूसरा लेसन लिया। उसके बाद मुंबई से मैं दिल्ली आई, वनिता पत्रिका की शुरुआत हो रही थी, बतौर संपादक उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने सोचा प्रिंट मीडिया जो है वापस आती हूँ। और किसी भी पत्रकार के लिए ना अपनी पत्रिका चलाने का अलग ही एक शौक होता
0: जी,
1: है, बिल्कुल
0: जब आप कर्ता धर्ता बनकर आए।
1: जी, जी,
0: और वनीता जो मैगजीन, वो तो महिलाओं की बहुत प्रिय
1: जी,
0: मैगजीन
1: जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको
0: और जिसमें की कहानियां, कविताएं, मतलब हर वो चीज, हर वो पहलू जो कि महिलाओं के लिए
1: बिल्कुल,
0: जरूरी
1: बिल्कुल,
0: होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैगजीन तो हम समझ सकते हैं कि जब आप वो इतना अनुभव लेकर आई उसने तो हिट होना ही था।
1: वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। उस वनिता की वजह से मैं दिल्ली भी आ गई और दिल्ली ने मुझे अपना लिया, मैंने दिल्ली को अपना लिया। तो इस तरह से
0: जयंती जी, यहाँ पे एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप उस समय टेलीविजन के लिए, सीरियल्स के लिए लिख रही थी, तो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है या जितने भी ये सीरियल्स बनते हैं, धारावाहिक बनते हैं, ये जो भाषा जो होती है आजकल बहुत

0: ये बात चल रही है कि रोमन में लिखी जाती है, पढ़ते
1: जी
0: वही हैं।
1: जी
0: और आजकल जो बच्चे होते हैं वो भी हम देखते हैं जब टेक्सटिंग करते हैं, जो संदेश भेजते हैं, तो वो हिंदी भी रोमन में लिख रहे होते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, वो कितना सही है, कितना हमें ग्राह्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
1: देखिए रश्मि, ये बात जो है ये शोचनीय तो है, लेकिन इसे आप अब बदल नहीं पाएंगे। मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। हिंदी के जितने साहित्यकार हैं या पत्रकार हैं या इवन संपादक रहे या हिंदी के मूर्धन्य लोग, उन सब ने जो है हिंदी को आगे नहीं बढ़ाया इस तरह से कि अपने जो बच्चे थे उन्होंने उन सब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाला। सारे जितने हिंदी पट्टी के लोग हैं उन लोगों को भी यही लगा कि अंग्रेजी जो है वो सफलता का पासपोर्ट है, हिंदी नहीं। हिंदी में आगे पढ़ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, करीब पूरा 5 दशक तक हमने अपने बच्चों को हिंदी से दूर कर दिया। वो बच्चे जो है हिंदी में फेल होते हैं, बाकी सभी जो है उनके बहुत
0: बहुत
1: अच्छे,
0: बढ़िया करते
1: बहुत
0: हैं
1: बढ़िया
0: जी।
1: करते
0: हाँ
1: हैं वो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी तो है। हमने हिंदी को इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम में हाशिए में डाल दिया। गलती तो हमारी है ना। अब आप अपने बच्चों को, जो भी पीढ़ी आ गई है दूसरी तीसरी, उनको आप दोष नहीं दे सकते। वो सबने वही कहा जो उनके माता पिता ने उनके लिए सही समझा। तो आपने जब देवनागरी से उनको दूर कर दिया, हाँ आपने उनको हिंदी पढ़ने के लिए दिया ही नहीं। मैं जब नंदन की संपादक थी तब हम स्कूल्स में जाते थे कि आप नंदन सब्सक्राइब कर ले। माता पिता कहते थे हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो घर में बोल ही लेते हैं, बोलने भर को हिंदी चाहिए। उन्हें अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी में उनको मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आना चाहिए उन्हें। आप अगर ये सब लेके चलेंगे और आज हम यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि क्या कहे हमारे बच्चे तो इंग्लिश में टाइप करते हैं, उनकी गलती नहीं है।
0: तो
1: ये सब हमने तैयार किया
0: हुआ
1: है, आपने दूर किया है। प्लस बीच में ये दौर आ गया था कि आपने हिंदी को इतना क्लिष्ट बना दिया कि नई जो भी हिंदी पढ़ना चाहे वो बहुत दूर होते चले गए। क्लिष्ट हिंदी ही सही हिंदी है या नहीं, इस पे भी मैं बहस नहीं करूंगी, क्योंकि हर तरह की हिंदी के पाठक हैं। हिंदी अपने आप में इतनी खूबसूरत भाषा है भाई कि उसको आप कैसे भी लिखे वो पठनी ही होगी। लेकिन अगर आपको नए लोगों को जोड़ना है तो आपको उनको देना होगा कुछ, आपने वो किया ही नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर अब आपके इस प्रश्न पे आती हूँ कि पूरे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सितारे या जितने भी लोग काम करते हैं उन्होंने हिंदी में कभी कोई पढ़ा ही नहीं है, उनको सिर्फ बोलचाल की हिंदी आती है, इसीलिए वो हर काम अपना अंग्रेजी में करते हैं। तो मीटिंग्स भी जो वहाँ होती है तो अंग्रेजी में होती है मीटिंग्स, क्योंकि सारे के सारे वही लोग वहाँ नियम बनाते हैं और फिल्में बनाते हैं जो अंग्रेजी में महारत है जिनको, लेकिन मजबूरी है कि उनको वेब सीरीज हो या फिल्म हो वो हिंदी में बनाना है, क्योंकि हिंदी 70% जो है आज भी हिंदुस्तान में हिंदी ही बोली जाती है, समझी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। लेकिन जो हिंदी पट्टी से गए हैं वो हिंदी पढ़ लेते हैं, पर जो महानगरों से या दूसरी पट्टी से गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि वो देवनागरी पढ़ ही नहीं पाते। और अगर आप अंग्रेजी में उनको लिख के दें हिंदी में, और वहां पे एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जो उनको कहता है ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलिए
0: जी,
1: इसमें ये जो एक बहुत क्या कहना चाहिए घटना हो गई है इसको अब सुधारा नहीं जा सकता।
0: मुझे लगता है कि शायद जो अब इतने सारा सोशल मीडिया आया है जिसमें कि हर कोई हिंदी लिख सकता है, बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, और शायद इससे अगर वापस आए कभी, क्योंकि जो आपने जो बात की, वाकई एक पीढ़ी ऐसी तैयार हुई जब वो वहां पहुंची मुंबई में संघर्ष करने के लिए, तो उसके पास जो भाषा थी, जो मीडियम था, वो अंग्रेजी ही था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो रोमन में पढ़ने के लिए एक तरह से बाध्य हो गए। तो हम शुक्र ये मनाएं कि कम से कम वो जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो हिंदी है।
1: तो हिंदी इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब हिंदी कैसे आगे बढ़ेगी तो आपको मैं बताऊं, ऑडियो बुक्स के माध्यम से बनेगी, वीडियो बुक्स के माध्यम से आगे बढ़ेगी, ये जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। और यहाँ एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 10 सालों में हिंदी में जितने लेखक आए हैं जिनकी किताबें बहुत बिक रही हैं वो कोई हिंदी वाला नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है
0: जी।
1: वो वापस युवा पीढ़ी को हिंदी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आज हम वापस अगर ये कहें, जिस तरह से हम कहते हैं कि फिल्मों का एक अच्छा दौर है, वेब सीरीज का अच्छा दौर है, वैसे मैं कहूंगी लेखन का भी अच्छा दौर है, हिंदी लेखन का
0: जी।
1: क्योंकि अब हर तरह की चीजें लिखी जा रही है, पाठक जहां मने वहां वो पढ़ रहा है। आपको अगर मुफ्त का पढ़ना है तो आप सोशल मीडिया पे पढ़िए, इतनी पत्रिकाएं उपलब्ध है आपको, हाँ, और इतने सारे नॉवेल्स आ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा मानती हूँ कि हिंदी के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है।

0: आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, 16 किताबें लिखी हैं, 6
1: जी
0: उपन्यास आप लिख चुकी हैं, और जो अभी आपने बात की बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स
1: जी
0: आप कर चुकी हैं, पॉडकास्ट भी आप करती हैं। ये जो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट है, इस पर आते हैं, ये कैसे मन में आया अचानक कि मैं पॉडकास्ट करूं और ऑडियो बुक्स करूं बच्चों के लिए?
1: बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी।
0: जी
1: देखिए, जब आप पढ़ते हैं और देखते हैं, सबको देखना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल
0: हाँ, जी,
1: क्योंकि देखना बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इवन बड़े भी, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑडियो बुक्स का ये होता है बिल्कुल, चाहे वो पॉडकास्ट में कोई कोई भी हो सकता है, हेल्थ से संबंधित पॉडकास्ट हो सकता है, कॉमेडी, कहानी, सुनने में आपको कहीं कोई ज़्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ता। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, आप आराम से सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का रिवॉल्यूशन करीब 7-8 साल पहले हुआ, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इनकी एंट्री हुई। तो ये क्या करते हैं, कहानियों को बहुत अच्छी आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं और आप उन कहानियों को सुनिए। तो अगर बच्चा जो है हिंदी में कमजोर है या पर हिंदी की कहानी सुनना चाहता है, पहले दादी नानी की कहानियां जो है इतनी पॉपुलर थी, तो अब दादी नानी की कहानियां अच्छी आवाज में अगर आपको मिल रहा है, तो ये एक ऐसा एक माध्यम है, मैं अगेन कहूंगी, लेखन का कहूंगी या मीडिया का, जो बहुत लोकप्रिय हो गया, सुनने वाला माध्यम पॉडकास्ट। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि भाई ये इतना अच्छा माध्यम है, इतना ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे आजमाना चाहिए। तो स्टोरी टेल वालों ने मुझसे कहा था बच्चों के लिए कुछ लिखिए, तो वहाँ मेरे 2-3 सीरीज हैं बच्चों के और कहानियां हैं काफी सारी जो काफी चलती हैं, तो वो बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है। मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी बातचीत में पीछे से कोई आवाज, कोई
0: जी
1: गाना आ जाए, जैसे आप बीच बीच में गाना बजा रही हैं, उस तरह से
0: हाँ।
1: एक लुत्फ आ जाता है, सुनने का आनंद आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, वो एक जिसे कहते हैं ना श्रव्य, आप एक पूरा इफेक्ट लगा के जो बनाते हैं, पूरा नाटक जैसा माहौल हम लोग बना देते हैं। आकाशवाणी में भी तो यही हम सब करते हैं,
1: आकाशवाणी में तो नाटकों में शुरू से यही करते हैं।

0: जयंती जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताबें तो हर जगह अवेलेबल है, पर मैं अब उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी जो लिखना चाहते हैं
0: जी।
1: और मेरा मानना है कि आप के अंदर अगर है कि लिखना है तो जरूर लिखिए। अब ये पहले की तरह का माहौल नहीं है कि आपको कहानी किसी संपादक को भेज के महीनों इंतजार करना पड़ेगा स्वीकृति पत्र का। अब आपके पास सोशल मीडिया है और आपके पास कंप्यूटर है, आप जो मन में आए लिखिए और आप उसे सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों को और अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे डालिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ये भी ना सोचें कि आप कैसा लिखते हैं। अब भाषा में अगर आपको शुद्धता चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए, तो खूब पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। लेकिन फिर आप अपनी जो एक खासियत है ना भाषा की, उसको भी बचा के रखिए। खूब देसी जो है शब्द डालिए, देसीपन का मजा दीजिए, वहां के किस्से दीजिए बिल्कुल, और आप लगातार लिखिए। इससे क्या होगा, आपके पाठक बनेंगे और आपको एक बहुत अच्छी जमीन मिल जाएगी। और आज की तारीख में जितने भी पब्लिशर हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया से ही अपने लेखक तलाशते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपका लिखा बहुत पढ़ा जाता है, आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं, तो वहीं से आपसे संपर्क करेंगे कि हमारे लिए किताब लिख के दीजिए। तो ये जो वक्त है वो सबसे अच्छा वक्त है हिंदी में लिखने का। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लिखने के साथ साथ अपनी बात को रिकॉर्ड करके, आपके फोन में सारी सुविधाएं हैं नहीं तो गूगल की मदद ले लीजिए, पॉडकास्ट बनाइए, आप रिकॉर्ड करिए, अपने मोबाइल को ऑन करके रिकॉर्ड करिए। और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त में आपका जो है वो पॉडकास्ट रिले करेंगे, और पॉडकास्ट के जरिए क्या होगा, आप ज्यादा और नए और युवा लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोकप्रिय हो गए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने लगे, तो आपको पैसे भी मिलने लगेंगे। तो आप जरा भी ये मत सोचिए कि मेरा लिखा कौन पढ़ेगा, आपका लिखा पढ़ने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि आप कुछ अलग और अच्छा लिखने वाले हैं। तो तुरंत आप इस पे अमल करिए और किसी का इंतजार मत करिए।
2: दोस्तों सच बताऊं, मेरा तो मन नहीं कर रहा है ये मुलाकात समेटने का, लेकिन घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। तो जयंती जी, फिर मुलाकात खत्म करते हैं, इजाजत लेते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके और आप लोगों के साथ मिलके। मेरी शुभकामनाएं तहे दिल से, मैं चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़े, बहुत खुश रहे, अपने सेहत का भी ख्याल रखें
2: जी। इसी के साथ कहते हैं
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों

बारह बजकर 11 मिनट और 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज समय है कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है इंतजार और जो आता है हर रविवार आज आपके साथ हूं मैं आशीष नमस्कार आज हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता निर्देशन किया इसका बिमल रॉय ने वो बिमल रॉय जिनका जन्म आज ही के दिन दोस्तों 1909 में हुआ और वो महज 56 साल की उम्र में वो कर गए जो लोग बड़ी बड़ी उम्र में नहीं कर पाते 1966 में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा जून के महीने में 8 जून को माफ कीजिएगा तो उस समय तक वो ना जाने कितने ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों को अपने नाम कर चुके थे यादगार फिल्में सामाजिक फिल्में और दिल को छूती हुई मार्मिक फिल्में ये पहचान रही बिमलदा की और आज उन्हीं को हम याद करते हुए उन्हीं की एक यादगार क्लासिक फिल्म सुजाता आपके लिए लेकर आए हैं नूतन और सुनील दत्त ने मुख्य भूमिकाएं निभाई साथ में दिया शशिकला ललिता पवार सुलोचना लटकर और तरुण बोस ने भी अपनी सहायक भूमिकाओं से एक छाप छोड़ी सुबोध घोष की बंगाली लघु कहानी पर आधारित ये फिल्म भारत में उस समय के जाति व्यवस्था को बखूबी दिखाती है संगीत DSD बर्मन ने और गीत मजरू सुल्तानपुरी के और इस फिल्म को 1960 के कान फिल्म महोत्सव में भी शामिल किया गया था पटकथा लिखी थी नवेंदु घोष ने और संवाद लिखे पॉल महेंद्र ने इसके अलावा कैमरा पक्षभार संभाला कमल बोस ने और एडिटर थे इस फिल्म के अमित बोस फिल्म की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि गोल्डन पाम कान फिल्म महोत्सव में तो इसको नॉमिनेशन मिला ही उसके अलावा 7वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बिमल रॉय ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड साथ ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और नूतन ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुबोध घोष अपने नाम कर गए इस फिल्म में कहानी का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1959 में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र भी इसी फिल्म को दिया गया फिल्म की कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि फिल्म में किस कलाकार ने कौन सा किरदार निभाया नूतन थी सुजाता के रोल में सुनील दत्त अधीर के किरदार में थे शशिकला ने रोल निभाया था रमा चौधरी का ललिता पवार ने गिरीबाला का किरदार निभाया जो कि बुआ होती हैं उपेंद्रनाथ चौधरी की उपेंद्रनाथ चौधरी का रोल निभाया तरुण बोस ने जो कि रमा के पिता हैं और उपेंद्रनाथ चौधरी की धर्मपत्नी यानी चारुमती का किरदार निभाया सुलोचना लाटकर ने इसके अलावा अच्युत सेन थे और कुक्कू ये छोटे छोटे किरदारों में थे लेकिन सभी कलाकारों ने दोस्तों इस फिल्म में यादगार अभिनय किया फिल्म की कहानी शुरू होती है उपेंद्रनाथ चौधरी के कंस्ट्रक्शन वाली साइट से डैम का काम चल रहा है जोर शोर से और इसी बीच होता यह है कि गांव में हैजे की बीमारी फैल जाती है जानलेवा हैजा किसी घर को बख्शता नहीं है लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं गांव छोड़ छोड़ के लोग जाने लग गए हैं और गरीबों का कोई आसरा नहीं है वहां पर और इंजीनियर उपेंद्रनाथ चौधरी भी परेशान है कि आखिर इस मुसीबत से निपटा कैसे जाए तमाम जगह चिट्ठी पत्री करते हैं लोगों का साथ देने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं पढ़े लिखे एक सभ्य इंजीनियर हैं उपेंद्रनाथ चौधरी अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और सभी लोगों का भला चाहते हैं ऊंच नीच भेदभाव जात पात में कतई विश्वास नहीं करते उनकी एक बेटी है जिसका पहला जन्मदिन होने वाला है घर पर हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ इसी बीच रात के समय उनके जो कंस्ट्रक्शन साइट का चौकीदार है वो और गांव वालों को लेकर पहुंचता है गोद में एक नन्ही सी बच्ची है उपेंद्रनाथ के पूछने पर ये बच्ची कौन है चौकीदार बताता है कि हैजे में इसके दोनों मां बाप चल बसे अब ये अनाथ है और इसे गिद्ध और गीदड़ नोच रहे थे मैं इसे बचा लाया हूं इसे आप अपने पास रख लीजिए जब तक कोई इंतजाम और नहीं हो जाता पूछने पर बताता है कि ये
छोटी जात की बच्ची है। उपेंद्रनाथ को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज क्या कहेगा, उनकी पत्नी कहती है। लेकिन इस बच्ची को सड़क पर तो नहीं फेंका जा सकता, मर जाएगी ये बच्ची। ये सोचकर अपने घर की आया को कहा जाता है कि इस बच्ची को तुम पालो जब तक कोई और इंतजाम ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन चौकीदार एक शराबी इंसान को लेकर आता है जो उस बच्ची को पालने के एवज में पैसे की मांग करता है। उपेंद्रनाथ का गुस्सा सातवें आसमान पर कि ये इंसान बच्ची को पालेगा, ये खुद अपना बोझ नहीं उठा सकता, ये तो इस पैसे को ले जाके इस बच्ची को कहीं फेंक देगा। लिहाजा वो और अपनी पत्नी के साथ ये एक फैसला करते हैं कि जब तक कोई माकूल इंतजाम नहीं हो जाता, अच्छा घर नहीं मिल जाता, इसे कोई पालने वाला नहीं सरपरस्त मिल जाता, तब तक हम इस बच्ची को खुद पालते हैं। दिन बीतते हैं, वो बच्ची सुजाता, जिसका नाम भी उपेंद्रनाथ ने ही रखा है सुजाता, वो रमा के साथ बड़ी हो रही है। दोनों में बेहद प्यार है। एक अगर अपने माँ बाप को कहती है रमा माँ पिताजी, तो उधर सुजाता कहती है बापू और अम्मी। सब लोग कहते हैं कि रमा हमारी बेटी है और सुजाता हमारी बेटी जैसी है। हालांकि ये बात चुभती है सुजाता को, लेकिन फिर भी वो उनका प्यार पाकर खुश है। दोनों बच्चियां बड़ी हो रही हैं और उसी घर में पल रही हैं। कहां एक तरफ उपेंद्रनाथ की पत्नी कहा करती थी बचपन में कि इस बच्ची को कहीं दे आओ, लेकिन उपेंद्रनाथ कहते थे कि घर में अगर एक जानवर भी हम पालते हैं तो उससे भी एक समय आकर प्यार हो जाता है, ये तो इंसान की बच्ची है। आज दोनों बच्चियां यानी रमा और सुजाता बड़ी हो चुकी हैं, जवान हो चुकी हैं।

रमा बेहद चाहती है सुजाता को, दीदी कहती है और सुजाता भी जान छिड़कती है रमा पर और अपने बचपन के दिन दोनों याद करती हैं खुशी से।

ऐसे ही अपने बचपन को याद करती हुई दोनों बहनें यानी सुजाता और रमा बड़ी हो रही हैं। उपेंद्रनाथ बेहद प्यार करते हैं सुजाता को। जहां सुजाता घर के काम में निपुण है, वहीं अल्लड़ शोक है रमा भी। इसी बीच चारू की मौसी यानी जो गांव से आती हैं, बचपन में भी आती थीं और वो सुजाता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो यही कहती हैं कि नीची जात की छोटी जात की एक बच्ची है, इसको क्यों तुमने अपने घर में रख के अपने आप को अपवित्र कर रहे हो, समाज से दुश्मनी मोल ले रहे हो, इसे निकाल बाहर करो। लेकिन उपेंद्रनाथ कहते हैं कि जब तक कोई अच्छा वर्ण इसके लिए नहीं मिल जाता, कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता, मैं अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ सुजाता को। सुजाता भी जानती है कि इस घर में जो उसे प्यार मिला है वो और कहीं नहीं मिलेगा। रह रहकर सुजाता को याद आता है बचपन का वो गीत जो उसकी माई यानी अम्मी गाती थी दोनों बहनों को सुलाने के लिए। वो लोरी मानो सरमाया बन चुकी है सुजाता की जिंदगी का।

रमा के लिए घर में रिश्ते आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उपेंद्र नाथ चाहते हैं कि पहले सुजाता का हाथ किसी योग्य वर के हाथ में दे। लेकिन आखिर सुजाता से शादी करेगा कौन? जो लोग आते हैं सुजाता को देखते हैं, पहली नजर में ही उसे भा जाती है, सभी उसे चाहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एक छोटी जात के परिवार की है, वो माँ बाप है नहीं, केवल यहां पर गोद ली हुई एक बच्ची की तरह पली है, तो तमाम प्यार, तमाम लाड, तमाम उसूल जो हैं वो एकदम गायब से हो जाते हैं। उपेंद्र नाथ सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इंसान को हुआ क्या? खून का रंग एक है तो फिर ये जात पात क्यों, भेदभाव क्यों? क्यों नहीं सुजाता को सभी लोग उसी नजर से देखते जिस नजर से वो खुद सुजाता को देखते हैं? लेकिन दुनिया तो दुनिया है, करें तो क्या करें। इसी बीच घर में गहमा गहमी बढ़ चुकी है, क्योंकि रमा का जन्मदिन आ गया है और वो जन्मदिन जोर शोर से मनाने की तैयारी है। एक पार्टी का आयोजन किया गया है, सुजाता भी बेहद खुश है।

0: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
1: ध्यान रखना बेटा।
2: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
2: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
2: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।
4: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

12:48 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम बोझो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता। सुजाता अब दिल की बात तो समझ गई अधीर की, लेकिन आखिर ये समाज की बेड़ियां जो उसके पांव में जंजीर की तरह पड़ी हैं उसका क्या करे। अधीर को भी समझाती है, रोती है, बिलखती है कि हमारा मेल मुमकिन नहीं है, ये समाज हमें कभी मिलने नहीं देगा। अम्मी चाहती हैं कि रमा का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया जाए। मौसी मुझसे नफरत करती हैं, केवल रमा और उपेंद्रनाथ यानी बापू जो हैं वो ही हैं जिनके सहारे मैं आज तक इस घर में हूं। हालांकि अम्मी का प्यार मुझे बहुत मिला है, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो चाहती है कि रमा की शादी अधीर से हो। तब अधीर कहता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। विवाह करूंगा तो केवल तुमसे, जीवन संगनी बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। और विश्वास दिलाता है कि तुम चिंता ना करो, ये समाज हमें खुद मिलाएगा और खुशी खुशी हमारा जीवन आगे चलेगा। हालांकि संशय है, संदेह है, शक है सुजाता को, क्या होगा ऐसा। लेकिन अधीर के मजबूत बाजुओं में जब वो सर रखकर रोती है तो उसे एहसास होता है कि शायद ये बात सच हो जाए। दूर कहीं कानों में पड़ रही है मल्लाह की आवाज़।

0: चमत्कार। सुजाता का खून चारू के खून के साथ बिल्कुल मेल खाता है। सुजाता अपना खून देकर चारू की जिंदगी बचा लेती है। चारू को जब होश आता है तो पता चलता है कि किसने उसकी जान बचाई। उसे आत्मग्लानी होती है, बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सभी के सामने सुजाता से मांगती है माफी, उसे अपनी बेटी स्वीकार करती है और उसके बाद सुजाता और अधीर का विवाह सभी के आशीर्वाद से खुशी खुशी होता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इससे बड़ी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, यही दिखाया गया फिल्म सुजाता में। उम्मीद है आपको कहानी और गीत पसंद आए होंगे। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर मधुर तरानों का कार्यक्रम होगा दिल ढूंढता है। और दोस्तों, जैसे आज मैंने आपको कहा था कि बिमल दा यानी बिमल रॉय का आज है जन्मदिन और ये समर्पित की हमने उन्हीं की क्लासिक फिल्म उन्हीं की याद में। और 1963 में बिमल दा की एक और क्लासिक फिल्म आई थी बंदनी। संगीतकार एक बार फिर थे एसडी बर्मन और गीतकार थे शैलेंद्र। उन्हीं की इसी यादगार फिल्म का, क्लासिक फिल्म का एक गीत एसडी बर्मन द्वारा ही गाया हुआ हम आपको आज सुनाना चाहते हैं। सुनिए, बिमल दा को याद कीजिए और एफएम गोल्ड के साथ यूं ही अपना प्यार बांटते रहिएगा।
1: पूरे माजी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन

1:11 और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मधुर तरानों का गुलदस्ता लिए हाजिर हूं मैं आशीष नमस्कार और कार्यक्रम है दिल ढूंढता है वो गीत जो कल भी आपके दिल के बेहद करीब थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सावन दस्तक दे चुका है दोस्तों पूरे देश भर में और ऐसे में बारिश की फुहारों में मन क्यों ना भीग सा जाए और कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करते हैं आया सावन झूम के फिल्म के उस गीत से जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार आनंद बख्शी।

सावन जब झूम के आ गया है तो ऐसे रिमझिम की फुहारें जब पड़ती हैं तो मन क्या कहने को बेचैन सा हो जाता है। ऐसे ही कहा गया है फिल्म मंजिल के इस गीत में, गायक कलाकार किशोर कुमार, संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार योगेश।

0: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
1: ध्यान रखना बेटा।
2: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
2: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
2: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

1:24 और 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ मधुर तरानों का कार्यक्रम दिल ढूंढता है। और आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपकी नजर करते हैं हम फिल्म है अनजाना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। इस गीत का आनंद लीजिए और इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। संस्कृत सेवायां सोत्साह तत्पराः प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगति प्रसिद्धे विशिष्टे च संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे अहं ऋचा झा भवद्भ्यः सुधी श्रोतृभ्यः सप्रणामं स्वागतं करोमि। श्रोतारः, उच्यते यत् एकः सद्विचारः अपि जीवनस्य दिशां परिवर्तयितुं समर्थः भवति। तादृशान् एव प्रेरणाप्रदान् जीवन सन्देशान् वहन्ति सुभाषितानि। तर्हि भामहे अद्यतनं कार्यक्रमं सुभाषितेन, यच्च प्रस्तौति जतिन शर्मा।
1: नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखम्। अर्थात विद्या के समान चक्षु नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं होता और त्याग के समान कोई सुख नहीं।
0: प्रिय मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण चौराष्टकम् इत्यस्य पद्यानि श्रावयति अस्माकं सहयोगी कृष्णप्रसादोपाध्यायः।

0: इति। प्रियाः श्रोत्री वृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र ललितमोहन तिवारी श्रावयति संस्कृत हिंदी उड़िया भाषासु कानिचन वाक्यानि।
1: प्रथमं वाक्यमस्ति, विश्व जनसंख्या दिवसः प्रतिवर्षं जुलाई मासस्य एकादशे दिनांके आचर्यते। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। उड़िया भाषा में, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जुलाई मास 11 तारीख रे पालन करा जाए। द्वितीय वाक्यम अस्ति, विश्व जनसंख्या दिवस जनहिताय समर्पित दिवस अस्ति। विश्व जनसंख्या दिवस जनहित के लिए समर्पित दिवस है। उड़िया भाषा में, विश्व जनसंख्या दिवस जनहित पाई समर्पित कोटे दिवस अटे। तृतीय वाक्यम अस्ति, जनसंख्यायाः नियंत्रणं राष्ट्रस्य प्रगतये आवश्यकम् अस्ति। जनसंख्या का नियंत्रण राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। उड़िया भाषा में, जनसंख्या रा नियंत्रण राष्ट्र प्रगति पाई आवश्यक अटे। चतुर्थम वाक्यम अस्ति, शिक्षाया जागरूकतया च जनसंख्या वृद्धि नियंत्रितुं शक्यते। शिक्षा और जागरूकता से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। उड़िया भाषा में, शिक्षा एवं सचेतना द्वारा जनसंख्या वृद्धि को

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने उम्मान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने उम्मान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि उमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में उमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने उमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तश्वीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुज़ाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ का जायज़ा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के साथ 30वीं भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफ़ा तजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: BJP ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि किलीदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के

0: इस करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इक्तसादी संग मील करार दिया। उन्होंने वजीर आजम के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहर हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लीदी इतिहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और उनके लोकसभा हल्के गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप्स अपनाएं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मोशी के कूड़े करकट के डिपो के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। आज बचाव कार्रवाई के चौथे दिन 7 और अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स अब भी कूड़े कचरे के ढेर के नीचे फंसा हुआ है और तलाश की कोशिशें जारी हैं। यह हादसा इस महीने की 8 तारीख को उस वक्त पेश आया था जब पुणे ज़िले में मोशी के मुकाम पर कूड़े कचरे का एक बड़ा टीला फाजिल मादों और कचरे वगैरह से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट की इंतजामी इमारत पर ढह गया था और 23 अफराद फंस कर रह गए थे। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह फिर फजाई हमले किए। अबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ये फजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें मिजाइल, ड्रोन और मवासिलाती मराकज शामिल हैं। ईरान ने बहरैन, कुवैत, कतर और मुत्तहिद अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमरीका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने आम रियायत की स्कीम 2026 का आगाज किया है ताकि मुस्तसना प्रोविडेंट फंड चलाने वाले इदारों को अपने दर्जे को बाजाबता शक्ल देने का एक वक्ती मौका फराहम किया जा सके। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम 6 महीने की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी। मस्कूरा स्कीम का इतलाक उन इदारों पर होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तस्लीम शुदा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अहल इदारों को ईमेल के जरिए बाजाबता दरख्वास्त मुतालिका इलाकाई दफ्तर को पेश करना होगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। शेख हमद ने कतर पर 18 साल तक हुकूमत की, जिसके बाद 2013 में रजाकाराना तौर पर अपने बेटे को इख्तदार सौंप दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा सानी एक नज़रिया साज रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुँचाया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 8:30 बजे शुरू होगा। आज ही ख्वातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बुध के रोज़ पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना

0: on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान

0: प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए

0: हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फु क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका S. जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में S. जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। S. जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। S. जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि S. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हानियू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का

अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कथा सम्राट प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी पर आधारित नाटक बड़े घर की बेटी। नाट्य रूपांतर केसी वर्मा और विनोद कुमार ने किया है। प्रस्तुति सहयोग नितिन कुमार का है और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो आइए सुनते हैं ये नाटक बड़े घर की बेटी।

0: नमस्कार नमस्कार, कर भला तो हो भला, श्रीकंठ बाबू को सफू साहू की राम राम।
1: राम राम साहू जी, आओ आओ बैठो।
0: अरे कब आए भैया?
1: अरे कल रात ही आया हूँ।
0: और आते ही अपने प्रिय काम में लग गए। हाँ। कर भला तो हो भला, दवाइयां घोटने के काम में। ये क्या है?
1: अरे कुछ नहीं साहू जी, जरा अभ्रक की भस्म तैयार कर रहा हूँ। बैठो बैठो।
0: आप भी ना विचित्र हैं श्रीकंठ बाबू, बीए पास करके भी आपको यही करना है, है? लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं बीए करके, कर भला तो हो भला।
1: क्यों, इसमें क्या बुराई है साहू जी? अपने यहाँ तो ऐसी लाखों औषधियां पड़ी हुई हैं कि आदमी एक बार खा ले तो जिंदगी भर उसके पास बीमारी ना फटके।
0: अच्छा?
1: पर अब इस अंग्रेजी जमाने में मानता कौन है।
0: हाँ हाँ हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हैं श्रीकंठ बाबू, जिसको देखो वही भागा जा रहा है अंग्रेजी दवाई के पीछे। हैं? पता नहीं ये अंग्रेजी दवाई दवाई है भी कि नहीं है। अरे कुछ तो कहते हैं वो सब जहर है, जहर जिसको सब अमृत समझकर गट के जा रहे हैं। हाँ? बुरा हो इन अंग्रेजी दवाइयों का, कर भला तो हो भला। आप में यही सबसे बढ़िया गुण है कि पढ़ लिख कर भी अंग्रेजी बूबास नहीं आई, नहीं तो कोई और लड़का होता तो खेला हो चुका होता। हाँ, खरे तीन ड्योढ़ी लांग कर अंदर आई नहीं कि बस पूछिए मत, दूसरे ही दिन से दूसरा चूल्हा जलने की नौबत आ जाती है महाराज।
1: अरे नहीं नहीं साहू जी, देखिए बात यह है कि मैं तो पढ़ने लिखने के बाद यही समझा कि अपना कुटुंब छोड़ना ठीक नहीं है।
0: वाह,
1: देखो सबके साथ मिलकर रहने में जो बात होती है, जीवन में जो संयम आता है, वो अकेले रहने में कहां।

0: बहुत सुंदर।
1: पहले ही दिन से तुम्हारी बहू को मैंने ये अच्छी तरह समझा दिया था। देखो, बड़े घर की हो तो हो, पर मेरे घर में दूसरे ही ढंग से रहना होगा। हाँ, अब ठाकुर भूप सिंह की बेटी हो तो हो, यहाँ हमारे घर की बहू हो, यहाँ तो यहीं के कायदे चलेंगे।
0: ठाकुर भूप सिंह, हाँ हाँ श्रीकंठ बाबू, आपने भी सही याद दिलाया। भाई ठाकुर भूप सिंह का नाम किसने नहीं सुना है? अरे हम लोग तो बारात हो आए हैं। आह क्या शान शौकत है आपके ससुर जी की, हैं? क्या रुतबा है, कर भला तो हो भला।
1: हाँ हाँ वो तो है साहू जी, ठीक है, पूरे इलाके में उनको सब पहचानते हैं। अब शान शौकत तो सब ठीक है, पर जब उन्होंने अपने घर की बेटी हमें दे दी तो उस बेटी को उसी तरह रहना होगा ना जिस तरह हम रखे।
0: क्यों नहीं है श्रीकंठ बाबू, सारा गांव इसी सब के कारण तो आपकी जितनी इज्जत करता है उतनी किसी दूसरे की नहीं करता। कर भला तो हो भला है। अरे खुद बड़े ठाकुर बेनी माधव सिंह जी आपकी कितनी सुनते हैं, बताइए तो जरा। पर श्रीकंठ बाबू, जब से आपने शहर में नौकरी कर ली, हम गांव वालों को तो आपका दर्शन दुर्लभ हो गया है। कर भला तो हो भला।
1: क्या करूं साहू जी, अब आपकी तरह हमारा कोई कारोबार तो है नहीं, यहां शहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है, पर हर शनिवार को आ तो जाता हूं। आज इतवार रहकर कल सुबह फिर लौट जाऊंगा।
0: पर श्रीकंठ भैया, बिना आपके रामलीला, अरे उसकी भी तो सोचिए।
1: क्यों, रामलीला को क्या हुआ? रामलीला जरूर होगी, भला बताइए, एक ही तो है हमारा ऐसा त्योहार, उसको भी छोड़ देंगे क्या? खूब जम कर करेंगे, स्वांग के लिए सब इंतजाम करवाइए साहू जी। अच्छा साहू जी, आपने तो इस बार एक बढ़िया नौटंकी भी बुलाने को कहा था ना?
0: अरे सो तो सब होगा श्रीकंठ भैया, पर पैसे का प्रबंध भी तो होना चाहिए। कर भला तो हो भला, अरे खर्चे का तो सोचना ही पड़ेगा।
1: अरे कुछ आप कीजिए, कुछ मैं कर दूंगा, सब हो जाएगा।
0: अच्छा भैया चलते हैं, अब अगले इतवार को मिलेंगे। ये छोटे ठाकुर कहाँ हैं?
1: कौन, लाल बिहारी? अरे वो यहीं कहीं दंड पेल रहा होगा, उसे तो दंड मुगदर से कभी छुट्टी मिलती ही नहीं। पता नहीं क्या करेगा इतनी कसरत करके। हाँ
0: बच्चा है अभी। अच्छा कर भला तो हो भला। नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार साहू जी।

0: आनंदी, तुम हो बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर के रंग ढंग ही अलग होते हैं, लेकिन ये घर वैसा नहीं है। तुम्हें यहां तकलीफ हो सकती है, कई बार कुछ कमी भी हो सकती है, पर तुम अब इस घर की बहू हो। जो है यही है, अच्छा बुरा कम बेसी यही है। पसंद हो तो भी, ना पसंद हो तो भी, अब यहां के तौर तरीके तो बदलने वाले हैं नहीं। देखो, अपने घर जैसा माहौल तो कहीं और हो नहीं सकता, लाख जतन करो तो भी। इसलिए तैयार रहो, तुम्हें ये सब सहना चाहिए। यही तुम्हारा घर है और इसी को तुम्हें संवारना बनाना है।
1: तो मैं कहां इनकार करती हूँ, मैं किसी के होने से परेशान भी नहीं होती, ना उसे करती हूँ। हाँ, अब आपके किसी भी कुटुंब के साथ मैं रह सकती हूँ यहाँ पर। सुनिए जी, अगर बात उल्टी सीधी ही सुनने को मिले ना, तो फिर साथ रहने से फायदा भी क्या।
0: अरे कितने दिन कहेगा आनंदी, बच्चा है, चार दिन कह लेने दो, कौन तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए यहीं बैठा रहेगा। अब देखो, लाल बिहारी जरा तुनक मिजाज है, भड़भड़िया है, उद्धत स्वभाव का है, पर तुम्हारा देवर है। मान कितना करता है तुम्हारा, जानते नहीं हो क्या। अब कभी कुछ कह सुन दे तो बुरा नहीं।

0: मानना चाहिए।
1: अच्छा अब मैं जा रहा हूं, अगले शनिवार को आऊंगा। और हाँ, अगर नहीं आ सका तो खत भेजूंगा, तुम्हें सब हाल चाल लिखता रहूंगा।
2: अपना ख्याल रखिएगा।
1: तुम भी।
3: भौजी, भौजी,
4: क्या बात है लल्ला जी?
3: भौजी, लो ये मैं शिकार करके लाया हूं, और वो भी दो दो। अब जरा इसे जल्दी से पका दो, बहुत भूख लगी है आज तो मुझे।
4: लल्ला जी, इसे उधर ही रख दो, अभी कर दूंगी। हाँ, पूरा खाना कब का बन चुका है, अब फिर से इसे करना होगा। हाँ
3: भौजी, इसे जल्दी से पकाना, हाँ, और जरा ठीक से मसाला वसाला भूजना भौजी, देखो कहीं ये मांस कच्चा ना रह जाए।
4: हाँ हाँ।

0: लाओ लाओ, जल्दी से परस दो, बड़ी देर लगा दी तुमने भौजी।
1: अरे
0: अरे भौजी, दाल में तो घी छोड़ा ही नहीं तुमने।
2: लल्ला जी, घी तो सब मांस भूनने और पकाने में लग गया, दाल के लिए बचा ही नहीं।
0: बचा नहीं मतलब? अभी परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी सब उठ गया।
2: कुल पाव भर घी रहा होगा लल्ला जी, वो सब तो मैंने मांस में हाल दिया।
0: बोल तो ऐसे रही हो भौजी जैसे पाव भर घी कम होता है। मैके में तो तुम्हारे घी की नदी बहती होगी ना।
2: हाथी मरा भी तो 9 लाख का होता है लल्ला जी, वहाँ इतना घी तो रोज नौकर चाकर खा जाते हैं।
3: जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूं,
0: इतना घमंड अपने बाप का। चार आने की जमींदारी पर कोई राजा फौज नहीं बन जाता।
2: बस करो लल्ला जी बस करो, अरे उनके सामने तो तुम्हारी ना आवाज तक नहीं निकलती। हाँ वो आज यहाँ होते ना तो तुम्हें मजा चखा देते। हाँ, डरपोक कहीं के।
0: डरपोक? डरपोक किसको बोला?
4: जिसके गुमान पर फूली हुई हो ना, उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी।
0: डरपोक बोला मुझे।

0: आ गए ठाकुर श्रीकंठ बाबू, कर भला तो हो भला। शायद अभी अभी आ रहे हैं शहर से?
1: हाँ, बस अभी अभी स्टेशन से ही आ रहा हूँ। अरे मेला था ना वहाँ।
0: अच्छा?
1: हाँ, इतनी भीड़ थी सड़कों पर कि पूछो ही मत। भागते दौड़ते किसी तरह स्टैंड तक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से आज गाड़ी मिली। और कहो साहू जी, रामलीला तो ठीक चल रही है ना?
0: हाँ हाँ, एकदम ठीक चल रही है। आज आना जरूर भैया, कर भला तो हो भला। अच्छा चलो।
1: अच्छा अच्छा, नमस्ते साहू जी। मैं पहुंच जाऊंगा वहां, नहा धोकर आता हूँ।
0: अच्छा नमस्ते भैया।
1: कहो लाल बिहारी, क्यों दादाजी आप लोग चुप क्यों हैं? अरे कोई बताएगा बात क्या हुई है, या ऐसे ही मौन व्रत जारी रहेगा? लाल बिहारी,
2: भैया भैया आप ना थोड़ा भौजी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा।
3: हाँ भाई, मुझे भी बहु बेटियों का ये स्वभाव पसंद नहीं है श्रीकंठ, कि वो मर्दों के मुंह लगे।
2: वो बड़े घर की बेटी है तो है, अरे हम भी कोई भिकमंगे थोड़े ना है।
1: अरे आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी, कुछ बताओगे?
2: कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई, यूं ही अपने आप उलझ पड़ी। क्यों दादाजी?
3: बेटा मैं क्या बोलूं,
2: और भैया मैके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, मैं समझा दूंगा उसे। चल तू गुस्सा थूक, भीतर चल।

0: थाली पर बैठकर बात करते हैं।
1: ठीक है,
2: तो सही बात हुई क्या? कुछ तो हुआ
3: भैया, बताया तो आपको ज्यादा।
4: आ गए आप, कब से इंतजार कर रही थी। चलो किसी तरह सदीचर का दिन तो आया। तबीयत तो ठीक है ना?
5: तबीयत को क्या हुआ, खूब बढ़िया है। नाचने का मन कर रहा है? नाचने का। मैं पूछता हूँ, तुमने आजकल ये घर में क्या उपद्रव मचा रखा है मेरे पीछे?
4: ओ, तो लपक लिया तुम्हें घुसते ही। जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, पा जाऊं तो उसका मुंह झुलस के रख दूं। हाँ,
5: मैं पूछता हूँ, इतना गर्म होने की बात क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं।
4: क्या कहूं मैं, मेरे ही भाग्य का फेर है सारा। नहीं तो वो एक गवार छोकरा जिसे चपरासी तक बनने की तमीज नहीं, वो मुझे खड़ाऊ फेंक कर मारता। हाँ?
5: क्या? खड़ाऊ फेंक कर मारा? सारी बात साफ साफ कहो आनंदी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि बात क्या हुई।
4: जानते हैं, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में पाव भर घी से अधिक नहीं था,
5: तो
4: वो सब मैंने मांस में डाल दिया। बस खाने बैठा तो फिर पूछा, दाल में घी क्यों नहीं है? और बस इसी बात पर मुझे भला बुरा कहने लगा। मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा, वहाँ इतना घी तो नौकर खा जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझे खड़ाऊ खींच कर मारा। हाथ से न रोका होता तो मेरा सिर ही खुल जाता। ये देखिए मेरी उंगली भुर्ता हो गई। सुनिए, उसी से पूछ लीजिए, मैंने जो भी कुछ कहा वो सब सच है या झूठ।
5: तो बात यहाँ तक हो गई, लाल बिहारी की ये हिम्मत हो गई, अपनी फौजी पर खड़ाऊ चला दिया। बस बस बस, चुप हो जाओ आनंदी, चुप हो जाओ। मैं यहाँ नहीं हूँ तो मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? सुबह इस बात का फैसला करके छोड़ूंगा। हो गया, बस अब और नहीं। सब्र की भी एक सीमा होती है। अब नहीं सह सकता। अरे बस बस, चुप करो आनंदी, चुप करो।
6: दादाजी, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता।
7: क्यों बेटा, बात क्या है?
6: बात यह है कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है।
7: क्या?
6: जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे मेरी स्त्री पर जूतों और खड़ाओं की बौछार होती है। कड़ी बात कह लेने की चिंता नहीं, कोई एक छोड़ो दो कह ले, वहां तक तो मैं सह सकता हूं। किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम साधे रहूं।
7: बेटा, जानते हो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बातों की सदा से इज्जत करता आया हूं। तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता।
6: ये सब मैं नहीं जानता दादाजी, आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूं। आप जानते, मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, टूटने बिखरने से बच गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा के लिए मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदायी हूं, उसके प्रति इस तरह का अन्याय और पशुवत व्यवहार मैं नहीं सह।

0: बड़ी मत समझिए कि मैं लाल बिहारी को इसके लिए कोई दंड नहीं दे रहा। ये फैसला करने के लिए भी हिम्मत चाहिए।
1: क्या लाल बिहारी तुम्हारा भाई है श्रीकंठ? उसे जब भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन इस तरह?
0: दादाजी, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता।
1: क्या लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता?
0: जी।
1: तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो? लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता, अपनी पत्नी के रोने पीटे के कारण?
0: जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण।
2: राम राम बड़े ठाकुर। अरे वाह, आज तो श्रीकंठ भैया भी हैं। कर भला तो हो भला। सुबह सुबह चौपाल में कैसे आ गए बड़े भैया?
1: आओ सब साहब बैठो।
0: दादाजी, मैंने आपको सब कह दिया, अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता।
1: देखो बेटा, मैं कोई तुमसे बाहर थोड़ी हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। हाँ जी, बस
0: मेरा फैसला हो गया दादाजी, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता।
1: देखो बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है बेटा, उससे जो कुछ हुआ भूल हुई उसे तुम बड़े होने के नाते क्षमा कर दो।
0: उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको अगर वही ज्यादा प्यारा है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, जहां चाहे चला जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है।
1: सुनो सुनो श्रीकंठ, सुनो।
2: लगता है कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है बात। कर भला तो हो भला।
1: क्या मजा आ गया।

0: जरा सी बात जो भैया इतने नाराज हो गए, मैं उनका कितना आदर करता हूं। पर भैया भौजी के कहने पर मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। भैया मुझे कितना चाहते हैं। इलाहाबाद से जब भी आते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आते थे। उस दिन अखाड़े में मेरे जीतने पर उन्होंने ही तो रुपए लुटाए थे। भैया मुझे अकेले में बुलाकर चाहे दो चार तमाचे भी लगा देते तो मैं चू नहीं करता। पर ये क्यों लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाजी भैया ने तय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं ही चला जाता हूं। उन्हें आप फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। आप मेरा कितना ध्यान रखती थी बाबूजी, हमेशा मुझे ताजा गरम खाना खिलाया, मेरी कितनी सेवा की। मुझसे जो अपराध हुआ हो सके तो उसके लिए क्षमा कर देना बाबूजी। नाक रगड़ कर माफी मांग रहा हूँ। ये देखो
1: लल्ला जी सुनते हैं आप। लल्ला जी बाहर खड़े रो रहे हैं।
2: रोने दो, मैं क्या करूं।
1: अरे उन्हें भीतर बुलाओ,

0: ओहो, ये मरी मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से ये झगड़ा उठा लिया, जाने कहां की बात कहां चली गई। सुनिए सुनिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, बुला लीजिए ना उन्हें भीतर।
1: मैं नहीं बुलाऊंगा।
0: नहीं बुलाएंगे, फिर पछताइएगा। सुनिए, उन्हें उन्हें बहुत ग्लानी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं चल दें और फिर बैठकर पछताते रहेंगे आप।

0: मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा।
1: लल्ला जी, लल्ला जी कहाँ जाते हो आप?
0: मुझे जाने दो बाबूजी।
1: अपनों को छोड़कर कहाँ जाओगे लल्ला जी?
0: चला जाऊंगा कहीं भी जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे।
1: ना लल्ला जी, मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ,
0: मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ।
1: ना लल्ला जी, तुम्हें मेरी सौगंध। हाँ, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना, चला जाऊंगा। कैसे जाओगे?
2: जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में पैर भी ना रखूंगा। बहुजी, मैंने आपका मन बहुत दुखाया। बहुजी,
1: नहीं लल्ला जी, नहीं, नहीं, मैं भगवान की कसम खाती हूँ लल्ला जी, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। हाँ, तनिक भी मैल नहीं है लल्ला जी।
3: लाल बिहारी सुनो, चल भीतर। इतना भी रोता है कोई? पहलवान बना फिरता है और दिल इतना कमजोर। चला मेरे पास आ जा।
0: भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे ना, मैं वो सब स्वीकार कर लूंगा।
3: बस बस बस, इन बातों को बिल्कुल भूल जा। ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा।
1: हाँ लल्ला जी, हाँ।
3: हो गया जो कुछ होना था, बस चुप चुप।
4: लाल बिहारी श्रीखंड। अरे वाह, शाबाश मेरे बेटो, शाबाश मेरी बहू रानी, तू सचमुच बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम वही बना सकती हैं। हाँ, वही बना सकती है।
1: दादाजी,

बड़े घर की बेटी नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीकंठ की भूमिका में राजेश काम्बोज, आनंदी सुनीता ठुकराल, लाल बिहारी राहुल दक्ष, दादाजी कीमती आनंद और सप्पू साहू की भूमिका में थे संजय वर्मा। नाट्य रूपांतरकार थे केसी वर्मा और विनोद कुमार। प्रस्तुति सहयोग किया था नितिन कुमार ने और निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले महीने के तीसरे रविवार को हम एक और नाटक के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आपटे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आपटे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवी दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है, वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, कि माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में। पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना? आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसी सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे, वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़े बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहे, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आई तो काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा, वो कैसा है?
3: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दुसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पिच्चाला, तिसरा तमाशा राजवाडी वगनाट्य पिच्चाला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पिच्चाला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
2: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा। और हाँ, ये आपने भी किया कि जो मुद्दे, हाँ, सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
3: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाचा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
2: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
3: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
2: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
3: हाँ।
2: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है। और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
3: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाचा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाचा देखते हैं।
2: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
3: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है तब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
2: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
3: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अभी इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
2: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो हाँ, इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
3: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति।

0: से देख रहे हैं, तालियां चिट्टा बजाते हैं, जाते टाइम हाथ वारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारे वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
0: बहुत बेहतरीन रही है
1: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
0: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
1: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
0: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले, उनको भी पूछा, मैं अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भींगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
1: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
0: होता है।
1: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
1: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती
1: और ये समय है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। बच्चों की मुस्कान हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और इसी खुशी को दुगना करने आए हैं आज हमारे साथ
2: रेडियो किड्स।
0: चलिए जानते हैं इन रेडियो किड्स के नाम।
3: मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा छठी में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम दर्शिता है, मैं कक्षा थर्ड में हूँ।
5: मेरा नाम मोक्ष है, मैं कक्षा फोर्थ में हूँ।
1: आप सब कैसे हो?
6: हम सब ठीक है।
1: अब तो छुट्टियां खत्म हो गई और स्कूल भी खुल गए हैं। खुल गए हैं ना सबके स्कूल?
4: यस। हाँ हाँ जी दीदी, हमारे स्कूल खुल चुके हैं
1: और अब तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। लेकिन सबके कुछ ना कुछ शौक होते हैं ना, तो चलो बताओ अपना एक एक शौक। एक एक क्या, बहुत सारे शौक बताओ।
4: मेरा शौक तो चित्र बनाना, डांस करना और गाने गाने में है।
1: दर्शिता तुम भी बताओ।
7: मेरे शौक ये है कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है और हाइड एंड सीक खेलने में पसंद है।
1: और मोक्ष तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी बता दो।
5: मेरे को रनिंग करना पसंद है, हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है।
4: दीदी मुझे तो स्विमिंग में ड्राइव मारनी भी आती है।
0: अब आप सब बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पूरे करना क्यों जरूरी है?
4: पढ़ाई के साथ शौक भी बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ाई करते करते बोर भी जाते हैं तो शौक भी तो बहुत जरूरी होते हैं।
3: दीदी।
0: हाँ वंशिका।
3: ज्यादा देर पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे बाहर जाके खेलना चाहिए। उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और फिर हम और भी ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसा करने से हम जल्दी चीजें याद कर सकते हैं।
1: वंशिका ने तो बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है मोक्ष, ऐसा करना चाहिए?
5: हाँ दीदी ऐसा करना चाहिए।
1: अच्छा, और खेलना और भी चीजों के लिए जरूरी है?
3: दीदी हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें खेलना जरूरी है।
1: हाँ जब खेलेंगे तो क्या होंगे, हम फिजिकली
4: स्ट्रांग हो जाएंगे।
1: अरे दक्षिता को तो बहुत कुछ पता है।
4: मैं एक पोयम बोलना चाहती हूँ।
0: हाँ दक्षिता सुनाओ।
4: हे जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शिव ज्ञान, हाथ जोड़ कर करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान, कभी किसी से झूठ न बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, अपनी मीठी भाषा से हम कानों में भी रस घोले, दीन दुखी की मदद करे दिन, दो सबको ऐसा वरदान। थैंक यू।
1: अरे वाह दक्षिता, तुमने तो बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाई। अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
4: बिल्कुल।
1: अच्छा बताओ फिर कौन सा सुनोगी।
4: लकड़ी की काट

0: अच्छा, गीत कैसा लगा आप सबको?
1: बहुत ही अच्छा।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वंशिका बताओ, क्या पूछना चाहती हो तुम या क्या बताना चाहती हो तुम?
1: मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर अचानक से हमारे सामने वाला बड़ा सा आम का पेड़ बोलने लग जाए तो हम उनसे क्या बातें करेंगे, और क्या तुम लोग भी उनसे बातें करना चाहते हो?
2: हाँ हाँ, बातें तो करेगी, लेकिन क्या बातें करेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: अरे मोक्ष, कोई एकदम पेड़ बोलने लग जाएगा, तुम डरोगे नहीं?
2: नहीं दीदी, मैं नहीं डरूंगा।
0: वाह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
2: अगर पेड़ बोलते और अगर हमें सुनते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, कहता शुक्रिया पेड़ भाई, जो तुम हमें साफ हवा और छाया देते हो और फल देते हो, और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, माफ़ी मांगता, सॉरी हम इंसानों ने तुम्हें काट कर घर बनाए, फैक्ट्री लगाई, अब हम गलती सुधारेंगे, हाल चाल पूछता, गर्मी में पानी मिल रहा है, कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, वादा करता आज से मैं हर साल कम से कम 2 पेड़ लगाऊंगा और दूसरों से भी लगवाऊंगा, उनकी कहानी सुनता, तुमने कितने मौसम देखे, कितने बच्चों को झूला झुलाया, बताओ ना पेड़ दादा।
0: मोक्ष, आप तो बहुत अच्छी बातें करोगे पेड़ के साथ। वंशिका तुम भी बताओ।
1: अगर हम पेड़ अचानक बातें करने लगा और हम उसके पास गए तो वो तो रो रहा ही होगा, क्योंकि इंसानों ने इतने पेड़ काटे हैं, उनको इतना दर्द दिया है, तो वो रोने लग जाते, तो फिर वो हमसे बोलते, ओ बच्चों तुम तो पेड़ लगाते हो पर कुछ मुझे

0: काट देते हैं। मैं तो उनको बोलती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर हर साल बहुत सारे पेड़ लगाएंगे।
1: वंशिका, आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली। तो हम अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, है ना? और पेड़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं। अच्छा बताओ तो, पेड़ और वन हमें क्या क्या देते हैं?
2: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और छाया देते हैं धूप से बचाने के लिए।
1: और इतनी गर्मी में पेड़ों की छाया कितनी अच्छी लगती है ना?
0: हाँ, हमें बहुत ज्यादा ठंडी हवा मिलती है।
1: दक्षिता, आप क्यों चुप हो, आप भी बताओ कुछ।
2: अगर मुझे पेड़ मिलेगा तो मैं उस पेड़ को बोलूंगी, शुक्रिया पेड़ कि तुम हमें इतनी अच्छी हवा देते हो, इतनी अच्छी छाया देते हो, हमें फल सब्जियां देते हो और हमें ऑक्सीजन देते हो। थैंक यू पेड़ हमें उन सारी चीजों के लिए।
1: दक्षिता, आप एक कविता लाए हो ना?
2: हाँ,
1: सुना दो फिर।
2: मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है।
1: बहुत अच्छी कविता थी दक्षिता तुम्हारी।
3: मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ दीदी। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
1: अच्छा ये तो बताओ, आज हम वन और पेड़ों की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: मैं बताऊं?
1: हाँ बताओ वंशिका।
0: 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव था। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वन महोत्सव का उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना, हरियाली बढ़ाना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
1: बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
0: हाँ, हमें बिल्कुल एक गाना सुनना है।

0: आप सबको गीत कैसा लगा?
1: बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा बताओ, समर वेकेशन में आप सब कहाँ कहाँ गए थे?
1: मैं बताती हूँ, मैं अपने दादी नानी के घर घूमने गई थी। वहाँ मैंने अपनी दादी नानी से बहुत सारी बातें करी। मैंने अपनी दादी के साथ पेड़ लगाए थे।
0: वंशिका तो बहुत इंजॉय करके आई अपनी समर वेकेशन में। दर्शिता तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम भी बताओ तुम कहाँ गई थी?
2: मेरे पापा और मम्मा और मेरी दादी और दादू साथ में मेरे साथ वाटर पार्क गए।
0: मोक्ष अपनी समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे?
3: मैं अपनी नानी के घर गया था।
0: और क्या सीखा आपने अपनी नानी से? नानी ने कहानियाँ तो सुनाई होंगी। सुनाई थी?
3: हाँ सुनाई थी।
0: तो बताओ, नानी और दादी की जो सीख होती है हमें क्या सिखाती है, पहले बताएगा मोक्ष।
3: सब्र रखना, नानी कहती है जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी काम आराम से सब्र से करो तो अच्छा होता है। इज्जत करना, बड़ों के पैर छूना, थैंक यू प्लीज बोलना, किसी को बीच में ना टोकना, ये सारी मैनर्स नानी से सीखते हैं। नानी हमें सिखाती है सुबह जल्दी उठो, ताजी ताजी हवा में सैर करो, पूरा दिन अच्छा जाता है, बॉडी में फुर्ती रहती है।
0: मोक्ष आप तो अपनी नानी के घर से बहुत अच्छी बातें सीख कर आए हो। वंशिका आप भी बताओ।
1: मेरी दादी और नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई, जैसे राजा रानी, परियों और पंचतंत्र।

0: चरित्र की कहानियों से हमें समझदारी और संस्कार मिलते हैं। उन्होंने एक चीज और सिखाई, रिश्तों को जोड़ के रखना। त्योहार पर सबको बुलाना, फोन करके हालचाल लेना, छोटे बड़े से प्यार से बात करना और सबका आदर करना।
1: अरे वाह वंशिका,
2: मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ।
1: सुनाओ दर्शिता।

0: गए।
1: बात रिशिता, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो।
0: सच में ये तो बहुत अच्छा गीत था।
1: चलो सुने एक और प्यारे से गीत।

0: कैसा लगा दर्शिता गीत?
1: बहुत ही अच्छा।
0: मोक्ष, तुम्हें कैसा लगा?
2: बहुत ही अच्छा।
3: अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे,
0: तब तक के लिए
4: बाय बाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स, और इस कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले बच्चे थे वंशिका, मोक्ष और दर्शिता। आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान

0: वे भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रखे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान के ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मूज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि फू क्वॉक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के 3रे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। उधर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिगर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी नगमे और आपसे थोड़ी बहुत बातें। जी हाँ, पहला जो नगमा हमने लिया है फिल्म है आपकी कसम। ये फिल्म आई थी 1974 में और जो नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए अगला नगमा फिल्म अनोखी अदा से, स्वर है किशोर कुमार का।
2: सनम आपका।

0: जी हाँ, 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है और आप सुनेंगे 5:10 पर गाते गुनगुनाते यहीं मेरे साथ। जी हाँ, उसके बाद हम आप तक पहुंचाएंगे एक खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी 5:30 पर। लीजिए सुनिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। We begin with the National Sports University, NSU, Imphal.

0: The Ministry of Youth Affairs and Sports has invited applications for various teaching and non-teaching posts. The vacancies include Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Physical Education, Sports Medicine and Sports Coaching, Athletics. Non-teaching vacancies include Deputy Controller of Examination, Section Officer, Assistant Section Officer, Accountant, Assistant Librarian, Private Secretary, Library Assistant, Physiotherapist and Nursing Attendant. Eligible candidates must submit their applications along with supporting documents by 31st July 2026 to the Registrar, National Sports University, IMPHAL. Submission of the hard copy is mandatory, even if the application is sent by email. Detailed eligibility criteria and application forms available at the website, that is at www.nsu.ac.in. I repeat the website, it is www.nsu.ac.in. The ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi, has invited eligible candidates to attend a walk-in interview for one project assistant under a Department of Biotechnology, DBT-funded project on wheat titled Germplasm Characterization and Trait Discovery in Wheat Using Genomics Approaches and Its Integration for Improving Climate Resilience, Productivity and Nutritional Quality. The project is valid up to 28th February 2027. The selected candidates will receive 20,000 rupees plus 27% of HRA with experience-based increments as per project norms. The walk-in interview will be held on 28th July 2026 at Division of Genomics Resources, Room G206, ICAR-NBPGR, Pusa Campus, New Delhi. The upper age limit is 50 years, with relaxations for reserved categories as per government rules. Rail coach factory Kapurthala has invited applications from eligible Indian citizens for recruitment against the sports quota for the year 2026-27. The recruitment includes one post in level 4-5 and seven posts in level 2. The last date for submission of applications is 14th July 2026. Detailed eligibility criteria, sports disciplines and application procedure is available on the RCF website. For details, do look up www.rcf.indianrailways.gov.in under the Staff Corner Recruitment section. Indian Institute of Management, IIM Shillong, has invited online applications for several administrative positions including Deputy General Manager, Knowledge Services, Deputy General Manager, Alumni Relations, Senior Manager, Audit, Manager, Academics, Manager, Accreditation, Assistant Manager, IT Infrastructure and Assistant Manager, Mechanical Infrastructure. Most positions are on a five-year contractual tenure, renewable based on performance, with pay levels ranging from level 6 to level 12 as per the academic pay matrix. The last day to submit online applications is 20th July 2026. Detailed eligibility criteria, qualifications and application procedure is available on the Institute's website. That is at www.iimshillong.ac.in. I repeat the website, it is www.iimshillong.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न तथा प्रमुख पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो अपने पंचकुला यूनिट के लिए इन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। वरिष्ठ अभियंता, रिक्तियों की संख्या 1, वरिष्ठ सहायक अभियंता, भूतपूर्व सैनिक, रिक्तियों की संख्या 5, वरिष्ठ सहायक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, पद 1 और परियोजना अभियंता रसायन शास्त्र, पदों की संख्या 1। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.bel-india.in। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन पदों को भरना चाहता है और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, रिक्तियों की संख्या 1, पुलिस अधीक्षक 3 रिक्तियां, सहायक निदेशक 3 रिक्तियां, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी प्रथम हथियार रिक्तियों की संख्या 1, कनिष्ठ विश्लेषक रिक्त पदों की संख्या 1, कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्तियों की संख्या 1, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रिक्त पदों की संख्या 1, वरिष्ठ अन्वेषक रिक्तियां 1, अनुसंधान सहायक 3 रिक्तियां, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 5 रिक्तियां, कनिष्ठ अन्वेषक 2 रिक्तियां, जूनियर लेखाकार 1 रिक्ति, उपनिरीक्षक 1 रिक्ति और कांस्टेबल 4 रिक्तियां। ये सभी रिक्तियां बीपीआर एवं डी नई दिल्ली के लिए हैं, जबकि सीएपीटी भोपाल के लिए इन रिक्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षक रिक्त पदों की संख्या 7, ड्रिल प्रशिक्षक रिक्त पदों की संख्या 6, इंस्पेक्टर लाइंस 1 पद, इंस्पेक्टर डेमो 1 पद, प्रशिक्षण सहायक 4 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 पद, उपनिरीक्षक 1 पद, स्टेनोग्राफर श्रेणी तृतीय 5 पद, हेड कांस्टेबल 10 पद, ट्रेड्समैन 10 पद, कांस्टेबल 12 रिक्तियां और डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 रिक्तियां। इसके अतिरिक्त चालक 11 रिक्तियां, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी 6 रिक्तियां और कांस्टेबल डेमो प्लाटून 2 रिक्तियां। CDTI कोलकाता के लिए रिक्तियां हैं पुलिस निरीक्षक 2 रिक्तियां और कांस्टेबल 6 रिक्तियां। CDTI जयपुर के लिए निदेशक 1 रिक्ति, उप पुलिस अधीक्षक इंस्ट्रक्टर 2 रिक्तियां, इंस्पेक्टर 4 रिक्तियां, डिस्पैच राइडर 1 रिक्ति, कांस्टेबल 8 रिक्तियां। CDTI गाजियाबाद के लिए उप पुलिस निरीक्षक 3 रिक्तियां, इंस्पेक्टर 3 रिक्तियां और कांस्टेबल 15 रिक्तियां। CDTI हैदराबाद के लिए उप प्रधानाचार्य 1 रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड 1 1 रिक्ति, UDC 1 रिक्ति और कांस्टेबल 3 रिक्तियां। CDTI चंडीगढ़ के लिए उप पुलिस अधीक्षक 1 रिक्ति और इंस्पेक्टर 1 रिक्ति। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.bprd.nic.in। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईमेल का पता भी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल है ad.estab@bprd.nic.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश आमंत्रित कर रहा है विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार।
0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। हर दिन की तरह आज भी हम आपको कराएंगे देश दुनिया की परिक्रमा। बात होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, खेल जगत की हलचलों की और उन विशिष्ट हस्तियों की जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या

0: applications and operational milestones. So its latest achievement came in June 2026 when the Directorate General of Civil Aviation, the DGCA, successfully conducted India's first satellite-based landing system approach on a commercial jet aircraft using Gagan.
1: शगुन, अगर व्यापक स्तर पर अगर हम गगन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ बताना चाहूंगी कि जमीनी स्टेशनों, संचार प्रणाली और जियो स्टेशनरी उपग्रहों के एक समन्वित नेटवर्क के माध्यम से गगन काम करता है। ये नेटवर्क लगातार जीपीएस सिग्नलों की निगरानी करता है, उनमें आवश्यक सुधार करता है और बेहतर नेविगेशन संबंधी जानकारी सीधे विमानों तक पहुंचाता है। इससे उड़ानें अधिक सुरक्षित और सटीक बनती है, साथ ही उपग्रह आधारित विमानन सेवाओं में भारत की तकनीकी क्षमता भी और मजबूत होती है।
0: That is true.
1: और श्रोताओं, गगन भारत के व्यापक सैटेलाइट नेविगेशन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही भारत ने अपना स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नाविक भी विकसित किया है, जहां नाविक पोजीशनिंग, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वहीं गगन जीपीएस सिग्नलों को और अधिक सटीक बनाकर विमानों की सुरक्षित नेविगेशन और लैंडिंग सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।
0: एंड इन दिस वे Gagan will continue to strengthen India's satellite navigation ecosystem by supporting safer air navigation and improving air traffic management. Third one being expanding satellite-based navigation services across the country. And you were talking about NAVIC. So alongside NAVIC, it will play an important role in advancing indigenous navigation technologies and thereby reducing dependence on foreign systems. We were talking about Atmanirbhar Bharat as well, with growing applications in transportation, disaster management, surveying and other sectors. Gagan is poised to remain a key pillar of India's journey towards a connected, self-reliant and technology-driven future. True?
1: Ji.
0: Now we may proceed. It's also International Day of Hope. Vaishnavi was telling us about it in the beginning. So let us begin with the growing unrest the world is facing. There is unrest in the world, widening social divisions as well, persistent economic and environmental challenges. So the global community continues to seek values that unite rather than divide. And among these, hope stands out as a deeply powerful and universally resonant force. So recognizing this, the United Nations General Assembly has designated 12th of July as the International Day of Hope. This is a day to celebrate and promote hope as a guiding principle for individuals, for communities and for nations alike.
1: शगुन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये जो प्रस्ताव था उन मूल्यों पर आधारित है जो शांति, सम्मान, सहनशीलता और साझा प्रगति को बढ़ावा देते हैं। ये पहल केवल एक दिवस मनाने का तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद की ताकत को पहचानने और उसे बढ़ावा देने का एक वैश्विक प्रयास है। साथ ही सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान और सतत विकास में उम्मीद की अहम भूमिका को भी रेखांकित करता है। अब शगुन, मेरा तो ऐसा मानना है कि जिंदगी में ऐसे पल हर किसी के सामने आते हैं जब आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत किसी सहारे से ही नहीं होती, बल्कि उम्मीद से मिलती है
0: जी।
1: और वैसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक सीयर स्नाइडर भी कहते हैं, उनके अनुसार उम्मीद केवल एक भावना नहीं बल्कि दो बातों का मेल है। पहला, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प और उसे पाने के रास्ते तलाशने की क्षमता। वहीं वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि उम्मीद हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो सकारात्मक सोच और प्रेरणा से जुड़े होते हैं। यही वजह है श्रोताओं कि उम्मीद को मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: एंड डोंट यू थिंक होप इज अ रिमाइंडर दैट इवन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी Hope remains one of humanity's, hope is actually one of humanity's greatest strengths. Don't you think so?
1: Bilkul.
0: It resonates with me a lot. And affirming that hope is not, it is not merely an emotion. I don't think so. It is a powerful catalyst for positive change. The World Health Organization defined mental health as the ability to manage stress, work productively and contribute to one's community. Research consistently shows that higher levels of hope are associated with lower rates of depression, anxiety and trauma-related stress as well. So hope plays a vital role in advancing the Sustainable Development Goals. So the UN Declaration, let's coming back on it, of the International Day of Hope is more than symbolic. It is a global invitation to act. It calls on member states, regional and international bodies, civil society and individuals to cultivate environments where

0: hope can thrive. And these efforts, they may include public education, they may include the awareness campaigns, community outreach programs, acts of kindness, and the promotion of forgiveness and reconciliation. By embracing these values, societies, they can foster inclusion, they can foster empathy and resilience. Right?
1: आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस हमें ये याद दिलाता है शगुन कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. यही उम्मीद लोगों को जोड़ती है, समाज को मजबूत बनाती है और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देती है. इसीलिए ये दिन हम सभी को एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है जिसकी नींव विश्वास, सहयोग और इंसानियत पर टिकी हो. क्यों शगुन?
0: वेल, आई थिंक सो. एंड इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई डिफाइन होप, इट इज द कॉन्फिडेंस दैट टुमारो विल बी बेटर देन टुडे.
1: बिल्कुल, इससे अच्छा कोई डेफिनेशन नहीं होगा मेरे ख्याल से.
0: एंड इवन if I make it even more simple for our listeners, I think the last 5 minutes can be better than the last 5 minutes that passed away. I think the coming 5 minutes will be better than those 5 minutes. This is how I define, and this is how I function. Right? So these psychological benefits, they are mirrored in physical health. Cancer patients with higher hope, they report better survival rates and stronger adherence to treatment. Hope in early adulthood is associated with healthier long-term outcomes, and sustained hope correlates with fewer emergency room visits. Right? This is what we want. Fewer emergency room visits and reduced short-term mortality. Hope is a powerful force for both personal recovery and collective resilience. It fosters social trust, encourages civic participation, and these qualities are, they support inclusion, peace, sustainable progress, core aspects of the public good, and central to sustainable development goals, which are peace, justice, and strong institutions. The International Day of Hope reminds us that hope is not only a personal virtue, it is actually a collective responsibility. Don't you think so? It's a collective responsibility.
1: जी.
0: There is no peace without hope, no development Bilkul. Without trust, and no future without belief in one.
1: श्रोताओ, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास है.
0: So Vaishnavi, we'll first head to Andhra Pradesh. So the Andhra Pradesh government has taken a major step towards modernizing its tourism sector with an ambitious initiative to make the state the country's first artificial intelligence-powered tourism destination. This initiative is aimed at improving the travel experience through advanced digital technology while making information on the state's rich heritage easily accessible to visitors from across India and abroad. We have a detailed report on this from our correspondent. Let's listen in.
2: Andhra Pradesh Tourism Authority has entered into a 3-year strategic partnership with travel technology company Xplugger to roll out the Nevu AI platform across the state. Under the initiative, QR codes will be installed in faces at more than 100 prominent tourist and pilgrimage destinations. By scanning the QR codes, visitors will be able to interact with the AI platform through voice or text and receive information on the history, culture, and significance of each destination in more than 130 languages. The service will be provided free of cost and will not require users to download a separate mobile application. State Tourism Minister Kandula Durgesh said a pilot project at the Mangalagiri Lakshmi Narasimha Swami Temple has received a positive response from devotees. He added that the platform will also provide real-time analytics to help the government understand visitor preferences and strengthen tourism planning. Describing the initiative as a key step towards the Swarnandhra Vision 2047, he said it would help position Andhra Pradesh as a technology-driven and globally competitive टूरिज्म डेस्टिनेशन. अल्लु मुरली, आकाशवाणी न्यूज, विजयवाड़ा.
1: अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के ओर, जहां पे महाराष्ट्र सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और उनसे फॉर्म भरवाएंगे. इसी बीच कोंकण के एक छोटे से गांव मोजे टेरेव बुद्रुक ने ये प्रक्रिया 100% पूरी कर ली है. अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास.
3: रत्नागिरी जिले की चिपळूण तहसील का मौजे टेरव बुद्रुक गांव SIR की प्रक्रिया पूरी करने वाला महाराष्ट्र का पहला गांव बन चुका है. इस गांव में कुल 195 मतदाता है, जिसमें 93 महिलाएं और 102 पुरुष है. बूथ लेवल ऑफिसरों ने हर घर जाकर डिजिटल

0: प्रणाली का उपयोग करते हुए सटीकता के साथ निर्धारित समय से पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बारे में हमें बता रहे हैं चिपळूण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी आकाश लिगाड़े।
1: ये लोग को इस प्रोसेस में क्या तकलीफ आ जाती है ये जानने के लिए हमने एक गांव का एसआईआर की प्रक्रिया पूरा करने का निश्चय किया। उसमें हमने 265 चिपळूण असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 13 बुजुर्गों को सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि वहां पे 195 वोटर्स थे और 195 वोटर में से 192 का मैपिंग प्री एसआईआर एक्टिविटी में हो चुका था। ये गांव सिलेक्ट करने के बाद हमारे बीएलओ पटवारी है वो और आंगनबाड़ी सेविका इनके माध्यम से हमने ईएफ का कलेक्शन करवा दिया और यहाँ पे दो क्लर्क के माध्यम से वो डिजिटाइज कर दिए। 195 में से 187 ईएफ का डिजिटाइजेशन हो गया और 8 फॉर्म अनकलेक्टेड रह गए जिसमें 2 डेड थे, 5 डुप्लीकेट थे और 1 परमानेंटली शिफ्टेड थे। इस तरह ये टेरोबुद्रा गांव महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया पूरा करने वाला पहला गाँव बन चुका है।
0: इसी के साथ एसआईआर प्रक्रिया के तहत मौजे टेरो बुद्रुक की मतदाता सूची पूरी तरह से दोषमुक्त और अद्यतन कर दी गई है। इस उपलब्धि के लिए इस गांव के साथ ही पूरी चुनावी मशीनरी की भी सराहना हो रही है। परिक्रमा के लिए रत्नागिरी से अनिकेत कोनकर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे।
2: From Mumbai, we'll proceed. We'll go down south. Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Caste and Scheduled Tribes has been awarded the best tribal research center in the country. Well, we have a detailed report from our correspondent.
3: The national award by the Ministry of Tribal Affairs given to the tribal research centers in the country has been awarded to Kozhikode Kirthad. The Union Ministry of Tribal Affairs selected Kirthad in Kerala as the best institution among the tribal research centers in various states based on its performance in the last 3 years. This year's projects, policy, interventions, research and training activities, development studies and comprehensive interventions related to tribal welfare. The institution, which started its operations in 1972 as a tribal research and training center, was recognized as Kirthad's in 1979. Today, Kirthad's is a special directorate that works for research, development studies, training and academic support required for policy formulation for the scheduled castes and scheduled tribes. One of the most important social research institutes of the government of Kerala, Kirthad's has various departments including research studies, development studies, training programs, evaluation studies, support for doctoral research, language studies, statistical analysis, cartography and a tribal heritage museum. Kirthad's has a rich collection of books in the field of social sciences. An extensive library is one of the main features of the institution. Kirthad's also has a museum and open-air theater. Adjacent to this, the Tribal Studies Museum has an exhibition of weapons and tools used by tribals in ancient times and a wide range of books and other materials written in anthropology and social sciences. Kirthad's provides training through the Adigala Kendra to bring tribal arts and traditional dances to the new generation. Kirthad's director, Dr. Bindu S., received the national recognition from Ranjana Chopra, Secretary, Ministry of Tribal Affairs at the National Tribal Research Center's workshop in Bhubaneswar, Odisha. The Union Ministry, assessing that the activities being carried out by Kirthad's in Kerala can serve as a model for other tribal research centers in the country, has declared Kerala as a Mentor Tribal Research Center. This achievement is proof that Kerala's academic excellence, research capacity and commitment to tribal development have been once again recognized at the national level. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
2: शगुन अब श्रोताओं को लेके चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल।
4: सो वैष्णवी, लेट्स बिगिन विद फीफा वर्ल्ड कप।
2: जी।
4: सो इंग्लैंड बुक देयर सेमीफाइनल बर्थ विद अ 2-1 एक्स्ट्रा टाइम विन ओवर नॉर्वे, व्हाइल अर्जेंटीना एंटर्ड सेमीफाइनल डिफीटिंग स्विट्जरलैंड 3-1 दिस मॉर्निंग। सो इन द फर्स्ट सेमीफाइनल फ्रांस एंड स्पेन विल फेस ऑफ ऑन वेंसडे। द मैच विल किक ऑफ एट 12:30 AM IST. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium.
0: और टेनिस में

0: आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। वहीं महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलोदनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। और अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, हंसी अगर सोचने पर मजबूर कर दे तो वही सच्चा व्यंग्य कहलाता है। अपनी तीखी लेकिन सहज रचनाओं से समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार करने वाले ऐसे ही कवि थे हुल्लड़ मुरादाबादी। उनका वास्तविक नाम तो ऐसे था चंद्रभान गुप्ता, लेकिन साहित्य जगत में वे हुल्लड़ मुरादाबादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी कविताएं कवि सम्मेलनों की पहचान मानी जाती है।
1: टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग पाब्लो नेरुडा, द पोएट, डिप्लोमैट, पॉलिटिशियन, वन द 1971 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेरुडा बिकेम नोन एज अ पोएट व्हेन ही वाज 13 इयर्स ओल्ड ओनली। ही रोट इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, दिस इंक्लूड्स हिस्टोरिकल एपिक्स, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस, प्रोज ऑटोबायोग्राफी एंड पैशनेट लव पोएम्स सच एज द वंस इन हिज कलेक्शन 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर इन 1924। So he also occupied many diplomatic positions in various countries during his lifetime and served a term as a senator of the Chilean Communist Party as well. And well, he has been there in the poetic scene from a very long time. And I was telling you about Pablo Neruda.
0: श्रोताओं, क्या आपको याद है हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसने खलनायकी को एक नई पहचान दी और बाद में अपने सशक्त चरित्र अभिनय से भी दर्शकों का भरपूर प्यार पाया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता प्राण की।
1: वाओ, यस।
0: ऐसे तो प्राण का पूरा नाम था प्राण कृष्ण सिकंद। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खलनायक की परिभाषा ही बदल दी।
1: जी,
0: बाद के वर्षों में उन्होंने सकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता हासिल की। उनकी यादगार फिल्मों में उपकार, जंजीर, पूरब और पश्चिम, राम और श्याम, डॉन, अमर अकबर एंथनी और विक्टोरिया नंबर 203 शामिल है। उपकार के मलंग चाचा के रूप में प्राण साहब ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी थी। आइए अब उसी फिल्म का एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसके बोल आज भी उतने ही अर्थपूर्ण और प्रासंगिक लगते हैं। पेश है कस्मे वादे प्यार वफा।

0: आज हम दारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे विश्व विख्यात पहलवान, अभिनेता और राजनेता थे। कुश्ती की दुनिया में उन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया और लंबे समय तक अपराजित रहे। उन्होंने किंग कॉन्ग, मेरा नाम जोकर, आनंद, धर्म करम और कई अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया था, लेकिन उन्हें घर घर में सबसे अधिक लोकप्रियता रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में हनुमान की भूमिका से मिली थी। और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता था? जरा सोचिए थोड़ा पहले, फिर बताते हैं। श्रोताओं, ये सम्मान मिला था सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार को।
1: यस,
0: वे हिंदी

तिलक मंदिर, संगम, आरजू, झुक गया आसमान, सूरज और तलाश शामिल है। अपनी सहज अदाकारी और भावपूर्ण अभिनय के कारण वे लाखों दर्शकों के लोकप्रिय बने रहे थे। आइए अब उनकी एक यादगार फिल्म का आपको एक मधुर गीत सुनाते हैं।

भारतीय सिनेमा में कुछ निर्देशकों ने केवल फिल्में नहीं बनाई बल्कि समाज की सच्चाइयों को पर्दे पर इस तरह उतारा कि वे हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसे महान फिल्मकार थे बिमल राय। आज ही के दिन 1909 में जन्मे बिमल राय हिंदी और बांग्ला सिनेमा के महान निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। शगुन, अब इनकी बात हो ही रही है तो आइए आपको कौन सा नगमा सुनाता हूं मैं, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, कुछ कलाकार अपनी आवाज दिल जीतते हैं तो कुछ अपने अभिनय से, और ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है सुलक्षणा पंडित। आइए आपको सुनाते हैं उनकी इस आवाज में सजा एक खूबसूरत गीत।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और शगुन को अनुमति दे दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार,
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक

0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और समुदाय सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन आंदोलन में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला डबल्स और पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में शाम 5:30 बजे चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलिना माल्डोनोविका की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेफ के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and is proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. Meanwhile, New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched fresh airstrikes on Iranian military sites this morning. Iran retaliated with missiles and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, and the United Arab Emirates. The airstrikes came after

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते सफर चलता रहे, और इस सफर पे आपके साथ एक बार फिर से मुखातिब हूं मैं शिव प्रकाश, और आप तक पहुंचाने आए हैं बेहतरीन नगमे। बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे, हालांकि समय कम है तो बातें भी कम होगी और नगमे भी कम होंगे, लेकिन आप बने रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। हम आपसे वो कुछ बातें करेंगे जो काफी खास होंगी। जी हाँ, पहला नगमा जो हमने लिया है फिल्म सत्या से लिया है, और ये जो गाना है बहुत ही सुपरहिट गाना है इस फिल्म का, और फिल्म का जो संगीत था वो विशाल भारद्वाज और संदीप चौटा का था, और फिल्म एक बहुत ही लो बजट फिल्म थी उस जमाने में, और फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा यानी 2.5 करोड़ के करीब अनुमानित बजट था इस फिल्म का, और करीब 15 करोड़ रुपया इस फिल्म ने कमाया, तो कहा जाए कि बहुत ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का धमाल रहा। फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे JD चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी, परेश रावल, आदित्य श्रीवास्तव और सौरभ शुक्ला जैसे मछे हुए कलाकार इस फिल्म में थे, और राम गोपाल वर्मा इस फिल्म के निर्देशक थे। बहुत ही अच्छी ये फिल्म थी, तो इसी फिल्म का इस फिल्म को करीब 6 फिल्मफेयर सम्मान मिले, एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला जिसमें मनोज वाजपेयी को सहयोगी कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया। बहुत ही बढ़िया फिल्म, इसी फिल्म का एक सुपरहिट नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, और अगला नगमा है फिल्म दिल तो पागल है। उदित नारायण और लता मंगेशकर की प्यारी आवाज, उत्तम सिंह का संगीत, बेहद सुपरहिट फिल्म, यशराज फिल्म्स का ये शाहकार था और यश चोपड़ा ने इस फिल्म को बनाया था और फिल्म बहुत ही शानदार थी, बहुत अच्छी थी। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था। आप सब

0: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
1: ध्यान रखना बेटा।
2: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
2: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
2: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।

तो जी हाँ जनाब, हमारे चलने का वक्त हो गया और चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा नगमा, फिल्म है दिल चाहता है, एक सुपरहिट फिल्म। फिल्म में सितारे थे आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया। फिल्म को निर्देशित किया था फरहान अख्तर ने, बेहद सुपरहिट फिल्म थी ये। और फिल्म का जो संगीत था वो था शंकर एहसान और लॉय का, बहुत ही प्यारा संगीत था। इसी फिल्म का एक नगमा, आवाजें हैं श्रीनिवास महादेवन, शान और के की।

0: जी हाँ, आप भी प्यार बांटते चलें, मोहब्बत बांटते चलें और बने रहें खुशहाल और खुशियों को अपने आसपास बनाए रखें। इसी संदेश के साथ गाते गुनगुनाते से अब हम लेते हैं विदा और बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां आपसे कुछ ही पलों में प्रसारित किया जाएगा समाचार कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत भी हम कर रहे हैं हाल ही में पद्म सम्मान प्राप्त विभूतियों की कहानी से। आज हम सुनेंगे जुमनाम यात्रा सिंह की कहानी। जुमनाम यात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री 2026 के सम्मान से सम्मानित किया गया। जुमनाम यात्रा सिंह ने मणिपुर की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने

0: अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन मणिपुर की इस विरासत को संजोने में लगा दिया और आज की युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर मणिपुर में विरासत, संस्कृति और कला परंपरा को संरक्षित करने में अपना योगदान दे रही है। बहुत से युवा उनसे प्रेरणा लेकर इस दिशा में सामने आए हैं। तो आइए सुनते हैं जुमनाम यात्रा सिंह की कहानी।
1: मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत को सहजने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जुमनाम यात्रा सिंह को वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। जुमनाम यात्रा सिंह ने अपने पूरे जीवन में मणिपुर की पारंपरिक लोक कलाओं, लोक प्रदर्शन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ये पारंपरिक कला रूप समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी रहे। उनके प्रयासों से मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी और नई पीढ़ी को अपनी कला और संस्कृति पर गर्व करने तथा उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। पारंपरिक कला और सांस्कृतिक मूल्य के संरक्षण के प्रति उनकी निष्ठा ने स्थानीय परंपराओं को मजबूत आधार प्रदान किया। यह पद्मश्री सम्मान कला और संस्कृति के प्रति उनके आजीवन समर्पण का सम्मान है। उनकी विरासत आज भी कलाकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों को प्रेरित करती है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।

0: श्रोताओं, बांस की खेती पूर्वोत्तर राज्यों की आजीविका का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी आजीविका के स्रोत को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 362 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पूर्वोत्तर भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ की ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा और महिलाओं की खेती में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। तो बांस की खेती किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की आजीविका का एक अहम हिस्सा है और कैसे इस मंजूरी से पूर्वोत्तर भारत में बांस की खेती को और प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, इस रिपोर्ट में विस्तार से सुनते हैं।
1: पूर्वोत्तर भारत में बांस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने लगभग 362 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य बांस की खेती को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और बांस से बने उत्पादों के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना है। ये परियोजना राष्ट्रीय बांस मिशन के अनुरूप असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत देश के सबसे समृद्ध बांस संसाधनों वाले क्षेत्रों में से एक है। देश के कुल बांस संसाधनों का लगभग 35.8% हिस्सा यानी करीब 53,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र इसी क्षेत्र में फैला हुआ है। देश की कुल आबादी का केवल 3.8% हिस्सा पूर्वोत्तर में रहता है, लेकिन भारत के कुल वन क्षेत्र में इसका योगदान लगभग 24% है। इसके बावजूद भारत आज भी बड़ी मात्रा में बांस से बने उत्पादों का आयात करता है। नई परियोजना का उद्देश्य देश में उपलब्ध बांस संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए घरेलू बांस उद्योग को मजबूत बनाना है। ये परियोजना बांस की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करेगी। इसके तहत बांस की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही आधारभूत ढांचे का विकास, बाजार तक बेहतर पहुँच और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी। किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिलेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली पारंपरिक फसलों पर उनकी निर्भरता कम होगी। परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। इसमें शामिल 6 राज्यों में से प्रत्येक में महिलाओं के नेतृत्व में एक बांस निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को

प्रशिक्षण, डिजिटल सहायता और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बांस के बागानों, नर्सरी और प्रसंस्करण इकाइयों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। परियोजना के तहत बांस के बागानों और नर्सरी का विकास, एकीकृत बांस पार्क, साझा प्रसंस्करण केंद्र, बांस उत्पादन की निगरानी के लिए डिजिटल प्रणाली और ऑनलाइन व्यापार मंच विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही बांस संसाधनों का मानचित्रण, अनुसंधान, कौशल विकास कार्यक्रम तथा उद्यमियों और निवेशकों के लिए व्यावसायिक एवं वित्तीय परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बांस से निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग बायोचार, बांस चारकोल और ब्रिकेट जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने में किया जाएगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत में बांस का उपयोग मुख्य रूप से हस्तशिल्प और पारंपरिक कृषि उपकरण बनाने तक सीमित है, जबकि फर्नीचर निर्माण, वस्त्र, जैव ऊर्जा और इंजीनियर्ड उत्पाद जैसे क्षेत्रों में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना के माध्यम से इन उच्च मूल्यों वाले उद्योगों को बढ़ावा देकर बांस को आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे निवेश आकर्षित होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि और वन आधारित आजीविका पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के लिए ये पहल आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। उत्पादकता बढ़ाने, बाजार से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और हरित रोजगार सृजित करने के माध्यम से एशियाई विकास बैंक की ये परियोजना ग्रामीण आय बढ़ाने, जलवायु अनुकूल विकास को गति देने और पूर्वोत्तर भारत को देश की बांस अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।

0: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम पर्यटकों को हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है और हाल ही में सिक्किम में लगातार पर्यटकों की बढ़ती संख्या इस बात का उदाहरण है कि जिस तरह से सिक्किम पर्यटन स्थल के रूप में बहुत तेजी से एक विकसित होता हुआ राज्य है, उसने देश विदेश के आगंतुकों को अपनी ओर खींचा है। बीते 5 महीनों में भी सिक्किम ने पर्यटन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा और 10 लाख से ज्यादा यात्री और पर्यटक सिक्किम पहुंचे। तो किस तरह से सिक्किम एक खास पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है और कैसे इस वर्ष भी सिक्किम ने पर्यटन के सिलसिले में इस रिकॉर्ड को कायम किया है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में सुनते हैं।
1: सिक्किम में वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों के दौरान 10 लाख से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ राज्य का पर्यटन क्षेत्र एक और रिकॉर्ड वर्ष की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सिक्किम पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मई के बीच राज्य में कुल 1,060,665 पर्यटक पहुँचे। इनमें 1,030,363 घरेलू पर्यटक और 30,302 विदेशी पर्यटक शामिल है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र की मुख्य आधार शक्ति अभी भी देश के भीतर से आने वाले पर्यटक हैं। कुल पर्यटकों में घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी लगभग 97% रही, जबकि विदेशी पर्यटकों का हिस्सा करीब 3% रहा। इससे ये भी संकेत मिलता है कि कोविड-19 महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। वसंत और शुरुआती गर्मियों के महीनों में राज्य में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। जनवरी में 2,20,000 से अधिक घरेलू पर्यटक पहुंचे, वहीं फरवरी में ये संख्या कुछ कम होकर 1,08,000 से अधिक रही, जो आमतौर पर पर्यटन का अपेक्षाकृत शांत समय माना जाता है। इसके बाद मार्च में पर्यटकों की संख्या फिर बढ़कर 2,18,000 से अधिक हो गई। अप्रैल में 2,32,000

0: से ज्यादा और मई में वर्ष का सबसे अधिक लगभग 2,49,500 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। इसका मुख्य कारण गर्मियों की छुट्टियां और देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी रही, जिसे ठंडे मौसम की तलाश में बड़ी संख्या में पर्यटक सिक्किम पहुँचे। पर्यटकों की इस लगातार बढ़ती संख्या से उम्मीद जताई जा रही है कि सिक्किम इस वर्ष अपना पिछला पर्यटन रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ सकता है। वर्ष 2025 में राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या 16,54,838 रही थी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वर्ष केवल 5 महीनों में ही उस संख्या का 62% से अधिक हासिल किया जा चुका है। पर्यटन विभाग का मानना है कि यदि मानसून के बाद भी पर्यटकों का ये रुझान बना रहा तो वर्ष 2026 नया रिकॉर्ड बना सकता है। घरेलू पर्यटन में लगातार वृद्धि के बावजूद विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी महामारी से पहले के स्तर से काफी कम है। जनवरी से मई के बीच 30,302 विदेशी पर्यटक सिक्किम पहुंचे, जिनमें अप्रैल में सबसे अधिक 8,913 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। विदेशी पर्यटन के लिहाज से वर्ष 2019 सिक्किम का सबसे सफल वर्ष रहा था, जब 1,33,000 से अधिक विदेशी पर्यटक राज्य आए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में ये संख्या घटकर लगभग 11,500 रह गई थी। वर्ष 2023 में इसमें सुधार हुआ और लगभग 94,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे, लेकिन वर्ष 2025 में ये संख्या घटकर करीब 69,000 रह गई। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभी भी महामारी से पहले के अपने सर्वोच्च स्तर के आधे से भी कम पर है। ताज़ा आंकड़ों से स्पष्ट है कि सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र की तेज वृद्धि का प्रमुख आधार घरेलू पर्यटक है। राज्य में पर्यटन का स्वरूप अब भी मौसमी है और वसंत तथा गर्मियों के दौरान पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रहती है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी।
1: श्रोताओं, अब खेती में भी डिजिटल तरीकों को अपनाकर खेती को उन्नत किया जा रहा है और नागालैंड ने हाल ही में इसी पहल को आगे बढ़ाया है। नागालैंड में डिजिटल खेती के तरीके को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल में खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जा रहा है, यानी किसानों को अक्सर जैसे खेती के लिए कृषि सलाह चाहिए होती है, तो अलग अलग स्थानीय बोलियों में एआई के जरिए कृषि सलाह किसानों तक उपलब्ध होगी। बाजार विश्लेषण के मामले में भी एआई किसानों की मदद करेगा। इसके अलावा मौसम की सटीक जानकारी को लेकर भी एआई उनकी मदद करेगा। तो किस तरह से नागालैंड सरकार की इस पहल से नागालैंड में डिजिटल और उन्नत खेती की दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है, आइए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से सुनते हैं।

नागालैंड सरकार के कृषि विभाग ने 7 जुलाई को कोहिमा में यूनिफाइड डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का औपचारिक शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन कृषि सलाहकार महतुंग यानथान ने किया। यह डिजिटल व्यवस्था कृषि क्षेत्र में मौजूद पारंपरिक चुनौतियों को कम करने और किसानों के लिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके माध्यम से खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी और सरकारी सेवाएं राज्य के दूर दराज इलाकों तक भी आसानी से पहुँच सकेंगी। इस मंच पर कई आधुनिक तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित बाजार विश्लेषण किसानों को फसलों के संभावित दाम और मांग की जानकारी देगा, जिससे वे सही फसल चुनने और उसे बेचने का बेहतर निर्णय ले सकेंगे। वहीं IoT आधारित निगरानी प्रणाली खेतों की मिट्टी और मौसम की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराएगी। इससे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था में खेती मनु नाम का AI आधारित सलाहकार भी शामिल है, जो स्थानीय बोलियों में किसानों को खेती से जुड़ी तकनीकी सलाह देगा। इससे कृषि संबंधी जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंच सकेगी। यह पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में नागालैंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करती है। इसके अलावा GIS आधारित सेवाएं, विभाग के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली और सभी जिला कार्यालयों को जोड़ने वाला ई हब भी शुरू किया गया है। इससे प्रशासनिक कामकाज और किसानों तक सेवाओं की पहुँच और बेहतर होगी। यह डिजिटल मंच अब पूरी तरह शुरू हो चुका।

हुआ है और जिला स्तर के अधिकारियों को भी इससे जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही नागालैंड में डिजिटल, आधुनिक और अधिक मजबूत कृषि व्यवस्था की नई शुरुआत हुई है, जिससे किसानों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। असुनो की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।

0: श्रोताओं, बीते वर्षों में केंद्र सरकार की लखपति दीदी की पहल ने ग्रामीण भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वोत्तर भारत में भी ये पहल लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है। आज हम आपको पश्चिम त्रिपुरा की रंजुली सिंह की एक कहानी सुनवाने जा रहे हैं, जिन्होंने खुद लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर बनने का एक उदाहरण पेश किया और साथ ही स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करके महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को ग्रामीण स्तर पर बढ़ाया। तो आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में विस्तार से त्रिपुरा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: लखपति दीदी का मतलब केवल सालाना 1 लाख रुपए की आय अर्जित करना नहीं है, यह आत्मविश्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, कौशल विकास और अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वे अस्थायी आजीविका का साधन तैयार कर रही है। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TRLM के माध्यम से इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य भर में महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई, पशुपालन, कृषि और अन्य छोटे व्यवसायों के जरिए सफलतापूर्वक अपनी आय बढ़ा रही हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक पश्चिम त्रिपुरा के सेकरकोट की रंजोली सिंह। चांकला हायर सेकेंडरी स्कूल के पास रहने वाली रंजोली ने स्वयं सहायता समूह के सहयोग और अपनी मेहनत से जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। आज वे न केवल एक सफल लखपति दीदी हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के एक विलेज क्लस्टर की अध्यक्ष भी हैं। वे कई स्वयं सहायता समूहों का मार्गदर्शन कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
2: I work in our Manipuri handloom spices, gotari, mushroom, etc. units. Here, I did not have a regular source of income. Now we make several products which has helped us earn a good income. The Lakputi Didi initiative and our SSG gave me training under the guidance of Tripura Rural Livelihood Mission to gain confidence and the opportunity to move forward. Today I am financially independent and I encourage other women to start their own work and become self-reliant. My dream is to take our product to more people and help our group grow even further.
1: रंजोली सिंह की कहानी ग्रामीण त्रिपुरा में हो रहे व्यापक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जो महिलाएं पहले आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार पर निर्भर थी, वे आज अपनी आय अर्जित कर रही हैं, बचत कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रही हैं। साथ ही वे अपने गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। हाल ही में त्रिपुरा दौरे पर आई केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश भर में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में करीब 1,30,000 महिलाओं ने लखपति दीदी का दर्जा हासिल किया है, जबकि लगभग 5,40,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, क्षमता विकास और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इससे महिलाएं सफल उद्यमी बन रही हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
3: Our livelihood coordinators and cluster coordinators play a crucial role in strengthening the livelihoods of SHG members. We regularly identify potential Lakhpati Didis, prepare household livelihood plans, provide continuous handholding support and motivate members to take up multiple income generating activities. We are facilitate bank linkage and credit support, ensure convergence with various government schemes.
1: रंजोली सिंह की कहानी ये बताती है कि जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे केवल अपना जीवन ही नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ने में प्रेरणा देती हैं। लखपति दीदी पहल के माध्यम से बड़ी संख्याओं में महिलाएं आत्मनिर्भर

0: बन रही हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा में समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह, आकाशवाणी समाचार।
1: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, लोअर सियांग और कई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। दल ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया। दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सालू भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों ने दल को बाढ़ से हुई क्षति, अब तक किए गए बहाली कार्यों तथा तत्कालीन और दीर्घकालिक पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान की। दल ने स्थानीय निवासियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा प्रभावित किसानों से भी बातचीत कर बाढ़ प्रभावित समुदायों के समक्ष मौजूद चुनौतियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा बचाव, राहत तथा बहाली कार्यों में की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। दल ने आश्वासन दिया है कि निरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी निष्कर्षों और अवलोकनों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में तैयार कर भारत सरकार को सौंपा जाएगा, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बहाली और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर विचार किया जा सके। ये दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने तथा अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अधिक सुदृढ़ और आपदारोधी आधारभूत संरचना विकसित करने के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थ्यांग न्यूंग्यम, ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विविध परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियां वहां की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती हैं। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं, जो हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से भेजी है।
3: नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति खियाम न्यूंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। त्वेनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1,152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से खियाम न्यूंगम जनजाति निवास करती है। खियाम न्यूंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, खियाम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुंकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है। लोक कथा के अनुसार खियाम न्यूंगन लोगों की उत्पत्ति खियामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और खियामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाक क्षेत्र तथा म्यांमार में चिनद्विन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए। नोकलाक का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। खियाम न्यूंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती करता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार ख्याम न्यूंगन संस्कृति की धड़कन है जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक

हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। तुसोकुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। ये सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा खाओ जाओ सीए होक आह जो जनवरी में मनाया जाता है और बियाम जो अगस्त में मनाया जाता है भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। ख्याम न्युंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती हैं जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसाह है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं जिनमें बीज, शंख और कभी कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही ख्याम न्युंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक

0: वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon the ship. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, and the United Arab Emirates. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continue. The mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to its Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post,

0: yesterday informed that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. Earlier in the day, the embassy said that 15 survivors of the tragic boat accident have been discharged from hospital after receiving medical treatment and are returning to India. Home Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stones of a series of development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Gujarat. On the occasion, the minister also launched a massive tree plantation drive under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, which saw the planting of over 1 crore 25 lakh saplings across his Lok Sabha constituency Gandhinagar today. Speaking on the occasion, Mr. Shah highlighted a long-term environmental roadmap to increase the green cover of the constituency to 20% by the 2029 elections. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said Prime Minister Narendra Modi has taken several key initiatives to tackle climate change and global warming. Union Minister for Housing and Urban Affairs Manohar Lal has emphasized the need for adopting environmental friendly technologies in construction sector. Speaking at the function organized on the 172nd Foundation Day of the Central Public Work Department in New Delhi, the minister stressed that while constructing any building or structure, the durability strength should not be compromised. On the occasion, the Union Minister also virtually laid the foundation stone of National Council for Public Works building at Ghaziabad in Uttar Pradesh. The government has refuted a fake image circulating on social media claiming that ethanol-blended petrol can cause problems in a vehicle's fuel tank. The Press Information Bureau's fact-check unit has termed the claim as false. It said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that E2 petrol supplied by oil marketing companies conforms to standards prescribed by the Bureau of Indian Standards. The United States, the United Kingdom, and a dozen other Western and Asian countries today reasserted that China's expansive claims in the South China Sea are illegal based on a 2016 arbitration ruling. A joint statement issued by the 40 nations said they reject destabilizing actions in the disputed waters that threaten regional stability. The South China Sea remains a major flashpoint with repeated territorial standoffs involving China and the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan. In the historic one-off women's test between hosts England and India, the Lords in London visitors were 250 for 4 in their second innings on day 3 when reports last came in. England were bowled out for 170 runs in their first innings. The semi-final lineup for the FIFA World Cup has emerged with Argentina, England, France and Spain sealing spots in the last four. England defeated Norway 2-1 while Argentina outclassed Switzerland 3-1 in the quarterfinal this morning. In the first semi-final, France will meet Spain at Dallas in US on Tuesday late night at 12:30 a.m. while England will take on Argentina on Wednesday late night at 12:30 a.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है मैं हूं वैष्णवी आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के खिलौना उद्योग की जो आज केवल बच्चों के मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि भारत के विनिर्माण नवाचार निर्यात और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहा है नई दिल्ली के भारत मंडपम में 4 से 7 जुलाई तक आयोजित 17वें टॉय बिज अंतर्राष्ट्रीय B2B एक्सपो में देश विदेश के निर्माता निर्यातक स्टार्टअप डिजाइनर और खरीदार एक मंच पर आए जहां भारतीय खिलौना उद्योग की बदलती तस्वीर देखने को मिली इस प्रदर्शनी में पारंपरिक शिल्प से लेकर आधुनिक शैक्षणिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों तक भारतीय कंपनियों ने अपनी विनिर्माण क्षमता नवाचार और वैश्विक पहुंच का प्रदर्शन किया लेकिन श्रोताओं ये विषय केवल खिलौनों तक सीमित नहीं है भारतीय खिलौना उद्योग में हो रहा बदलाव देश के विनिर्माण नवाचार गुणवत्ता और निर्यात क्षमता में आ रहे व्यापक परिवर्तन की भी कहानी कहता है आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि इस क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई इसके क्या परिणाम सामने आए और भारत की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के लिए इसका क्या महत्व है श्रोताओं, भारत में खिलौनों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में की खुदाई में मिले मिट्टी के खिलौने इस बात के प्रमाण है कि भारतीय समाज में खिलौने केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि सीखने, कल्पना शक्ति और संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी थे। समय के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में लकड़ी, मिट्टी, कपड़े और धातु से बने पारंपरिक खिलौनों की समृद्ध परंपरा विकसित हुई, लेकिन आधुनिक दौर में भारतीय खिलौना उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक घरेलू बाजार में आयातित खिलौनों की हिस्सेदारी बढ़ती रही। बड़ी संख्या में छोटे और कुटीर उद्योग सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे थे, जबकि सस्ते आयातित उत्पादों के कारण स्थानीय निर्माताओं के सामने प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग ने चुनौतियों से अवसर तक का ये सफर कैसे तय किया है, आइए विस्तार से समझते हैं।
3: पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलौना उद्योग ने उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। इस बदलाव के पीछे केवल बाजार की मांग नहीं, बल्कि नीतिगत सुधार, गुणवत्ता पर विशेष जोर और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की एक व्यापक रणनीति भी रही है। वर्ष 2020 में सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना शुरू की। इसका उद्देश्य केवल खिलौनों का उत्पादन बढ़ाना नहीं था, बल्कि ऐसे खिलौनों को बढ़ावा देना था जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान से प्रेरित हों। इसके साथ ही बच्चों में सीखने के प्रभावी माध्यम के रूप में खिलौनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया गया। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, जिसे लागू कर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में बिकने वाले खिलौने गुणवत्ता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। इससे एक ओर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा, वहीं दूसरी ओर घरेलू निर्माताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिला। इन प्रयासों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खिलौना निर्यात लगभग 153 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2025 तक यह बढ़कर 385 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी 8 वर्षों में निर्यात में 150% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे अधिक वृद्धि पारंपरिक और शैक्षणिक खिलौनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्यात में देखने को मिली। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देश भारतीय खिलौनों के प्रमुख बाजार बनकर उभरे हैं। दूसरी ओर पारंपरिक और शैक्षणिक खिलौनों के आयात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भारत वर्ष 2017-18 में खिलौनों के व्यापार में घाटे की स्थिति में था, वहीं वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र में व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस हासिल करने में सफल रहा। इस परिवर्तन में उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। टॉयकैथॉन, ई टॉयकैथॉन और ई टॉय लैब जैसी पहले नई पीढ़ी के नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही, जिससे भारत का खिलौना उद्योग पारंपरिक शिल्प और आधुनिक तकनीक दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: श्रोताओं, भारतीय खिलौना उद्योग में आए इस बदलाव को उद्योग जगत किस तरह देख रहा है, ये हमने जाना। लेकिन ये परिवर्तन केवल एक उद्योग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर भी है। आखिर खिलौना उद्योग को भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है और आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र देश के विकास में क्या भूमिका निभा सकता है, आइए समझते हैं।
3: खिलौने अक्सर बच्चों के खेल और मनोरंजन से जोड़कर देखे जाते हैं, लेकिन किसी भी देश का खिलौना उद्योग उससे कहीं अधिक व्यापक महत्व रखता है। यह केवल उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि डिजाइन, रचनात्मकता, तकनीक, कौशल विकास, विनिर्माण और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों को भी गति देता है। भारत के संदर्भ में इसकी एक और विशेषता है, यहाँ खिलौनों की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चन्नापटना के लकड़ी के खिलौनों, तंजावुर की गुड़ियों और देश के विभिन्न हिस्सों में बनने वाले पारंपरिक हस्त निर्मित खिलौनों तक, यह विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता और शिल्प कौशल की पहचान रही है। आज जब इन पारंपरिक खिलौनों को आधुनिक डिजाइन, बेहतर पैकेजिंग और वैश्विक बाजार से जा रहा है, तब यह केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी नई पहचान दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण होता जा रहा है। खिलौना उद्योग बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME से जुड़ा हुआ है। इससे कारीगरों, छोटे निर्माताओं, व्यापारियों और स्थानीय उद्यमियों को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में रोजगार भी तेजी से बढ़ रहा है। आज खिलौनों की दुनिया भी तेजी से बदल रही है। इससे पहले जहां खिलौनों का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित माना जाता था, वहीं अब माता पिता ऐसे खिलौनों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बच्चों में सीखने, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करें। इसी कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM आधारित खिलौनों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों पर आधारित स्मार्ट खिलौने भी वैश्विक बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यह भारतीय उद्योग के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। नई दिल्ली में आयोजित टॉय बिज प्रदर्शनी में भी इस बदलाव की स्पष्ट झलक देखने को मिली। वहां पारंपरिक खिलौनों के साथ साथ शैक्षणिक किट, विज्ञान आधारित मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और स्वदेशी तकनीक से विकसित उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग में आए इस बदलाव के पीछे कई नीतिगत और संरचनात्मक परिवर्तन रहे हैं, लेकिन उद्योग जगत इस परिवर्तन को किस तरह देखता है? आकाशवाणी समाचार ने इसी विषय पर इंडिया SME फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलौना उद्योग में बड़ा बदलाव आया है। पहले हम खिलौनों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत वैश्विक स्तर पर खिलौनों के निर्माण और निर्यात का एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप और कारीगरों को मिला है। अगर हम करीब 10 साल पहले की बात करें तो भारत में बिकने वाले लगभग 85% खिलौने विदेशों से आते थे। ये ज्यादातर कम लागत वाले देशों से आयात किए जाते थे। उस समय भारतीय खिलौना निर्माता, खासकर छोटे उद्योग और कारीगर, सस्ती विदेशी प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता के मानकों की कमी, बिखरी हुई आपूर्ति व्यवस्था, डिजाइन की सीमित क्षमता और बाजार तक कम पहुंच जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। लेकिन पिछले एक दशक में नीतिगत सुधार, गुणवत्ता पर जोर, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले कदम और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र में तेज बदलाव आया है। खिलौना उद्योग अब केवल बच्चों के मनोरंजन या उपभोक्ता वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा है। आज ये निर्माण, संस्कृति, रचनात्मकता, कौशल विकास और निर्यात से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अहम भूमिका है।
2: श्रोताओं, भारतीय खिलौना उद्योग में आया ये बदलाव केवल बढ़ते निर्यात या घरेलू विनिर्माण तक सीमित नहीं है। ये इस बात का भी संकेत है कि सही नीतिगत समर्थन, गुणवत्ता पर जोर और नवाचार के बल पर भारत नए क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खिलौना का ये उद्योग आज कारीगरों और MSME से लेकर स्टार्टअप और आधुनिक विनिर्माण इकाइयों तक लाखों लोगों के लिए नए अवसरों का माध्यम बन रहा है। वहीं पारंपरिक भारतीय शिल्प और आधुनिक तकनीक का ये संगम भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच तक पहुंचा रहा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग स्मिता सिंह।
5: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य तटे वाणिज्यिक नौकायानस्य GFS गैलेक्सी इत्यस्य उपरि आक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। 10 भारतीयाः रक्षिताः, एकश्च लुप्तोऽस्ति इति सूच्यते। भारतदेशः अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौकायानस्योपरि निरन्तर आक्रमणानां विषये चिन्तां प्राकटयत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां परिभ्रमण काले अनेकाः सन्धीः समाप्य नवदेहलीं प्रत्यागतवान्। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद नगरे अनेकासां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनं स्वायत्त भविष्य निधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। विम्बल्डन् क्रीडायां यानिस सिनर इत्येषः अद्य सायंकाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव इत्यनेन सह पुरुष एकल उपाधिं प्राप्तुं संघर्षं करिष्यति। अपि च फीफा विश्व चषक क्रीडायां इंग्लैंड देशः अर्जेंटीना देशस्य उपान्त्य चक्रं प्रविशतः।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Subodh Mishra.
1: Namaskar, shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट

0: तंत्र में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
2: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 months, इन्फ्यूज मोर देन 15,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई। सिचुएशन इन वेस्ट एशिया इंटेंसिफाइज एज ईरान वंस अगेन शट्स द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेश एयर स्ट्राइक्स। And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
0: चार महीने बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने रुख बदला और इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। पश्चिम एशिया में तनाव गहराया। अमरीका के ताजा हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों। कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों और वैश्विक गतिविधियों पर।
2: And before we go any further in the program, may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Sarabjit aur hamare callers intezar mein hain.
2: Ji.
0: सीधे चलते हैं उनके पास। यूपी से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: मार्केट मेकर टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मेरा प्रश्न ये है, मैं इक्विटी क्लास में एसआईपी के द्वारा मंथली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टेड हूँ और सर जो बीच में जो मुझे कुछ एरियर मिलता है उसको मैं लमसम अमाउंट में, कम अमाउंट होता है तो उसको लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी के माध्यम से मैं अपने करंट जो एसआईपी है, करंट म्यूचुअल फंड है, उनमें इन्वेस्टेड करता हूँ। अब सर चूंकि आईटीआर मुझे फिल करना है तो मैंने एआईएस डाउनलोड किया है, उसमें मुझे सर अपने म्यूचुअल फंड की एंट्रीज मिली हैं और उसमें सर एक सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विशन, ये दो मुझे चीजें मिली हैं जिसमें मैंने जैसे 5,000 रुपए का एसटीपी चालू किया हुआ था तो सेल्स कंसिडरेशन में 5,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विशन में अमाउंट कम है 4,750 रुपए। तो मैम मुझे क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि मैंने तो केवल एक लिक्विड फंड से और अपना जो करंट एसआईपी फंड है उसमें ही इन्वेस्टेड किया है, कोई रिडीम नहीं किया है कोई भी अमाउंट, तो क्या मुझे टैक्स एप्लीकेबल होगा और मुझे उस टैक्स को कहाँ ITR 1, जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मुझे ITR 1 फिल करना है तो मुझे उसमें कहाँ शो करना होगा, क्योंकि मैंने AIS डिटेल चेक किया तो उसमें मुझे अपनी एंट्रीज जो भी मैंने लमसम अमाउंट किया था उसको एसटीपी के माध्यम से कई सारी एंट्रीज दी है, मुझे उसको कैसे शो करना होगा, प्लीज गाइड करें।
4: विवेक जी बिल्कुल, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आपने जो अपने म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने रिडीम नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने एसटीपी सेटअप किया और एक लिक्विड फंड से आपका पैसा निकल करके हर महीने जब वो इक्विटी फंड में गया तो भले ही वो एक ट्रांसफ़र हुआ लेकिन टैक्सेशन पर्पस से उसको एक तरीके से यही माना जाएगा कि लिक्विड फंड में से पहले वो पैसा रिडीम हुआ और उसके बाद जा करके उस नए इक्विटी फंड में वो पैसा इन्वेस्टमेंट हुई। तो इसके लिए जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया कि कुछ 5,000 रुपये का सेल कंसिडरेशन है और 4,700 रुपये का जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बेसिकली परचेज कॉस्ट है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भरने के लिए देखिए, जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स पे आजकल जो टैक्स है वो आपके जो भी आपका जो इनकम पे जो स्लैब रेट है, जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करते हैं वही आपको उसी पे आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल होएगा। तो सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आप कैम्प्स की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट पूरा का पूरा पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस फंड पे, इक्विटी पे, नॉन इक्विटी पे आपको कितना कैपिटल गेन है। वहीं पर साथ में जो इस पे आपको टैक्स के लिए जो आपको अपनी ITR में देना है, जो ITR 1 होता है नॉर्मली उसमें जो अगर खाली आपका इक्विटी फंड से कैपिटल गेन होता है 1.25 लाख तक का तो हम रिपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे कि आपके केस में है कि आपने एक लिक्विड फंड में किया था वहाँ से कैपिटल गेन हुआ है एक नॉन इक्विटी फंड से, तो जहाँ तक कि मेरी जानकारी है आपको ITR 2 में उसको दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन्स के शेड्यूल में, भले ही अमाउंट छोटा सा हो लेकिन

0: लेकिन उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स हो देना पड़ेगा। बाकी टैक्सेशन के लिए एक दफ़ा बेहतर रहेगा कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर लें।
1: ऑल राइट, एंड नाउ लेट्स आस्क यशपाल जी, व्हाट इज हिज क्वेश्चन। यशपाल जी सवाल पूछें।
2: हाँ, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग।
2: एक्चुअली माय पोर्टफोलियो इन द म्यूचुअल फंड इज वेल डाइवर्सिफाइड प्रेजेंटली, बट टू हैव मोर स्टेबिलिटी आई वांट टू गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम सम ऑफ द फंड्स वेयर द रिटर्न इज मोर देन 10% एंड इन्वेस्ट इन सम मोर स्टेबल फंड्स लाइक लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स एंड इवन सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑल्सो वेयर द इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 11% विद A+ रेटिंग। So my time horizon is around 3 years and I'm 62 years old. Please advise which is better option. Thank you.
0: As far as I can understand, you plan to bring some kind of stability in your portfolio. Profit booking just because, you know, you have, crossed a certain threshold of the annual returns which was set in your mind would not be right, to be honest. However, what you should be doing is you should arrive at an asset allocation. At the age of 62, I believe, if this is a portfolio which you also use to derive income, the general equity allocation should be at least 30 to 40% of the complete portfolio. And if it is something that, this portfolio is not something on which you are dependent for deriving a regular income, then probably 50 to 70% can be very much in equity. So first you need to decide on the total asset allocation, and post that, you can transfer the money into the fixed income part. For fixed income, I would say if you have a horizon of 3 to 4 years, a good quality short duration debt fund would be the right choice. Liquid fund is something which can be opted for the expenses which are due within the next year. So for goals which are falling in 1 year, maybe a liquid fund is fine. Otherwise go for a short duration debt fund.
3: जी आकार, अभी एक श्रोता जो सवाल पूछ रहे थे हमारे कैपिटल गेन्स के बारे में,
0: हाँ जी,
3: वो हमारे कई श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी बहुत अभी चिंता का विषय बना रहता है जब हमें टैक्स फाइल करने का वक्त आता है तो।
0: जी जी।
3: और सबको लगता है कि भाई वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, और कई दफ़ा होता है कि MF सेंट्रल से जो स्टेटमेंट आता है उसमें नहीं होता। क्या हम इसको अलग अलग जो जहां से हमने डाला हुआ है जिन म्यूचुअल फंड्स में, उन कंपनियों की जो वेबसाइट है अपनी, उन पर भी जाकर ले सकते हैं हम?
0: जी जी बिल्कुल।
3: वो ज़्यादा डिटेल में शायद आता है और हर किसी का अलग अलग आता है उसमें।
0: जी,
3: इसमें एक साथ मिल जाता है आपको म्यूचुअल फंड।
0: हाँ जी,
3: हाँ, सेंट्रल में।
0: हाँ जी, हाँ जी। बल्कि अगर आप कैंप्स पे जाएंगे तो कैंप्स पे जाने से सहूलियत ये हो जाती है कि आपको अपने जो भी आपके अक्रॉस द फंड हाउसेज गेन्स है वो सब आपको एक जगह मिल जाते हैं एक स्टेटमेंट में। बट वहीं अगर मान लीजिए अगर किसी ने कुछ 10 फंड हाउसेज के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वो हर फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएगा तो उसको 10 तरीके के स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे और वहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन्ड होता है कि कितना इक्विटी फंड्स में है, कितना नॉन इक्विटी फंड्स में। आप चाहे तो उसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न भरते अगर आप खुद जैसे जब रिटर्न भरेंगे तो फिर एक्सेल वाला फॉर्मेट थोड़ा सा ज़्यादा सहायता पूर्वक रहता है, वहाँ पे आप कैलकुलेशंस इजीली कर पाते हैं।
3: जी, और अब पहली खबर पे हम नज़र डालें आज की कि FPIs का रुख बदला है। लगातार 4 महीने तक बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs ने जुलाई में रुख बदला और इस महीने अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार में 15,157 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक व्यापार में कमज़ोरी से FPIs अब फिर से उभरते हुए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह रहा है। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाज़ार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने FAR के जरिए 6,625 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 3,228 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर रवि फ्रॉम दिल्ली। रवि जी सवाल पूछें।
4: मंत्री मंत्रा जी नमस्कार, ये मेरा पहला सवाल है। जैसे मैं 10,000 रुपये मंथली SIP चला रहा हूँ तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा मेरा सवाल जो ईरान और अमेरिका का ये हो

0: ऑलमोस्ट बंद हो गया तो मार्केट गिरने की संभावना है या नहीं?
1: ये बहुत अहम सवाल है जो कई लोगों को ये गलतफहमी या खुशफहमी रहती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।
2: जी जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग मिलने का तरीका है वो एक नॉर्मल एफडी से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अगर एकदम सरल भाषा में बात की जाए तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट या रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न। एफडी में अगर आपने देखा होगा तो आमतौर पे ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपए की एफडी की और मैच्योरिटी पे उसमें 10,000 इंटरेस्ट मिला तो अगली बार आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हो जाता है कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आपको रोज के रोज आपके एनएवी से डिसाइड होती है। एक एनएवी डिक्लेयर की जाती है जो कि आपके अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू होती है, और यहाँ पे उस एनएवी के थ्रू अंदर ही अंदर जिस तरीके से वो कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हो रही है, तो वो वहीं के वहीं कंपाउंड होता रहता है। तो यहाँ पे आपको एफडीज के तरह एक अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके कोई खाते में एक अलग से नहीं आएगा, लेकिन वो जो एनएवी है वही आपकी कंपाउंड होती रहेगी। तो वो टाइम बाय टाइम आप देखेंगे तो आपको जो एक टोटल मुनाफा होता है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है, बट बेनिफिट वही मिलेगा।
1: जी, और किसी भी सूरत में ये इंटरेस्ट नहीं है।
2: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्ट नहीं है
1: जी।
2: और एक दूसरा सवाल था आपका कि अभी जो ईरान में टेंशन चल रही है, वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, तो अभी मार्केट गिरेगा कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट एकदम आगे आने वाले समय में कैसा होगा वो मैं क्या आपको कोई भी बहुत ही श्योरिटी से नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट चल रहा है और जिस तरीके से अभी टेंशन चल रही है, आने वाले कुछ करीबी समय में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर रहेगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको एकदम जब भी इक्विटी में निवेश करें तो एकदम आने वाले एकदम पास के समय के लिए मत करें और ना ही उसकी चिंता लीजिए। आप बस एक डिसिप्लिन तरीके से आपने एक SIP चालू करी हुई है, आप मैं मानता हूँ आपने ज़रूर एक अच्छे फंड में निवेश किया होगा, आप बस पूरे दिल से बिना घबराए हर महीने डिसिप्लिन से उसमें निवेश करते रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल रखिए, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
1: जी, अगले कॉलर हैं कर्नाटक से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: गुड इवनिंग मार्केट मंथरा टीम।
1: गुड इवनिंग
3: आकार जी, आई वांट इन्वेस्ट 4,00,000 रुपीस फॉर अबाउट 6 months टू 1 year, व्हिच फंड शुड आई इन्वेस्ट फॉर लमसम?
2: वीरेंद्र जी, योर होराइजन इज 6 months टू 1 year, सो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली नॉट गो बियॉन्ड अ लिक्विड फंड व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। सो फॉर सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन लिक्विड फंड वुड बी अ ग्रेट चॉइस। वाइल चूजिंग अ लिक्विड फंड वॉट यू शुड बी लुकिंग एट इज द एक्सपेंस रेशियो, डेफिनेटली लोअर द बेटर, because there won't be huge difference in returns when it comes to liquid funds. In fact, if you see a liquid fund with a unusually high return than others, then you should not be opting for it, because while investing in fixed income the main objective should not be to optimize or to maximize your profit or returns, but rather it should be to bring stability and preserve your capital. Alternatively, you can very well go for a fixed deposit for such a short period of time, because when it comes to the taxation, both are on the same level now. But yes, there will be definitely more liquidity and flexibility in mutual funds, because you would not have to commit to a fixed time period, which would be the case in a fixed deposit. And in case if you go for a fixed deposit, say commit a time period and then happen to withdraw it before that, you'll have to pay penalty on the interest amount. So if you want to go for liquidity and flexibility, opt for a liquid mutual fund for this duration.
4: All right, let's ask Yogesh ji, what is his query? Yogesh ji, सवाल पूछें।
5: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल MF सेंट्रल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी लॉग इन करके पोर्टफोलियो देखने के लिए, MF सेंट्रल का, MF सेंट्रल में एक फीचर आया है जब भी लॉग इन करते हैं कि वॉलेंटरी लॉक इन, तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को वॉलेंटरी हम लोग एक्स्ट्रा लॉक्स पे लगा सकते हैं ताकि रिडीम करना उसको मुश्किल हो पाए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, ये कितना कारगर है और क्या ये AMC लेवल पे भी काम करता है, सिर्फ MF सेंट्रल का अपना फीचर है?
2: नहीं, अभी सेबी द्वारा कुछ टाइम पहले डायरेक्टिव आया था कि अगर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लॉक

0: लगा सकते हैं जो बेसिकली साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कुछ और तरीके के जो इंटरनेट फिशिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए एक ये स्टेप अहेड है, डेफिनेटली एक एडेड फीचर है, एक एडेड सिक्योरिटी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक वहाँ से लॉग इन लगा सकते हैं, बट फिर जब भी आपको रिडिम्शन करना होगा आपको उससे पहले एक दफ़ा ये लॉग इन खुद हटाना पड़ेगा।
1: जी, अगले कॉलर है राजस्थान से, राजेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा था।
1: जी
2: सर, वो मैंने कोटक की ELSS टैक्स सेवर फंड में निवेश किया हुआ है, तो सर अब इसमें रिडेम्पशन का क्या नजरिया रहेगा सर, क्योंकि तो मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें जो टैक्स सेवर फंड है सर, इसमें रिडेम्पशन का कितना अमाउंट निकाल सकते हैं या क्या उचित रहेगा सर?
0: राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टैक्स सेवर फंड है, जो ELSS फंड है, इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन है, तो जिस भी तारीख को आपने पैसा इसमें निवेश किया होगा तब से लेकर के अगले 3 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपने लमसम किया होगा तो, और अगर आपने SIP के द्वारा निवेश किया होगा तो हर SIP इंस्टॉलमेंट की डेट से उस पार्ट के लिए 3 साल वहीं से काउंट होंगे। तो कम से कम सबसे पहले तो रिडिम्पशन के लिए 3 साल का पीरियड होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, जो ये फंड है ये एक अच्छा फंड है, एक एवरेज फंड है, एक प्योर इक्विटी फंड है, जो सारे ELSS फंड्स होते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा, आपने कहा कि इस वक्त मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर, इक्विटीज़ उसी तरीके से होती है, जो मार्केट है उसी तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कभी भी मार्केट देखेंगे इतिहास में उठा करके, तो शॉर्ट पीरियड में हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन अगर आप वहीं पे एक लंबे समय का उठा करके देखेंगे, 10 साल पहले का उठा करके देखेंगे कि 10 साल पहले मार्केट कहाँ था और आज कहाँ पर है, तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें अगर आपको ज़रूरत है, आप रिडीम करना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। जिस तारीख पे आप रिडीम करेंगे उस दिन जो NAV होगी उसके हिसाब से और जो आपके यूनिट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा उतना पैसा आपको मिलेगा।
3: All right, Akar, we'll continue with the discussions, but first let's take a look at the next big story of the day. Iran's Revolutionary Guard said it had closed the state of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continued. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a U.S. military base in Jordan.
1: अगले कॉलर हैं दिल्ली से रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, मैं आई एम 70 ईयर ओल्ड सर, अभी 70 साल सर मेरी उम्र है सर। मैंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया सर, मेरे काफी दोस्त मुझे कहते रहते हैं लगाओ लगा ले करो, तो थोड़ा थोड़ा सर गाइड करा सकते हैं सर, कैसे लगाएं, किस तरह लगाएं सर, बता सकते हैं प्लीज?
0: जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में, जैसे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी हम कुछ एक दो कॉल्स पहले बात कर रहे थे, उसके लिए होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। इक्विटीज़ में निवेश करने के लिए आपका होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और वहीं पर मैं समझता हूँ कि इवन एट द एज ऑफ 70 एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि इक्विटी में निवेश ना करें, बट वो सही नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत अहम है। अगर लंबे समय के लिए, जैसे जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए इक्विटी बहुत अहम है। तो शुरुआती तौर पे मैं कहूँगा कि आप बहुत थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और किसी भी एक प्लेन इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। एक सेंसेक्स का फंड आप ले सकते हैं या फिर आप एक निफ्टी का फंड ले सकते हैं। ये बहुत ही लो रिस्क इक्विटी फंड्स होंगे इन कंपैरिजन टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे फंड मैनेजर्स खुद पैसा मैनेज करते हैं. ये वाले इंडेक्स फंड्स केवल और केवल मार्केट को रेप्लिकेट करेंगे, बट इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत

0: थोड़ा रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का, क्योंकि अभी आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं। और आमतौर पे एक जो आइडियल एलोकेशन होता है रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में, वो अराउंड 30-40% होना चाहिए। और वहीं पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि हम मार्केट के एक गलत लेवल पे एंटर ना कर जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बड़ी पूंजी एक साथ इन्वेस्ट कर दी और ठीक एक हफ्ते बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो वो एक साथ पूरा पैसा नीचे आते हुए बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टर को एंग्जाइटी हो जाती है। तो बजाय उसके अगर हम लोग तोड़ तोड़ के कुछ महीनों में स्प्रेड करके एक SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा परचेज कॉस्ट है वो एक एवरेज आउट हो जाता है और उससे ये वाला जो रिस्क होता है ये काफ़ी कम हो जाता है। अगर एकदम मैं संक्षिप्त में बोलूँ तो फिर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, SIP के जरिए कीजिए और थोड़ा सा पैसा पहले निवेश करके देखिए।
1: ऑल राइट, लेट्स आस्क शंकर फ्रॉम भोपाल व्हाट हिज क्वेरी इज। शंकर जी सवाल पूछें।
2: नमस्ते सर, आकाश जी नमस्ते।
0: नमस्कार
2: सर, मेरा सवाल है, देयर इज ह्यूज फंड्स कमिंग टू इक्विटी फंड में आ रहा है इंडिया में म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो पहले नहीं होता था। तो इसका लॉन्ग, पहले क्या था, छोटे छोटे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड तो आते, लेकिन अभी हर कोई आने लगा है। इसका प्रभाव हमारे मार्केट में और रिटर्न पे क्या पड़ेगा, कि क्या अब हर कोई चीज महंगी होती जाएगी? जैसे अमेरिका में हुआ, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग गेटिंग फंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन देयर मार्केट S&P and Nasdaq, and they are seeing going through roof. So this is the same thing, trend is going to continue, or there is actually going to be an effect of performance of a company on the its value. And
0: I would say a huge amount of money coming into mutual funds is one of the function of the increasing awareness. सो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देर हैज़ बीन अ ग्रेट अवेयरनेस इक्विटी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्या बेनिफिट होता है। लोग उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा जान रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा है इन्वेस्ट करना। मोबाइल फ़ोन से कुछ बटन्स के थ्रू, कुछ ऐप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहीं पर जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है वो भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इससे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि कुछ किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट और अच्छा हो रहा है, उनको कहीं तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको देखने के लिए। बट वहीं पर उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कि उनको प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है कि किस तरीके के फंड में निवेश किया जाए। बट अदरवाइज एज सच कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
3: और देखते हैं अब सोने और चांदी का हाल। इस हफ्ते सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.6% की गिरावट आई और ये 1,43,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% गिरकर 2,22,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 0.3% की गिरावट आई और ये $4,113.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा लगभग 1.5% गिरकर $60.16 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
1: और दिल्ली से केशव जी जुड़ चुके हैं। केशव जी सवाल पूछें।
4: हाँ जी नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर को कि जैसे कि जो आप यूडिट्स के बारे में बताते हैं, अगर किसी ने यूडिट ले भी लिया हो तो उसमें से बाहर निकलना कितना, किस तरह से निकला जाए अगर उसने ले भी लिया तो, यूडिट में क्या क्या नुकसान होते हैं? और दूसरा, एक एजेंट से हमारी मीटिंग हुई थी, एजेंट ने हमें कुछ अपने अपने तरीके से अपने ही तरीके की कंपनियों में बात में बताई, तो हमें एजेंट से बात करने के में भी क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो नया स्रोता है, नया उपभोक्ता है जो इसमें अपना जाना चाहते हैं चल रहे।
0: केशव जी, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, यूलिप्स में सबसे पहले तो 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है कि जो पैसा आप उसमें निवेश कर चुके हैं उसके बाद नहीं निकला जा सकता। बट हाँ, आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि आप आगे आने वाले प्रीमियम्स जो है उसमें आप ना दें, और बल्कि अगर आप जाके एक इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर अपना फॉर्म देंगे, तो फिर जो आपका फंड में पैसा है, अगर भले ही लॉक इन भी पीरियड में भी होगा, वो उसको उठा करके एक सरेंडर पोर्टफोलियो उनका होता है वहाँ पर डाल देंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा वहाँ से निकला रहेगा और आगे आने वाले प्रीमियम आपके जो आप भरेंगे वो बंद हो जाएंगे। आमतौर पे यूलिप इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि एक यूलिप जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं, ये

एम करता है कि आपको इंश्योरेंस भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन आमतौर पे ये दोनों में ही सक्षम नहीं उठ पाता। इंश्योरेंस के लिए जो एक कवर देता है ये बहुत ही कम देता है। एक यूलिप यूजली जो आपका एक एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 times का कवर देता है, यानी कि अगर आप 1 lakh rupees भरेंगे तो ये आपको 10 lakh का लाइफ कवर देगा, जो कि आमतौर पे काफ़ी कम रहता है। वहीं पर एक प्योर टर्म प्लान लिया जाए तो 1 crore का कवर कुछ

0: वहीं पर एक आपका सवाल था कि एजेंट से किस तरीके से डील की जाए। सो देखिए, वहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे सही लगता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। हर चीज़ के जो रिवॉर्ड्स है उसके बजाय उसका रिस्क जानिए और फिर डिसीजन लीजिए।
1: All right, let's take a look at how our markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in this week. Market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures, and employment data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with two upcoming main board IPOs. SBI Funds Management Limited and Alpine Tex World Limited are scheduled to launch their public issues on July 14, with the bidding window closing on July the 16th. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, US consumer price data index, the South Korean central bank's interest rate decision, and the OPEC monthly oil market report.
2: हाँ, काफ़ी कुछ, काफ़ी गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। आकार, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे?
0: देखिए, इस वक्त जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपने जो फाइनेंशियल प्लान है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है इन्वेस्टर के लिए, उस पे टिके रहिए और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें, पैनिक ना करें।
2: जी, आकार, आज वक्त इतना ही है। कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 15,000 crore rupees into Indian equities so far in July. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States' fresh airstrikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week. That's all in today's edition. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए

0: मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
1: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन 3 देशों में गए जहां भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप्स पे बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6 से 8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो 3 देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहां से शुरुआत करते हैं।
2: देखिए सिमरन जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था 3 देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा, सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है, बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 MOUs हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर

0: 14 समझौतों की बात करें तो ब्राह्मोस मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम भारत से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदेंगे, और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्राह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्रा मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के, सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है, उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है। प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन और केपीयू जनरल इलेक्शन कमीशन जो इंडोनेशिया का है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनाव को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पे भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFCIOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी, और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंघासेरी में, और प्रम्बानान मंदिर जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की, उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर जो जकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20 MOUs और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे परिलक्षित हुई है कि कितनी सफल ये यात्रा रही और कितनी प्रोडक्टिव ये यात्रा रही।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमारे सुनने वालों को बताया कि जो इंडोनेशिया की यात्रा है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक फर्दर स्टेप है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा से जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो महासागर विजन है उनको एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और उनको एक बढ़ावा मिला है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो महासागर विजन है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर इसमें कैसे ये एक हम मानते हैं कि ये यात्रा एक फर्दर पॉजिटिव स्टेप की तरह सामने आया है।
0: एक्ट ईस्ट नीति को जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए, और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर कनेक्टिविटी कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो D's इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से एक परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे हैं, उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछली साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई, मार्च 2025 की यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई, और हमने देखा कि सिर्फ 2 मुलाकातों में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एग्रीमेंट साइन किया। दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है जिसको रेटिफाई इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा, और ये रिकॉर्ड 9 महीनों के समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक बड़ी बात है, मुझे लगता है प्रैक्टिस की नीति में अब वो परिवर्तन आ रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, वो परिवर्तन आ रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों और हमारे रक्षा संबंधों और व्यापार के हितों से जुड़े हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों की यात्रा में साइन हुए उससे पता चलता है। आपने सवाल पूछा महासागर नीति का, तीनों ही देशों के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद से निपटने, नेचुरल डिजास्टर से निपटने, इन तमाम क्षेत्रों में जो महासागर विजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब यह है कि जो इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनकी प्रगति और उनके विकास साथ साथ भारत का भी विकास हो और भारत की सुरक्षा है उसके साथ ही इन देशों की सुरक्षा भी जुड़ी हो, तो महासागर विजन में देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी आता है और आतंकवाद से लड़ना भी आता है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी डिजास्टर से लड़ना भी आता है और जो मैरिटाइम पायरेसी है, गन रनिंग है, नार्कोटिक्स है, उनसे जूझना भी आता है। सीधे तौर पर महासागर विजन से ही ऐसा लगता है कि जो हमारे लिस्ट ऑफ एमओयूज इन तीनों यात्राओं में आए हैं वो उसी से एक तरह से प्रेरित है और ये दिखाता है कि कैसे महासागर विजन को अब धीरे धीरे उस संकल्पना को धीरे धीरे जमीनी तार्किक परिणत में लाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरिटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का सप्लाई दे सकता है, तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है जिसमें जापान और अमेरिका भी हैं, आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत पे, उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें, तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है, तो एनपीटी का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है और इस वजह से ये सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमेरिका के साथ, तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
0: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी की अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है।

0: तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे, हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं। और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीकी था, लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे, वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता है और मैरिटाइम सिक्योरिटी में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता है। न्यूजीलैंड, जिसने बहुत ही कम देश है जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं, वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे, और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक्ट ईस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
1: और हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा है, और भारत की जो नीति है, चाहे वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है। आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
3: सुर्खियों में

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है सांझ ढले आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। जी हाँ, देखिए ये तो बात हमें माननी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो हमसे दूर हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं, उनकी यादें, उनकी बातें और उनका अंदाज वो हमेशा ना हमारे दिल में रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम उन्हें भुलाए नहीं भूल सकते हैं और उन्हीं में से एक कलाकार हैं एस जानकी। जी हाँ, और उन्हीं को याद करते हुए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आखिरी रास्ता से। इस गीत को जैसा मैंने बताया गाया है एस जानकी और मोहम्मद अजीज़ ने।

अगला गीत पेश है फिर कब मिलोगी फिल्म से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गाना सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म को पहले शीर्षक देने वाले थे बंदगी या अनोखा प्यार, पर फाइनली नाम सेलेक्ट किया गया फिर कब मिलोगी। खैर मैं तो यही हूँ अभी आपके साथ, और आपसे मैं जो है गुफ्तगू करती रहूँगी और साथ में गाने भी सुनाते रहूँगी। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, कार्यक्रम जारी है सांझ ढले आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और अगला गीत जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म अभिनेत्री से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर जी ने। इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है वो प्ले किया है, उसे निभाया है शशि कपूर ने, पर इससे पहले, शशि कपूर जी से पहले जितेंद्र जो हैं वो ये भूमिका निभाने वाले थे। पर फिल्म भी काफ़ी अच्छी है और फिल्म के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, और हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि काश वो और फिल्में कर पाती शशि कपूर जी के साथ।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत जो है वो भी समर्पित है इस जानकी को। जी हाँ, उन्हें याद करते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं के गाने से की थी। और ये जो गीत है ये भी आखिरी रास्ता फिल्म से ही है, और जानकी के साथ साथ इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज़ ने। और इस गाने के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि इसमें ना कुछ कोंकणी शब्द भी थे, जैसे कि माका नाका गो, और इसका मतलब होता है कि मैं नहीं चाहती इसे। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए कौन सा गीत पेश करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं ये गीत।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.
2: Now.

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम सांझ ढले, पर आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम जो हैं लाइनअप कर रखे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे मेट्रो विस्तार, बारापुरा एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाएं अब तेज गति से साकार होंगी। उन्होंने आगे बताया कि पूंजीगत व्यय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार को 756 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान कर केंद्र सरकार ने विकास के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और दिल्ली के सामर्थ्य पर अपना अटूट विश्वास भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार

0: करते हुए कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास को एक नई शक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से संशोधित प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास और उत्थान योजना पीएम उदय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह राशि आधुनिक भू सर्वे, जिला स्तर पर पीएम उदय प्रकोष्ठों के गठन और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाए।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग दिल्ली के सभी 13 जिलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पीएम उदय प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। इसके अलावा राजधानी की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग और भू अभिलेखों का अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में पहले चरण के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में शहरी विकास कोष से इस राशि को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली के लाखों निवासियों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ शीघ्र और सुगमता से मिल सकेंगे। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज गुरुग्राम में नवीन न्यायिक न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस भवन को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे न्याय मिलने की गति में तेजी आएगी।
3: इस प्रांगण में न्याय और न्याय की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित और जागृत रहेंगी। ये आवश्यक है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी उतने ही संवेदनशील हों, कानून के प्रति सजग हों और लोगों के अधिकारों के प्रति भी वो संवेदनशील हों।
2: इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन संविधान की मर्यादा, न्यायपालिका पर जनता के विश्वास और आधुनिक न्याय व्यवस्था का प्रतीक है।
4: यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र बना है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस राष्ट्र को समर्पित हो रहा है।
2: वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है।
5: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
2: इस न्यायालय परिसर का उद्घाटन होने से लोगों को समयबद्ध और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के कब्जे से फर्जी पंजीकरण दस्तावेजों वाले और इंजन तथा चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ किए गए 12 लग्जरी वाहन भी बरामद किए हैं।
6: पुलिस ने बताया कि ये गिरोह दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की लग्जरी गाड़ियां 4 से 5 लाख रुपए में खरीदते थे। इसके बाद वो वाहनों के इंजन और चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ कर फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार करते और इन वाहनों को असली बताकर पंजाब और राजस्थान में बेच देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और चोरी के अन्य वाहनों का पता लगाने और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए जाँच जारी है।

0: प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश कर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मंडल की ओर से नियमित रूप से चलाए जा रहे ऐसे अभियानों के अंतर्गत यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली मंडल ने कल आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने के कुल 111 मामले पकड़े गए। अभियान के दौरान 1,11,700 रुपए का रेलवे राजस्व भी वसूला गया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उनके शीघ्र तथा प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनसेवा, संवाद और समाधान के संकल्प के साथ दिल्ली सरकार राजधानी के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने आवास पर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के प्रति जन जागरूकता को लेकर भाजपा के रोहिणी जिलाध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में SIR की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का कल मैसूरू में निधन हो गया। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। एस जानकी के संगीत सफर पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: 6 दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इलैया राजा, MS विश्वनाथन, KV महादेवन और AR रहमान सहित अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की आवाज बनी। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। अपने लंबे करियर में शास्त्रीय, रोमांटिक, लोक, हास्य और भावपूर्ण गीतों को समान सहजता से स्वर दिए। यार बिना चैन कहाँ रे, दिल में हो तुम, सिंगारा विलाना देवा, सकल कला वल्लवन, नगुवा नयन और चिन्नदा मल्लिगे हुए जैसे गीत उनकी मधुर और भावपूर्ण गायकी के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: एस जानकी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जानकी अम्मा की गायकी ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एस जानकी का निधन संगीत जगत और देश के सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में एस जानकी के गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे और उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकी अम्मा के निधन से भारत की संगीत विरासत को अपूर्णीय क्षति हुई है। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस दौरान कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। एशियाई चैंपियन और

0: रजत पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का सदस्य रही सुमन देवी ने कहा कि फिटनेस स्वस्थ जीवन का आधार है। सुमन ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने हर किसी को फिटनेस के प्रति जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
1: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।

0: महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ाने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रूपए प्रावधान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों में संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
1: ये Akashvani है. प्रस्तुत है Akashvani Archives के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर.
0: नमस्कार. Akashvani Archives के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर में आपका स्वागत है.
1: मैं हूँ श्वेता.
0: और मैं हूँ आशुतोष. श्रोताओ, कभी कभी कोई एक व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में ऐसा दर्ज हो जाता है कि वो केवल एक नाम नहीं रह जाता, एक युग बन जाता है. आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व की जिसने अपनी पहलवानी को गौरव, अभिनय को मर्यादा और जीवन को दिशा दी. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध पहलवान और अभिनेता दारा सिंह की. दारा सिंह अपने समय के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे और 55 वर्षों तक पहलवानी की, कुश्ती की सैकड़ों प्रतियोगिताओं में भाग लिया और लंबे समय तक अपराजित रहे.
1: पंजाब की मिट्टी में जन्मे इस बालक को क्या पता था कि एक दिन उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ों में गूंजेगा. धर्मोचक गाँव अमृतसर, जहां दारा सिंह रंधावा ने 19 नवंबर 1928 को जन्म लिया, यहां से शुरू हुआ था उनके संघर्ष और सफलता का अभूतपूर्व सफर.
2: कुश्ती लड़ना तो बचपन में ही शुरू किया था. गांव में रहते थे, पहलवानों को देख देख कर बच्चे भी जो हैं वो पहलवानी शुरू कर देते हैं. और सबसे पहले मैंने कुश्ती जब लड़ी थी तो 8-9 साल की उम्र होगी, और एक मेला हुआ था गांव में और उसमें मैं कुश्ती जीता था और उसका मुझे इनाम मिला था 8 आने, आधा रुपया. तो उस वक्त मैं जब हीरो था गाँव का, मुझे इनाम मिला था. और शौकिया कुश्ती थी, पहले तो शौकिया करते थे. बड़े हुए तो मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला. मेरे पिताजी वहां गए, तो वहां जो अपने लोग हैं हिंदुस्तानी, उन्होंने कहा भी तुम तो बने बनाए पहलवान हो, और वहां कुश्तियां बहुत जोरों से हो रही थी, क्यों नहीं पहलवान बनते. तो फिर वहां जाकर ये मन बना कि प्रोफेशनल रेसलर बनना है.
0: एक छोटे से गाँव का लड़का अपनी कदकाठी से नहीं बल्कि अपने संस्कारों और मेहनत से बड़ा बना. सिंगापुर की धरती पर जब उन्होंने मलेशियाई चैंपियन को पटखनी दी तो न सिर्फ भारत गर्व से भर उठा बल्कि दुनिया ने माना कि भारत अखाड़े में लौट आया है.
2: मैं 21 साल का था जब मलेशियन चैंपियनशिप जीत ली थी. उसके बाद फिर दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में, रंगून में और देशों में गए, और फिर आखिर में हिंदुस्तान में शुरू हुई जब कुश्तियां. तो इंडियन चैंपियनशिप मैंने

0: 1954 में जीती थी और फिर आगे बढ़ते गए, फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती 59 में और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 68 में। किंग कॉन्ग पहलवान जो था वो हिंदुस्तान की चैंपियनशिप में लड़ा था, उसको जीतने से मेरा नाम ज्यादा हुआ था।
1: दारा सिंह केवल दांव, पेच और शारीरिक शक्ति वाले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वो थे धैर्य, तकनीक और मानसिक संतुलन का प्रतीक। डेडलॉक, एरोप्लेन मूव, इन नामों में जितनी शक्ति है उतनी ही गरिमा थी उनके प्रदर्शन में।
0: डेडलॉक और एरोप्लेन भी था, लेकिन डेडलॉक एक ऐसा दांव है जो टांगों में लगता है, जब पहलवान को हारी बोलनी पड़ती है अगर वो लग जाए तो मुझे उसका अभ्यास ज्यादा था, इसलिए मेरे नाम पे ज्यादा मशहूर हो गया कि डेडलॉक लग जाए तो पहलवान को हारी बोलनी पड़ेगी, सामने वाले को पॉइंट देना ही पड़ेगा। डेडलॉक जो है टांगों में लगता है और एरोप्लेन ऐसा है कि जब सामने वाला पहलवान दांव में ऐसे आ जाए कि उसको ऊपर उठा लें, आप उठा के घुमा के फेंकें कि 10 की गिनती तक उठ ना सके, तो समझो कि वो फिर जीत गए आप कुश्ती।
2: और जब अखाड़ा छूटा तो वो आवाज नहीं आई जो अक्सर आती है, अब तो उम्र हो गई, बल्कि उन्होंने कहा अब युवा पीढ़ी को अवसर और मार्गदर्शन देना चाहिए।
0: आखिरी जब कुश्तियाँ छोड़ी हैं तो मैंने अनाउंस किया था कि अभी कुश्तियाँ छोड़ देनी है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कमजोर होने से पहले ही हार के छोड़ें तो उससे पहले छोड़ दें तो अच्छा है, तो मैंने अनाउंस किया था। तो दिल्ली में ये कुश्तियाँ हुई थी इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में और 4 दंगल हुए थे, बाहर के लोगों ने हिस्सा लिया था। एक पहलवान के साथ 2 बार कुश्ती हुई और बाकी दोनों को मैंने जीत लिया था।
1: एक बात हर पीढ़ी को जाननी चाहिए कि दारा सिंह केवल ताकत के प्रतीक नहीं थे बल्कि अनुशासन के जीवन उदाहरण थे।
0: दिनचर्या तो ऐसी थी, पहलवानी करते थे तो 24 घंटे खुराक खानी है, रेस्ट करनी है, वर्जिश करनी है, ये बांटा हुआ था टाइम। एक बार हमारे सेक्रेटरी आ गए मेरे पास, 5-6 पहलवान थे अमृतसर में, तो दंगल नहीं हो रहे थे, 2-3 महीने हम लोग वर्जिश करते थे, तो एक दिन आए कहने लगे एक फिल्म बहुत बढ़िया आई है, फिल्म देखने चलेंगे। तो मैंने कहा भाई फिल्म तो देख लेंगे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो बहुत हंसा, आप लोग करते क्या है, कोई काम तो करते नहीं और टाइम क्यों नहीं है। तो उसको टाइम टेबल मैंने बताया था कि सुबह हम लोग उठते हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे दातन वातन करके गुस्खाना जाके डंड बैठने लगाते, तो डंड बैठने जाते हैं 7-8 बज जाते हैं, फिर उसके बाद ठंडाई बना के पीते हैं और नहा धो के 10 बजे बाजार में जाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, ला के जो खाना है खुद बनाना है, और खा के कोई 12 बजे सो जाते हैं दोपहर को, 3 बजे फिर उठते हैं और 3 बजे फिर अखाड़े में चले जाते हैं, तो 2-3 घंटे वहां लग जाते हैं, वहां फिर शाम को ठंडाई पीते हैं और वापस आते हैं 7 बजे, और 7 बजे जल्दी जल्दी को सुबह जल्दी उठना है और खाना बनाओ शाम का जो है, और 9-10 बजे सो जाओ क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है, तो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं बचता था। एक दिन छुट्टी होती है, 7 दिन में एक दिन फ्री, बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो वो कहने लगा ठीक है फिर ऐसा करो कि जिस दिन तुम छुट्टी होती है ना उस दिन फिल्म देखेंगे। मैंने बोला अभी बहुत जरूरी है अगर फिल्म देखना तो देख लेंगे, लेकिन छुट्टी वाला दिन तो ऐसा होता है कि आराम करो एकदम ताकि शरीर जो है फिर ठीक हो जाए, लेकिन अगर समझते हैं कि बहुत जरूरी है फिल्म देखना चले चलेंगे।
2: श्रोताओ, दारा सिंह मानते थे कि अगर हाथों में ताकत है तो दिमाग में ज्ञान की ज्योति भी होनी चाहिए। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन उन्हें बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
0: पढ़ाई तो घर वालों ने नहीं करनी थी, मेरे दादा ने नहीं करनी थी, मेरे पिताजी सिंगापुर में थे, उन्होंने वहां चिट्ठी लिखी कि इनको पढ़ाना जरूर है, तो मुझे शौक था पढ़ने का, वैसे ही था कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने मुझे डाल दिया गया। 2 साल पढ़ा मैं, तो मैं अपनी क्लास का मॉनिटर बन गया था, तो मैंने अपने किताब में भी लिखा है, मैंने बोला भी उसमें एक फायदा हुआ मॉनिटर बनने का कि पहले तो फट्टी होती थी, उसमें 2 की फट्टी को ऊपर गाचनी मल के उस पर लिखते थे, दोपहर को छुट्टी के टाइम सब लोग अपनी फट्टियां तैयार करते थे फिर उसके बाद लिखा जाता था। तो मैंने पहले तो मैं खुद करता था, फिर मेरे साथी मेरी फट्टी खुद बना देते थे, मुझे तकलीफ नहीं करनी पड़ती थी। दादा को लगता था कि काम नहीं हो रहा, वो चाहते थे कि मैं गाय भैंसे सुबह ले जाया करूं, जैसे चराने लाते खेतों में चुराने के लिए, तो वो चाहते थे वो काम करें। उनका विचार था कि ये क्या काम है, सारा दिन कहता 14-15 साल पढ़ते रहते हैं, एक साल फेल हो जाए तो पूरा पानी में चला जाता, उनको पता नहीं था। तो जब उन्होंने बहुत जिद की तो एक दिन मैं सुबह आया, मैं कभी लाओ मेरा परौंठा लाओ और बस्ता कहाँ है, तो माँ ने कहा तुम स्कूल नहीं जाओगे। मैं क्यों आज परौंठा बना ही नहीं, क्या खाना नहीं बना। मैंने कहा नहीं बना तो मैं आगे खा लूंगा लेकिन मेरा बस्ता कहाँ है। कहते बस्ता भी नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा, दादा ने कहा तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाओ। मैंने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। मैंने तो रोना शुरू कर दिया, नहीं मिला बस्ता तो मैं रूठ के चला गया बाहर, जाकर मैं दोपहर को खाना भी नहीं खाया, वहाँ गन्ने वगैरह खेतों में जाके चुप लिए और बाहर ही रहा। शाम को आया तो मैं तो गुस्से में था, रूठा हुआ था, देखा तो मां रो रही है, तो उससे मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही है, तो उसने कहा देखो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, दादा नहीं चाहते, तो अभी घर में तो उसकी चले दादा की चली, हम लोगों की नहीं चलेगी। मैंने बोला फिर कहते दादा ये कहता है कि पढ़ नहीं है, बहुत संत है हमारे गांव में, उस

0: में कुछ लोग लड़के पढ़ते थे पंजाबी भाषा, तो वो पढ़ लो और वो तो एक घंटे में पढ़ा देता है, उसके बाद काम करना। तो वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, मैं कहा ठीक है फिर स्कूल छोड़ देते हैं तो संत के पास पढ़ते हैं। तो आप हैरान होंगे कि संत के पास हमारे गांव के जितने लड़के पढ़ते थे उनमें मैं ही पढ़ा, सिर्फ अंत तक गुरु ग्रंथ साहब तक पढ़ा मैंने, दूसरे लोगों ने नहीं पढ़ा।
1: श्रोताओं, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और दारा सिंह जी के जीवन में उनके गुरु ने जो बीज बोया वो आगे चलकर एक वट वृक्ष बनकर खिला।
0: एक जो व्यक्ति थे जिससे हमने पढ़ा था, जो संत थे, वो अभी तक उनकी बात याद है कि जिंदगी में सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो घर में जाओगे तो मार से बच जाओगे, लेकिन सच बोलोगे तो मार भी पड़ेगी फिर भी सच बोलोगे तो दोबारा मारनी पड़ेगी, क्योंकि सच बोलने वाला जो है वो ही कामयाब है। उनका ये कहना था कि झूठ बोलने वाला आदमी जो है आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा और बदनामी होगी, और सच बोलने वाला एक भले हो कैसा भी हो, गरीब हो, तब भी उसकी बदनामी नहीं होगी।
2: श्रोताओ, स्वर धरोहर कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक ब्रेक का।

0: जब दारा सिंह फिल्मों में आए तो उन्होंने अभिनय को भी एक अखाड़े की तरह देखा, जहां हर सीन में ईमानदारी, हर संवाद में ताकत और हर भूमिका में श्रद्धा थी।
1: कॉमनवेल्थ चैंपियन जीतने के बाद नाम तो हुआ ही था, तो प्रोड्यूसर मेरे पास एक आया कि फिल्म में काम करो, तो मैं बहुत हंसा। मैंने बोला भाई फिल्म में काम करो, एक्टिंग कौन करूँगा, मैं फिल्म में काम से कर लूँगा, एक्टिंग कौन करेगा। कहते नहीं नहीं, हमारे डायरेक्टर ने, हमारी टीम ने देखा है आप कुश्ती जैसे लड़ते हैं, तो ऐसा ही एक आर्टिस्ट हमें चाहिए। तो कहता है ऐसा आप कर लीजिए, एक्टिंग करवा लेंगे हमारे डायरेक्टर। एक ये भी बात उस जमाने में आई कि गामा पहलवान हुए मेरे से पहले, वर्ल्ड चैंपियन थे हुई, और उनकी बुढ़ापे की जिंदगी जो है बड़ी खराब हुई, तो मैंने सोचा हो सकता है ये फिल्म करेंगे तो बुढ़ापा ठीक हो रहेगा, कुश्तियाँ तो जल्दी नहीं कर सकेंगे ना, बुढ़ापे नहीं कर सकते। तो वो बात वो सही भी हुई कि इसमें जब से कुश्तियाँ छोड़ी हुई हैं फिर इस तरफ ध्यान रहा। पहली फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग और वो फिल्म बहुत अच्छी चली।
2: श्रोताओं, दारा सिंह ने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही फिल्म निर्देशन और लेखन का कार्य भी किया। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान का चरित्र निभाने पर उनको बहुत लोकप्रियता मिली। रामायण में उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया तो ऐसा लगा जैसे वो कोई कलाकार नहीं, स्वयं हनुमान जी ही है।
3: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, भगवान श्री राम का दूत हूँ।
1: हनुमान जी का रोल मैंने पहले किया था, मैंने एक फिल्म भी, जय बजरंग बली नाम था, और ये रामायण वाले को पता था कि मैंने वो किया हुआ रोल, तो ये इन्होंने अप्रोच किया था। तब मेरी एज 58 हो चुकी थी, 59 चल रही थी, तो मैंने उसको अभी तो हनुमान जी का रोल करना है तो कुछ यंग होना चाहिए, ये एज के हिसाब से ठीक नहीं। इन्होंने और भी देखे बहुत सारे पहलवान, फिर कहने लगे नहीं अभी भी आप जैसा कोई नहीं है बॉडी के लिहाज से, तो आप करिए।
0: फिल्मी दुनिया में जब भी किसी सह कलाकार से बात होती थी तो हर कोई यही कहता कि दारा सिंह जैसा को स्टार मिल जाए तो अभिनय आसान हो जाता है। दारा सिंह जी ने अपने समकालीन कलाकारों के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: मेरी एंट्री हुई तो तीन ही हीरो थे टॉप वाले, देवनंद जी, राज कपूर, दिलीप कुमार, तो ये कोई 10 साल छाए रहे हैं उस जमाने में। हम लोग तो जो कहते हैं स्टंट हीरो, यानी एक्शन वाले हीरो जो फाइट वाइट करते हैं, तीनों आते थे, कुश्तियां भी देखने आते थे, तो हमारी वाकफी थी जान शान से सबसे, और मेरे साथ तो सबका ही बर्ताव अच्छा रहा, लेकिन अलग था फील्ड, दोनों का अलग था, स्टंट वालों का और सोशल वालों का। उस जमाने में सोशल फिल्में जितनी महंगी बनती थी, स्टंट वाली सस्ती बनती थी। फिर बाद में जब अमिताभ जी आए, इनके जमाने में फिर एक्शन वाली जो महंगी बननी शुरू हुई और दूसरी सस्ती हो गई, फिर एक्शन बहुत मशहूर हुआ। वैसे दिलीप कुमार जी करते थे थोड़ा थोड़ा एक्शन, और राज कपूर तो बिल्कुल नहीं करता, वो तो कहता था मुझे तो थप्पड़ भी किसको मारना नहीं आता।
2: दारा सिंह जी ने कभी दिखावे की जिंदगी नहीं जी, युवाओं को हमेशा नशे से दूर रहने, कर्मयोगी बनने और सत्य के साथ चलने की सलाह दी।
1: वर्तमान पीढ़ी को यही संदेश है कि अपनी सेहत बनाए रखें, सबसे बढ़िया है पहले सेहत बनाओ और डिसिप्लिन रखो। अगर कोई भी किसी भी खेल में कोई बच्चा जाना चाहता है और मन लगा के अगर वो उसमें जाएगा तो कामयाबी मिलेगी, और सबसे पहले शिक्षा और सेहत दोनों चाहिए।
0: दारा सिंह 2003 से 2009 तक राज्यसभा में रहे, मंच बदला लेकिन मर्यादा और मूल्य वही रहे।
2: 12 जुलाई 2012 को उन्होंने ये नश्वर शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे लिए धरोहर के रूप में जीवित है। एक पहलवान, एक अभिनेता, एक सांसद और सबसे बड़ी बात एक सच्चा इंसान, यही थे दारा सिंह। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com, swardharohar@gmail.com।
0: श्रोताओ, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी। तो अब हमें यानी आशुतोष को
2: और श्वेता को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
2: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आज की कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे श्वेता और आशुतोष, आलेख दीपा कुमारी, प्रस्तुति सहयोग डिंपल, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय ने।
0: यू आर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खेलों के मैदानों की हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चीन की गुआओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टलीना की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव कुछ देर में होंगे आमने सामने। चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने कैलोरिना मुखोवा को हरा करके अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब हासिल किया। इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। और एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके 16 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जो एकदम अंत की तरफ अपने बढ़ चला है और एक के बाद एक खिताबों के विजेताओं के फैसले होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चीन की गुआओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टलीना मडलेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की ग्रैबेला डेबोस की और ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से हराया। पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आपसे कुछ देर में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच में होना है। तो एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन यानिक हैं और दूसरी तरफ फ्रेंच ओपन के विजेता ज़ेवरेव हो गए। इससे पहले चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लिंडा ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अपने ही देश की कैरोलिना मुखोवा पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: लिंडा नोस्कोवा ने कल विंबलडन के एक रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में कैरोलिना मुखोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। दूसरा सेट हारने के बाद नोस्कोवा ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम सेट और मुकाबला अपने नाम किया। 21 वर्षीय खिलाड़ी मुखोवा ने पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और सेट 7-5 से जीत कर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया। हालांकि नोस्कोवा ने अंतिम सेट में फिर से नियंत्रण हासिल किया और अहम मौकों पर संयम बनाए रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ये नोस्कोवा की पहली विंबलडन खिताब और एक बड़ी ग्रैंड स्लैम जीत है। एक

0: 21 वर्षीय नोस्कोवा अपनी आदर्श खिलाड़ी और अपने देश के दिग्गज पेट्रा किवतोवा के बाद सबसे कम उम्र के विंबलडन चैंपियन बनी। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने जीत कर अपने नाम किया। इस एंग्लो फिनिश जोड़ी ने कल एल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। इसी के साथ पैटन ओपन एरा में दो विंबलडन पुरुष डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष बन गए। पैटन और हेलियोवारा ने इससे पहले साल 2024 में यह खिताब जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो तमाम खिताब फाइनल हो गए हैं, बस बचा है मेन सिंगल्स जो अब से कुछ देर में शुरू होगा दो चैंपियन खिलाड़ियों के बीच। और अब रुक करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप का, जहां इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से और अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सुनते हैं इन दोनों मैचों का पूरा हाल।
2: इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की इस जीत के नायक जूड बेलिंगम रहे, जिन्होंने अतिरिक्त समय में टीम के लिए विजयी गोल दागा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के 36वें मिनट में एंड्रियास शेल्डरूप ने पहला गोल करते हुए नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद बेलिंगम ने पहले हाफ में इंजरी टाइम में शानदार गोल दागते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां 93 मिनट में बेलिंगहम का जादू एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने मुकाबले का अपना दूसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को 2-1 की बढ़त दिला दी, जो अंत तक कायम रखी।
3: मॉर्गन रॉजर्स, रॉजर्स लेट्स फ्लाई, इट्स 2-1 इंग्लैंड, बेलिंगहम देयर वंस अगेन, सेव्ड बाय नीलन, हियर कम्स साका, डबल स्टॉप, इंग्लैंड प्रिवेल आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम एंड जूड बेलिंगहम मेड द डिफरेंस, इट हैज फिनिश्ड, नॉर्वे 1 England 2।
2: इससे पहले इंग्लैंड 1966, 1990 और 2018 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1966 में इंग्लैंड ने खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत मिली और 10वें मिनट में मिले कॉर्नर पर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया, जिसे एलेक्स मैक एलिस्टर ने बिना कोई गलती किए हेडर की मदद से गोल में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत स्विट्जरलैंड के नाम रही। मैच के 67वें मिनट में टीम ने मुकाबले में वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। स्विट्जरलैंड की ओर से पहला गोल डैन एंटोय ने किया। 90वें मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। मुकाबला अतिरिक्त समय में चला, जहां 112वें मिनट में अर्जेंटीना के अल्वारेज स्विट्जरलैंड के डिफेंस को भेदने में सफल रहे और टीम को मुकाबले में 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद इंजरी टाइम में लोटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल करते हुए 3-1 से टीम की जीत पक्की कर दी।
3: Almada, the save, but the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals. Argentina's pursuit of greatness goes on. It is Argentina.
2: अब सेमीफाइनल में 15 जुलाई को अर्जेंटीना की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: अड़तालीस टीमों के साथ इस विश्व कप का अभियान शुरू हुआ था और अब ये आंकड़ा सिमट कर 4 टीमों पर आ चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ एकदम स्पष्ट हो चुकी है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष, हमारे सहयोगी विशेष। कौन कौन सी 4 वो टीमें हैं, इंग्लैंड और अर्जेंटीना को अगर हटा भी दिया जाए, बाकी 2 टीमें कौन सी हैं जिन्हें सेमीफाइनल में जगह बनाई और क्या तस्वीर है आने वाले मुकाबलों की?
4: शक्ति, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो फ्रांस और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। फ्रांस एक बहुत ही अनुभवी टीम है और विश्व विजेता भी रह चुकी है। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो ये उनका सिर्फ दूसरा सेमीफाइनल होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव होगा स्पेन के ऊपर, क्योंकि फ्रांस ने 7 बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 2 बार उन्होंने खिताब जीता है और 2 बार वो रनर्स अप भी रहे हुए हैं। तो इस तरीके से स्पेन के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वो मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस विश्व कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें अर्जेंटीना की तो वह 6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है उन्होंने और 3 बार विजेता रहे हैं और 3 बार उपविजेता रहे हैं। और सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना ने आज तक कभी भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं हारा है, तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। और हालांकि इंग्लैंड ने भी एक बार विश्व कप अपने नाम किया है 1966 में, और तीसरा सेमीफाइनल उनका ये होगा, एक बार वो विजेता भी रह चुके हैं।
1: जी बिल्कुल, तो इंग्लैंड वापस दोहराना चाहेगा, 70 साल का इंतज़ार, तकरीबन 60 साल का इंतज़ार हो रहा है इंग्लैंड के लिए। टीम्स की अक्सर बात होती है कौन कौन से खिलाड़ी जिस पर नज़र रहेगी, गोल्डन बूट जो सबसे एक्साइटिंग फेज होता है इस विश्व कप का, कौन सबसे आगे नज़र आ रहा है?
4: शक्ति, इस समय किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन एम्बापे ने उनसे मेसी से ज़्यादा असिस्ट किए हैं, इसलिए वह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात करें तो वहाँ बेलिंगम और हैरी केन वो दोनों बने हुए हैं, लेकिन बेलिंगम ने ज़्यादा असिस्ट किए हैं इसलिए वह तीसरे स्थान पर और हैरी केन चौथे स्थान पर हैं। वहीं डेम्बेले जो हैं फ्रांस के उन्होंने 5 गोल के साथ वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं।
1: जी बिल्कुल, मात्र गोल का महत्व नहीं है, महत्व उन खिलाड़ियों का भी है जो असिस्ट करके गेंद को गोल के करीब तक पहुँचाते हैं। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत के लिए यशिका भाटिका ने सर्वाधिक 113 रन और स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी और भारत ने इसके आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत के लिए क्रांति गौर ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजा था, और पहली बार वो जो बोर्ड है लॉर्ड्स मैदान का जहां पर उन खिलाड़ियों के नाम लिखे जाते हैं जो 5 विकेट हॉल हासिल करते हैं, क्रांति गौर का नाम अंकित हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस उपलब्धि पर क्या कहा।
5: को पता चली है कि एक जो नया रिकॉर्ड है वो मैंने करा है, तय के फैमिली में पहले किसी को कॉल करने का, देन मैंने मेरे बड़े भाई को कॉल किया, देन वो भी बहुत खुश है, देन पूरी फैमिली। देखा जाए आज मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के सारे लोग मुझ पे प्राउड फील कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठी तो मैं सोच रही थी उस बोर्ड के साइड देख के, क्या सेकंड डे है हमारा, क्या आज इसमें नाम लिखवाना है मुझे, मैं करके 5 मिनट तक उस बोर्ड के साइड देखी, देन उसके बाद मैं नीचे गई थी। फिर जैसे मैंने 5th विकेट लिया तो जैसे हर एक प्लेयर्स का अचीवमेंट, देन 5 विकेट की जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की थी मेरी।
1: बिल्कुल, और अब आईसीसी के दूसरे हॉल ऑफ फेम की तरफ चलते हैं, जहां भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपना नाम अंकित किया है। इन्हें क्लास ऑफ 2026 का हिस्सा बनाया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, कल इसकी घोषणा की गई एडिनबर्ग में, और अब कुल संख्या 125 हो गई है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने तीनों पूर्व कप्तानों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।
0: भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने अपने करियर के दौरान भारतीय टीम को एक मजबूत टीम में बदला। शानदार बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन और 311 एक दिवसीय मैच में 11363 रन बनाए। बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट के इस दादा ने भारत को वर्ष 2000 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2003 के फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का संयुक्त खिताब भी जीता। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों के बीच मेरा नाम शामिल होना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। वहीं शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अंजुम चोपड़ा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज 1000 वनडे रन बनाने वाली और 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने 2002 में दक्षिण अफ्रीका में भारत को उसकी पहली विदेशी टेस्ट जीत दिलाई और आईसीसी महिला विश्व कप 2005 के फाइनल तक टीम के यादगार सफर में अहम भूमिका निभाई। यह सम्मान पाने पर अंजुम चोपड़ा ने कहा कि खेल कूद वाले परिवार में पली बड़ी होने के नाते मैंने क्रिकेट के दिग्गजों और उनकी बड़ी उपलब्धियों के बारे में कहानियां सुनी थी। भारत के लिए खेलने का सपना बहुत कम उम्र में ही मन में बस गया था। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केविन पीटरसन को भी उनके शानदार करियर की उपलब्धियों के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: हालांकि एक बुरी खबर भी भारत के लिए इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड ने भारत को चौथे पांचवें टी20 मैच में साउथहैम्पटन में 56 रन से हरा करके श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। निशानेबाजी में भारत की

0: इरू डांडा ने इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है।
1: Well, a great close-up on the cameras, and the cheers go up just off camera. We just caught him there, Pete Wilson, the coach, out of his seat, punch in the air. Still one more shot to go from Carole Cormenier. It's another miss for the French athlete, but the moment that Neeru managed to nail the gold just happened a few moments ago, and you've got a feel for Carole Cormenier. She shot so well, came into this final, made a really good start, a perfect start, actually.
0: तो एक शानदार प्रदर्शन और एक बेहतरीन खिलाड़ी, पहली ट्रैप खिलाड़ी बनी है भारत के लिए महिला वर्ग में, जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, वो भी स्वर्ण पदक। और अब रुक करते हैं एथलेटिक्स का, जहां चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अपना शानदार अभियान 16 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल थे। और अब संडे का दिन है तो बात फिटनेस की जाए, यानी फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसके 81वें संस्करण में आज नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। ये सुनते हैं सुमन देवी ने इस बारे में क्या कहा।
2: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे। और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।
0: जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि साइकिलिंग जो है वो फिटनेस के लिए, पर्यावरण के लिए और तमाम पहलुओं से बेहद लाभदायक होती है। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर उत्कर्ष सक्सेना ने भी फिट इंडिया संडे की सराहना की है और कहा कि ये स्वस्थ भारत बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा।

0: कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने

आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: home away from home.
1: You were listening to a feature titled PG Accommodations, a home away from home, with contributions from Rosalind Matthew, Akashwani, Bangalore, Nihara Kennedy, Akashwani, Hyderabad, Harsh Pandey, Akashwani, Kolkata, Gaurav Simpi, Akashwani, Pune, Himanshu, Akashwani, Kota, Shaurya Chaudhary, Delhi, and Birendra Singh, Akashwani, Jalandhar. The feature was written, produced, and presented by Nitish Arora for the Central English Feature Unit and came to you from the Delhi station of Akashwani. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्यिक जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बयान में क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की।
3: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में यह कहने के बाद आया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से जारी है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियां और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उसने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को हो ची मिन शहर पहुंचा दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटक सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू क्वेक स्थित अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिंग हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। गृहमंत्री कल 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतिस्पर्धा का भी उद्घाटन करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी नौसेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को अमान्य घोषित करने वाले 2016 के फैसले की पुष्टि की। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने ओमान तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव को तत्काल कम करने की अपील दोहराई है। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने स्थायी समाधान के लिए जारी कूटनीतिक वार्ता को शीघ्र ही सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने का आह्वान किया है, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उसने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। कमान के अनुसार हमलों में मिसाइल, ड्रोन और संचार सुविधाओं सहित लगभग 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कतर और कुवैत ने कहा कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों को रोक लिया, जबकि बहरीन ने मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया। इस ताजा तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। विदेश मंत्रालय ने 2017 में जारी उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें यमन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए जारी की गई थी, जिसके चलते भारत ने अपने नागरिकों की यमन यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

0: परंतु एक परामर्श में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे सभी भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह देता है। मंत्रालय ने कहा कि यदि यात्रा बेहद जरूरी है तो इसे स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों की यात्रा से बचना चाहिए जहां संघर्ष सक्रिय हो। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका, ब्रिटेन और बहरीन अन्य पश्चिमी तथा दक्षिण एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सेनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफेनी को 6-3, 7-5 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को अमान्य घोषित करने वाले 2016 के फैसले की पुष्टि की। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मैच जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। आपके साथ मैं विकास, स्वागत आप सबका।

अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अमित कुमार साहब का, और एक कलाकार के तौर पर किसी के अंदर कितनी नरमी हो सकती है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कितना आसान हो सकता है, ये उस इंटरव्यू के दौरान मुझे जानने को मिला। और वो उस इंटरव्यू में तेरी कसम इसी फिल्म का जिक्र कर रहे थे, और अचानक से उन्होंने बात बात में कहा कि जब मैं ये गीत गा रहा था तो इसमें एक लाइन आती है शोख कलियों के घूंघट, और वो वहाँ कहते हैं कि जब मैं ये गीत गा रहा था तो मुझसे गलती हुई और मैंने शोख को शौख कहा, और जो कि रिकॉर्ड के तौर पर इस गाने में भी सुनाई देती है। और जब मैंने दोबारा से इस गीत को सुना और मुझे लगा अरे हाँ, कलाकार के तौर पर कितनी बड़ी बात है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और अपने फैंस के सामने ये बताना कि गलतियाँ हर किसी से हो जाती है। प्रोग्राम चल रहा है हरसिंगार, और हरसिंगार में आज एक बात करेंगे ऐसे गीतकार की जिन्हें अचानक से एक बार भगवान से उनकी मुलाकात हो गई। जी, और जब भगवान से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे गीत लिखने के लिए कहा। तो कौन थे ये कलाकार जिनकी मुलाकात हुई भगवान से और उसके बाद उनके गीतों का सिलसिला एक तरह से चल निकला, जानेंगे ये सब प्रोग्राम हरसिंगार में। आपके साथ मैं विकास।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास। गीत से पहले मैंने एक गीतकार का जिक्र किया और मैंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई भगवान से और भगवान ने उनसे कहा कि मेरे लिए 4 गीत लिखो। जी अचानक से ये कौन शख्स हमारी बातचीत का हिस्सा बना, ये तो जानना दिलचस्प है। बहरहाल ये जो शख्स रहे गीतकार के तौर पर, ये कोई और नहीं आनंद बख्शी साहब रहे, और जो भगवान रहे वो रहे एक्टर भगवान। आनंद बख्शी साहब का वो सफर काफी मुश्किलों का दौर कहा जा सकता है और सफलता एक तरह से अभी थोड़ी सी दूर थी। हर कलाकार का जैसा शुरुआती समय होता है, बिल्कुल वैसा ही समय आनंद बख्शी साहब के लिए था। लेकिन किस्मत की जो गाड़ी थी वो अचानक से पलटी और कह सकते हैं कि यहाँ से आनंद बख्शी साहब का फिल्मी सफर

चमकने लगा। भगवान दादा की जब आनंद बख्शी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने एकदम से उनसे पूछ लिया कि तुम क्या करता है, जिसके बाद आनंद बख्शी साहब ने कहा कि मैं तो गीत लिखता हूं। तो एक तरह का ऑफर आनंद बख्शी साहब को मिला भगवान दादा के जरिए, और अपनी फिल्म के लिए उन्होंने उनसे 4 गीत लिखवाए। फिल्म का नाम था भला आदमी, और 1958 की ये फिल्म थी। और इसी फिल्म के बाद कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों के गीतकार के तौर पर एक और सितारा इस दुनिया को मिला।

मोम की गुड़िया। और फिल्म में जो दो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो है लता मंगेशकर और खुद आनंद बख्शी साहब की। संगीत इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रहा। और अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन दोनों ने तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्में साथ की और 1600 से ज़्यादा गीत अपने चाहने वालों को दिए।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आप तक पहुंचता है। फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, 1970 की यह फिल्म है और एसटी बर्मन साहब का संगीत है और आनंद बख्शी साहब के कोलैबोरेशन की अगर उनके साथ बात करें तो तकरीबन 14 फिल्मों में उन्होंने काम किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund related queries. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Subodh Mishra.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 months, इन्फ्यूज मोर देन 15,000 crore रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States' fresh airstrikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results and geopolitical developments for Q's next week.
1: 4 महीने बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने रुख बदला और इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया. पश्चिम एशिया में तनाव गहराया. अमेरिका के ताजा हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों. कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों और वैश्विक गतिविधियों पर.
0: And before we go any further in the program, may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Sarabjit aur hamare callers intezar mein hain.
0: Ji.
1: सीधे चलते हैं उनके पास. यूपी से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं. विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: मार्केट मंत्र टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
1: नमस्कार.
3: मेरा प्रश्न ये है, मैं इक्विटी क्लास में एसआईपी के द्वारा, मंथली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टेड हूँ और सर बीच में जो मुझे कुछ एरियर मिलता है उसको मैं लमसम अमाउंट में, कम अमाउंट होता है तो उसको लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी के माध्यम से मैं अपने करंट जो एसआईपी है, करंट म्यूचुअल फंड है, उनमें इन्वेस्टेड करता हूँ. अब सर चूंकि आईटीआर मुझे फिल करना है तो मैंने एआईएस डाउनलोड किया है, उसमें मुझे सर अपने म्यूचुअल फंड की एंट्रीज मिली हैं और उसमें सर एक सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विशन, ये दो मुझे चीजें मिली हैं जिसमें मैंने जैसे 5,000 रुपए का एसटीपी चालू किया हुआ था तो सेल्स कंसिडरेशन में 5,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विशन में अमाउंट कम है 4,750 रुपए. तो मैम मुझे क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि मैंने तो केवल एक लिक्विड फंड से और अपना जो करंट एसआईपी फंड है उसमें ही इन्वेस्टेड किया है, कोई रिडीम नहीं किया है कोई भी अमाउंट, तो क्या मुझे टैक्स एप्लीकेबल होगा और मुझे उस टैक्स को कहाँ ITR 1, जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ तो मुझे ITR 1 फिल करना है तो मुझे उसमें कहाँ शो करना होगा, क्योंकि मैंने AIS डिटेल चेक किया तो उसमें मुझे अपनी एंट्रीज जो भी मैंने लमसम अमाउंट किया था उसको एसटीपी के माध्यम से कई सारी एंट्रीज दी है, मुझे उसको कैसे शो करना होगा, प्लीज गाइड.

0: करें?
1: विवेक जी, बिल्कुल, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आपने जो अपनी म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने रिडीम नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने एसटीपी सेटअप किया और एक लिक्विड फंड से आपका पैसा निकल करके हर महीने जब वो इक्विटी फंड में गया, तो भले ही वो एक ट्रांसफर हुआ, लेकिन टैक्सेशन पर्पज से उसको एक तरीके से यही माना जाएगा कि लिक्विड फंड में से पहले वो पैसा रिडीम हुआ और उसके बाद जाकर के उस नए इक्विटी फंड में वो पैसा इन्वेस्टमेंट हुई। तो इसके लिए जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया कि कुछ 5,000 रुपए का सेल कंसिडरेशन है और 4,700 रुपए का जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बेसिकली परचेज कॉस्ट है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भरने के लिए देखिए, जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स पे आजकल जो टैक्स है वो आपके जो भी आपका जो इनकम पे जो स्लैब रेट है, जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करते हैं वही आपको उसी पे आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल होएगा। तो सबसे पहले आपको एक दो चीजें करनी चाहिए। एक तो आप कैम्प्स की वेबसाइट पे जाइए और वहां से एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट पूरा का पूरा पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस फंड पे, इक्विटी पे, नॉन इक्विटी पे आपको कितना कैपिटल गेन है। वहीं पर साथ में जो इस पे आपको टैक्स के लिए जो आपको अपनी आईटीआर में देना है, जो आईटीआर 1 होता है नॉर्मली, उसमें जो अगर खाली आपका इक्विटी फंड से कैपिटल गेन होता है 1.25 लाख तक का, तो हम रिपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन जैसे कि आपके केस में है कि आपने एक लिक्विड फंड में किया था, वहां से कैपिटल गेन हुआ है एक नॉन इक्विटी फंड से, तो जहां तक कि मेरी जानकारी है आपको आईटीआर 2 में उसको दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन्स के शेड्यूल में। भले ही अमाउंट छोटा सा हो लेकिन उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स हो देना पड़ेगा। बाकी टैक्सेशन के लिए एक दफा बेहतर रहेगा कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर ले।
2: All right, and now let's ask Yashpal ji, what is his question? Yashpal ji, sawal poochhe.
3: Good evening, ma'am.
2: Good evening.
3: Actually, my portfolio in the mutual fund is well diversified presently, but to have more stability, I want to go for profit booking from some of the funds where the return is more than 10%, and to invest in some more stable funds like liquid funds, debt funds, and even the secured corporate bonds also, where the interest rate is around 11% with A+ rating. So my time horizon is around 3 years and I'm 62 years old. Please advise which is better option. Thank you.
1: So, as far as I can understand, you plan to bring some kind of stability in your portfolio. Profit booking, just because you have crossed a certain threshold of the annual returns which was set in your mind, would not be right, to be honest. However, what you should be doing is you should arrive at an asset allocation. At the age of 62, I believe, if this is a portfolio which you also use to derive income, the general equity allocation should be at least 30-40% of the complete portfolio. And if it is something that, this portfolio is not something on which you are dependent for deriving a regular income, then probably 50-70% can be very much in equity. So first you need to decide on the total asset allocation, and post that, you can transfer the money into the fixed income part. For fixed income, I would say if you have a horizon of 3-4 years, a good quality short duration debt fund would be the right choice. Liquid fund is something which can be opted for the expenses which are due within the next year. So, for goals which are falling in 1 year, maybe a liquid fund is fine. Otherwise, go for a short duration debt fund.
4: जी आकार, अभी एक श्रोता जो सवाल पूछ रहे थे हमारे कैपिटल गेन्स के बारे में,
1: हाँ जी,
4: वो हमारे कई श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी बहुत अभी चिंता का विषय बना रहता है जब हमें टैक्स फाइल करने का वक्त आता है तो।
1: जी जी,
4: और सबको लगता है कि भाई वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, और कई दफा होता है कि एमएफ सेंट्रल से जो स्टेटमेंट आता है उसमें नहीं होता। क्या हम इसको अलग अलग जो जहां हमने डाला हुआ है जिन म्यूचुअल फंड्स में, उन कंपनियों की जो वेबसाइट है अपनी, उन पर भी जाकर ले सकते हैं हम?
1: जी जी बिल्कुल,
4: वो ज्यादा डिटेल में शायद आता है और हर किसी का अलग अलग आता है उसमें। इसमें एक साथ मिल जाता है आपको म्यूचुअल फंड,
1: हाँ जी,
4: हाँ, सेंट्रल में,
1: हाँ जी हाँ जी। बल्कि अगर आप कैंप्स पे जाएंगे तो कैंप्स पे जाने से सहूलियत ये हो जाती है कि आपको अपने जो भी आपके अक्रॉस द फंड हाउसेज गेन्स है वो सब आपको

0: जगह मिल जाते हैं एक स्टेटमेंट में, बट वहीं अगर मान लीजिए अगर किसी ने कुछ 10 फंड हाउसेस के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वो हर फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएगा तो उसको 10 तरीके के स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे और वहां पे पूरा का पूरा मेंशन होता है कि कितना इक्विटी फंड्स में है, कितना नॉन इक्विटी फंड्स में। आप चाहे तो उसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिटर्न भरते अगर आप खुद जैसे जब रिटर्न भरेंगे तो फिर एक्सेल वाला फॉर्मेट थोड़ा सा ज्यादा सहायता पूर्वक रहता है, वहां पे आप कैलकुलेशंस इजीली कर पाते हैं
1: जी। और अब पहली खबर पे हम नजर डालें आज की कि एफपीआई का रुख बदला है। लगातार 4 महीने तक बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने जुलाई में रुख बदला और इस महीने अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 15,157 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह रहा है। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 6,625 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 3,228 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
2: एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर रवि फ्रॉम दिल्ली। रवि जी सवाल पूछे।
3: मंत्री मंत्रा जी नमस्कार, ये मेरा पहला सवाल है। जैसे मैं 10,000 रुपये मंथली SIP चला रहा हूँ तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है? और दूसरा मेरा सवाल जो ईरान और अमेरिका का ये हॉर्मोस बंद होगा तो मार्केट गिरने की संभावना है या नहीं?
1: ये बहुत अहम सवाल है जो कई लोगों को ये गलतफहमी या खुशफहमी रहती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।
0: जी जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग मिलने का तरीका है वो एक नॉर्मल FD से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अगर एकदम सरल भाषा में बात की जाए तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट या रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न। FD में अगर आपने देखा होगा तो आमतौर पे ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपए की FD की और मैच्योरिटी पे उसमें 10,000 इंटरेस्ट मिला तो अगली बार आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हो जाता है कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आपको रोज के रोज आपके NAV से डिसाइड होती है। एक NAV डिक्लेयर की जाती है जो कि आपके अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू होती है, और यहाँ पे उस NAV के थ्रू अंदर ही अंदर जिस तरीके से वो कंपनीज की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हो रही है तो वो वहीं के वहीं कंपाउंड होता रहता है। तो यहाँ पे आपको FDs के तरह एक अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके कोई खाते में एक अलग से नहीं आएगा, लेकिन वो जो NAV है वही आपकी कंपाउंड होती रहेगी। तो वो टाइम बाय टाइम आप देखेंगे तो आपको जो एक टोटल मुनाफा होता है वो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है बट बेनिफिट वही मिलेगा
1: जी। और किसी भी सूरत में ये इंटरेस्ट नहीं है?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्ट नहीं है
1: जी।
0: और एक दूसरा सवाल था आपका कि अभी जो ईरान में टेंशन चल रही है, वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है तो अभी मार्केट गिरेगा कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट एकदम आगे आने वाले समय में कैसा होगा वो मैं क्या आपको कोई भी बहुत ही श्योरिटी से नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट चल रहा है और जिस तरीके से अभी टेंशन चल रही है, आने वाले कुछ करीबी समय में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहेगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको एकदम जब भी इक्विटी में निवेश करें तो एकदम आने वाले एकदम पास के समय के लिए मत करें और ना ही उसकी चिंता लीजिए। आप बस एक डिसिप्लिन तरीके से आपने एक SIP चालू करी हुई है, आप मैं मानता हूँ आपने जरूर एक अच्छे फंड में निवेश किया होगा, आप बस पूरे दिल से बिना घबराए हर महीने डिसिप्लिन से उसमें निवेश करते रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल रखिए तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए
1: जी। अगले कॉलर हैं कर्नाटक से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: गुड इवनिंग मार्केट कंसल्टिंग टीम।
1: गुड इवनिंग
4: आकार जी, आई वांट टू इन्वेस्ट 4,00,000 रुपीज फॉर अबाउट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, व्हिच फंड शुड आई इन्वेस्ट फॉर लमसम?
0: वीरेंद्र जी, योर होराइजन इज 6 मंथ्स टू 1 ईयर, सो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली नॉट गो बियॉन्ड अ लिक्विड फंड व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। सो फॉर सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन लिक्विड फंड वुड बी अ ग्रेट चॉइस। व्हाइल चूजिंग अ लिक्विड फंड व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट

0: is the expense ratio, definitely lower the better, because there won't be huge difference in returns when it comes to liquid funds. In fact, if you see a liquid fund with a unusually high return than others, then you should not be opting for it. Because while investing in fixed income, the main objective should not be to optimize or to maximize your profit or returns, but rather it should be to bring stability and preserve your capital. Alternatively, you can very well go for a fixed deposit for such a short period of time, because when it comes to the taxation, both are on the same level now. But yes, there will be definitely more liquidity and flexibility in mutual funds, because you would not have to commit to a fixed time period, which would be the case in a fixed deposit. And in case if you go for a fixed deposit, say commit a time period and then happen to withdraw it before that, you'll have to pay penalty on the interest amount. So if you want to go for liquidity and flexibility, opt for a liquid mutual fund for this duration.
1: All right, let's ask Yogesh ji, what is his query? Yogesh ji, sawal poochhe.
2: जी नमस्कार आप सभी को. मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल MF सेंट्रल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी लॉग इन करके पोर्टफोलियो देखने के लिए. MF सेंट्रल का, MF सेंट्रल में एक फीचर आया है जब भी लॉग इन करते हैं कि वॉलेंटरी लॉक इन. तो म्यूचुअल फंड यूनिट को वॉलेंटरी हम लोग एक्स्ट्रा लॉक पे लगा सकते हैं ताकि रिडीम करना उसको मुश्किल हो पाए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए. ये कितना कारगर है और क्या ये AMC लेवल पे भी काम करता है, सिर्फ MF सेंट्रल का अपना फीचर है?
0: नहीं, अभी सेबी द्वारा कुछ टाइम पहले डायरेक्टिव आया था कि अगर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लॉक इन लगा सकते हैं, जो बेसिकली साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कुछ और तरीके के जो इंटरनेट फिशिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए एक ये स्टेप अहेड है. डेफिनेटली एक एडेड फीचर है, एक एडेड सिक्योरिटी है. इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो एक वहां से लॉक इन लगा सकते हैं, बट फिर जब भी आपको रिडिम्पशन करना होगा आपको उससे पहले एक दफा ये लॉक इन खुद हटाना पड़ेगा.
3: जी अगले कॉलर है राजस्थान से, राजेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा था.
3: जी
4: सर, वो मैंने कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड में निवेश किया हुआ है, तो सर अब इसमें रिडिम्पशन का क्या नजरिया रहेगा सर, क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें जो टैक्स सेवर फंड है सर, इसमें रिडेम्पशन का कितना अमाउंट निकाल सकते हैं या क्या उचित रहेगा सर?
0: राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो टैक्स सेवर फंड है, जो ELSS फंड है, इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन है. तो जिस भी तारीख को आपने पैसा इसमें निवेश किया होगा, तब से लेकर के अगले 3 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते. अगर आपने लमसम किया होगा तो, और अगर आपने SIP के द्वारा निवेश किया होगा, तो हर SIP इंस्टॉलमेंट की डेट से उस पार्ट के लिए 3 साल वहीं से काउंट होंगे. तो कम से कम सबसे पहले तो रिडिम्पशन के लिए 3 साल का पीरियड होना चाहिए. उसके अलावा देखिए, जो ये फंड है, ये एक अच्छा फंड है, एक एवरेज फंड है, एक प्योर इक्विटी फंड है, जो सारे ELSS फंड्स होते. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा. आपने कहा कि इस वक्त मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर. इक्विटीज़ उसी तरीके से होती है, जो मार्केट है उसी तरीके से होता है. शॉर्ट टर्म में अगर आप कभी भी मार्केट देखेंगे इतिहास में उठा करके, तो शॉर्ट पीरियड में हमेशा ऊपर नीचे रहेगा. लेकिन अगर आप वहीं पे एक लंबे समय का उठा करके देखेंगे, 10 साल पहले का उठा करके देखेंगे कि 10 साल पहले मार्केट कहाँ था और आज कहाँ पर है, तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है. तो इसमें अगर आपको ज़रूरत है, आप रिडीम करना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं. जिस तारीख पे आप रिडीम करेंगे, उस दिन जो NAV होगी उसके हिसाब से और जो आपके यूनिट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा उतना पैसा आपको मिलेगा.
1: All right, Akar, we'll continue with the discussions, but first let's take a look at the next big story of the day. Iran's Revolutionary Guard said it had closed the state of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continued. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. US Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone, and communications facilities.

0: Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a US military base in Jordan.
1: अगले कॉलर हैं दिल्ली से रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: सोनी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मैं आई एम 70 ईयर ओल्ड, सर मेरी 70 साल सर मेरी उम्र है सर। मैंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया सर। मेरे काफी दोस्त मुझे करते रहते हैं, लगाओ लगा लो सर, लगा ले करो, तो थोड़ा थोड़ा सर गाइड करा सकते हैं सर, कैसे लगाए किस पर लगाए सर, बता सकते हैं प्लीज।
3: जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में, जैसे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी हम कुछ एक दो कॉल्स पहले बात कर रहे थे, उसके लिए होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। इक्विटीज में निवेश करने के लिए आपका होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और वहीं पर मैं समझता हूँ कि इवन एट द एज ऑफ 70, एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि इक्विटी में निवेश ना करें, बट वो सही नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत अहम है। अगर लंबे समय के लिए, जैसे जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए इक्विटी बहुत अहम है। तो शुरुआती तौर पे मैं कहूँगा कि आप बहुत थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और किसी भी एक प्लेन इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। एक सेंसेक्स का फंड आप ले सकते हैं या फिर आप एक निफ्टी का फंड ले सकते हैं। ये बहुत ही लो रिस्क इक्विटी फंड्स होंगे इन कंपैरिजन टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे फंड मैनेजर्स खुद पैसा मैनेज करते हैं। ये वाले इंडेक्स फंड्स केवल और केवल मार्केट को रेप्लिकेट करेंगे, बट इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत थोड़ा रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का, क्योंकि अभी आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं। और आमतौर पर एक जो आइडियल एलोकेशन होता है रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में, वो अराउंड 30-40% होना चाहिए। और वहीं पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि हम मार्केट के एक गलत लेवल पे एंटर ना कर जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बड़ी पूंजी एक साथ इन्वेस्ट कर दी और ठीक एक हफ्ते बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो वो एक साथ पूरा पैसा नीचे आते हुए बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टर को एंग्जाइटी हो जाती है। तो बजाय उसके अगर हम लोग तोड़ तोड़ के कुछ महीनों में स्प्रेड करके एक SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा परचेज कॉस्ट है वो एक एवरेज आउट हो जाता है और उससे ये वाला जो रिस्क होता है ये काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर एकदम मैं संक्षिप्त में बोलूं, तो फिर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, SIP के जरिए कीजिए और थोड़ा सा पैसा पहले निवेश करके देखिए।
0: ऑलराइट, लेट्स आस्क शंकर फ्रॉम भोपाल व्हाट हिज क्वेरी इज। शंकर जी सवाल पूछें।
4: नमस्ते सर, आकाश जी नमस्ते।
3: नमस्कार
4: सर, मेरा सवाल है, ह्यूज फंड्स कमिंग टू इक्विटी फंड में आ रहा है इंडिया में म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो पहले नहीं होता था। तो इसका लॉन्ग, पहले क्या था, छोटे छोटे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू आते, लेकिन अभी हर कोई आने लगा है। इसका प्रभाव हमारे मार्केट में और रिटर्न पे क्या पड़ेगा, कि क्या अब हर कोई चीज महंगी होती जाएगी? जैसे अमेरिका में हुआ, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग गेटिंग फंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन देयर मार्केट, S&P and Nasdaq, and they are seeing going through roof. So this is the same thing trend is going to continue, or there is actually going to be an effect of performance of a company on the its value. And
3: I would say a huge amount of money coming into mutual funds is one of the function of the increasing awareness. So over the last few years there has been a great awareness, इक्विटी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्या बेनिफिट होता है। लोग उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा जान रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा है इन्वेस्ट करना। मोबाइल फ़ोन से कुछ बटन्स के थ्रू, कुछ ऐप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहीं पर जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इससे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि कुछ किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट और अच्छा हो रहा है, उनको कहीं तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको देखने के लिए। बट वहीं पर उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कि उनको प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है कि किस तरीके के फंड में निवेश किया जाए। बट अदरवाइज एज सच कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
1: और देखते हैं अब सोने और चांदी का हाल। इस हफ्ते सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.6% की गिरावट आई और ये 1,43,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% गिरकर 2,22,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 0.3% की गिरावट आई और ये $4,113.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा लगभग 1.5% गिरकर $60.16 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
0: और दिल्ली से केशव जी जुड़ चुके हैं। केशव जी सवाल पूछ रहे हैं।
5: हाँ जी नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर को कि जैसे कि जो आप यूडिस के बारे में बता सकते हैं, अगर किसी ने यूडिस ले भी लिया हो तो उसमें से बाहर निकलना कितना, किस तरह से निकला जाए, अगर उसने ले भी लिया तो यूडिस में क्या क्या नुकसान होते हैं। और दूसरा, एक एजेंट से हमारी मीटिंग हुई थी, एजेंट ने हमें कुछ अपने अपने तरीके से अपने ही तरीके की कंपनियों में बात हमें बताई, तो हमें एजेंट से बात करने के में भी क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो हमें
3: केशव जी, जहाँ तक की मेरी जानकारी है, यूलिप्स में सबसे पहले तो 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है कि जो पैसा आप उसमें निवेश कर चुके हैं उसके बाद नहीं निकला जा सकता। बट हाँ, आपके पास एक ऑप्शन जरूर है कि आप आगे आने वाले प्रीमियम्स जो है उसमें आप ना दे, और बल्कि अगर आप जाके एक इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे अपना फॉर्म देंगे, तो फिर जो आपका फंड में पैसा है, अगर भले ही लॉक इन भी पीरियड में भी होगा, वो उसको उठा करके एक सरेंडर पोर्टफोलियो उनका होता है वहाँ पर डाल देंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा वहाँ से निकला रहेगा और आगे आने वाले प्रीमियम आपके जो आप भरेंगे वो बंद हो जाएंगे। आमतौर पे यूलिप इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि एक यूलिप जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, ये क्लेम करता है कि आपको इंश्योरेंस भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन आमतौर पर ये दोनों में ही सक्षम नहीं उठ पाता। इंश्योरेंस के लिए जो एक कवर देता है ये बहुत ही कम देता है। एक यूलिप यूजली जो आपका एक एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 times का कवर देता है, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए भरेंगे तो ये आपको 10,00,000 का लाइफ कवर देगा, जो कि आमतौर पे काफ़ी कम रहता है। वहीं पर एक प्योर टर्म प्लान लिया जाए तो 1,00,000 का कवर कुछ अराउंड 12,000 से 15,000 रुपये सालाना में मिल जाता है। और बात करें इसके इन्वेस्टमेंट पोर्शन की, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी एक महंगा प्रोडक्ट रहता है। इसके बाद वहीं पर एक आपका सवाल था कि एजेंट से किस तरीके से डील की जाए। सो देखिए, वहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे सही लगता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, हर चीज़ के जो रिवॉर्ड्स है उसके बजाय उसका रिस्क जानिए और फिर डिसीजन लीजिए।
0: ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट हाउ आवर मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू शो अप नेक्स्ट वीक। द डोमेस्टिक मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक क्यूज फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कमोडिटी प्राइसेस, फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी, प्रोग्रेस इन मॉनसून एंड करेंसी ट्रेंड्स इन दिस वीक। मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल क्लोजली ट्रैक की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन डेटा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिगर्स एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा। Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with 2 upcoming main board IPOs. SBI Funds Management Limited and Alpine Tex World Limited are scheduled to launch their public issues on July 14, with the bidding window closing on July the 16th. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, US consumer price data index, the South Korean central bank's interest rate decision and the OPEC monthly oil market report.
1: हाँ, काफी कुछ, काफी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आकार, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे?
3: देखिए, इस वक्त जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अपने जो फाइनेंशियल प्लान है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है इन्वेस्टर के लिए, उस पे टिके रहिए और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें, पैनिक ना करें।
1: जी आकार, वक्त इतना ही है। कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी धन्यवाद।
0: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 15,000 crore rupees into Indian equities so far in July. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States fresh air strikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results and geopolitical developments for Q next week. That's all in today's edition. Goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत आपके साथ मैं विकास।

1975 की यह फिल्म थी और फिल्म का नाम था जूली और किशोर कुमार साहब और लता जी की ये बेहद खूबसूरत सी आवाज़ थी। अगली जो पेशकश आप तक पहुंचती है वो पहुंचती है पर्दे पर, आपको दिखते हैं देवानंद और फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। 1974 की ये फिल्म है और बेहद बेहद खूबसूरत सा संगीत।

तमन्ना तो मेरी भी थी कि कुछ और देर आपके साथ बना रहूं, कुछ और गीत आप तक पहुंचाऊं, लेकिन घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त स्टूडियो से हो चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जल मार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। देशभर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए प्रति चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कल अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है, हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
5: थैंक यू मैडम।
2: श्री अशोक कुमार हैं, आप AGM हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक महाप्रबंधक। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत।
6: थैंक यू मैम।
2: तो ऐसा करते हैं श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
2: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में

0: हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की, छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता, और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की परिजनों की जरूरत पड़ती है वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है आपके लाइफ में तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक मदद मिले, उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेस अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उनके माध्यम से मदद कर सकते हैं
0: जी।
1: और इसका इम्पोर्टेंस यह है कि देखिए लाइफ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाएं 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
0: जी,
1: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है, तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं उसमें ये जो दो स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन दो स्कीम से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
0: जी,
1: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो
0: जी,
1: आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं
0: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो स्थापित काम कर रहा है उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
2: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हितलाभों को जोड़ा गया तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनकी भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी
0: जी।
2: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए 2 प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई ना कोई वित्तीय मूल्य है जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है। अगले 10 वर्ष में मैं

0: कितना कमाने वाला हूं, ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है। इसलिए शायद 2 संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
0: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रूपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म एश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार 25 करोड़ 79 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
1: जी।
0: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा
1: जी। तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
2: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि पीएमजेजेवाई और पीएमएसवाई ये भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराती हैं
1: जी।
2: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए
1: जी।
2: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए, तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर
1: जी,
2: कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध है। अब अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 2026 तक हमारे देश में कितना पीएमजेजेवाई और कितना पीएमएसवीवाई लोगों को उपलब्ध हुआ है
1: जी,
2: तो पीएमजेजेवाई 23,35,00,000 ये फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 2026 तक दी जा चुकी है
1: जी।
2: पीएमएसवीवाई 53,97,00,000 इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें पीएमजेजेवाई और एसबीआई पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे एसबीआई का अगर आप शेयर देखें
1: जी,
2: तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर पीएमएसवीवाई में है। इसको अगर समझें कि पीएमजेजेवाई क्यों जरूरी है, तो पीएमजेजेवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कारण से दुर्घटना होने पे या दुर्घटना होने पे उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए कि उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की दुर्घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है, तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता है। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है
1: जी।
2: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ 436 रूपए एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रूपए है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए
1: जी,
2: ये उसकी कंडीशन है। और 436 रूपए में लेने के बाद एक साल के लिए उसको 2,00,000 रूपए का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
1: जी,
2: तो उसका 2,00,000 रूपए उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए
1: जी। तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि इसी तरह का असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं या

0: श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
1: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
0: जी,
1: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
0: जी।
1: मैं देख रहा था कि 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और 20 रुपए जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो 456 रुपए खर्च होता है
0: जी।
1: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 1 रुपए 24 पैसे, 1.25 रुपए में आपको ये स्कीम 2 लाख का कवरेज आपको मिल रहा है
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
0: जी।
1: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, तो इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें
0: जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया अशोक चंद्र जी ने, कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
2: जहां तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता
0: जी।
2: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है
0: जी।
2: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से 2-2 लाख का वो बीमा नहीं ले सकता
0: जी।
2: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं तो बीमा ले सकते हैं, और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है, और उनके खाते का होना, और खाते को नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं
0: जी। अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
2: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो
0: जी,
2: अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2 लाख का बीमा राशि पीएमजेजेवाई में और 2 लाख की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है
0: जी। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
3: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी,
3: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली, तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया, और इसमें भुगतान का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
0: जी।
3: इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग 1 माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
0: जी।
3: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है, इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे हुई,

0: इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरोटा पे वो कम हो जाता है
1: जी।
0: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी मई महीने में इसका रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें, क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है, सभी खाते इसमें कवर है। आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए
1: जी।
0: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है
1: जी।
0: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए
1: जी।
0: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं
1: जी।
0: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है
1: जी।
0: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके
1: जी।
0: इसमें 2 लाख का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरे
1: जी।
0: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है। सो इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए
1: जी। ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया हैं, माली काका हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा। और जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है, तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है, और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
2: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
1: जी
2: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
1: जी।
2: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है। और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी

0: आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है। तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके और रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझे कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा। बहुत ही सरल है और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
1: जी
0: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो हैं, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है, और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?
2: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
1: जी।
2: पीएमजेजेवाई या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
1: जी
2: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
1: जी।
2: तो हमारी सांझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है, दोनों ही सुदृढ़ हैं इस मामले में, जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो
1: जी। और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से?
3: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, किसी भी कारण से होती है, तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना है, चूंकि एक्सीडेंटल स्कीम है, इसमें 2 लाख का बीमा कवर है, उसमें एक्सीडेंट से है, तो जैसे सर्पदंश से अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये डॉक्टर कन्फर्म करेगा कि हाँ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, हमारे जो खाता धारक है उसकी, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 रिपोर्ट होंगी इसको जैसे ही बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको पोर्टल पर डाल देगी।
1: जी
3: ऐसे ही जो आपने बोला कि आकाशीय बिजली गिरने से अगर होती है तो वो भी इसमें कवर है, दुर्घटना बीमा योजना में दोनों कवर है तो इसमें हो जाएगा। अगर मकान गिरने से हुआ है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है तो इसमें दोनों तरह का

0: बीमा मिलेगा
1: जी।
0: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु, सांप के दसने से, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से या उसका मकान ढहने से हुई है तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए
1: जी। और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
0: सो इसमें देखिए, 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा। जब उसको पता चले उसके डोमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था पति का, उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है। आप जानते हैं कि बैंक में न सिर्फ ब्रांचे हैं, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है, हम उन लोगों को, चूंकि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में रहता है और एक गांव के लगभग काफी लोगों को वो परिचित होता है
1: जी।
0: तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि है उसको पता चल जाता है, तो वो उसको मदद करता है कि इन्होंने जीवन बीमा लिया था, इन्होंने सुरक्षा बीमा योजना लिया था, तो वो उसके कागज बनवाने में भी मदद करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कराने में बैंक को भी मदद करते हैं
1: जी। यानी सुओ मोटो एक्शंस भी हैं, मदद की जाती है।
0: यस
1: जी। यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीमा लेते वक्त अपना नॉमिनी नहीं किसी ने रजिस्टर किया है, उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है?
0: ये जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें प्री कंडीशन है नॉमिनी का नाम देना। जब भी हम बीमा एनरोल करते हैं उसी समय नॉमिनी का नाम उसमें डालना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें नॉमिनी नहीं मिले। बस गलती कई बार ये हो जाती है कि चूंकि फॉर्म अक्सर अंग्रेजी में भरे जाते हैं तो स्पेलिंग में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती है, या लोग कुछ बुलाते हैं घर पे कुछ और, कई बार उस नाम को भर देते हैं, बट नॉमिनी उसमें डालना कंपलसरी है, उसके बिना बीमा आज की तारीख में नहीं मिलता है। तो इस तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं है
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं, छोटे छोटे समूह में महिलाएं ग्रुप इंश्योरेंस भी ले रही हैं। ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं? किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
2: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जैसा कि अभी बताया गया आपको
1: जी।
2: और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं
1: जी।
2: और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको
1: जी।
2: और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए, एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए, आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है
1: जी।
2: ये 2 स्कीम्स का तो लाभ उनको मिलता ही है, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
1: और कंपनियां जो है, जो कि कुछ इम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही हैं, वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
2: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उसके बैंक के खाते से ही होता है
1: जी।
2: और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं, और उसके बाद उनके कंसेंट के बाद ही ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना

0: जाता है तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको। और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं, उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं, ये किया जा सकता है इसमें।
1: जी ये किया जा सकता है जी। कुलभूषण शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी जीवन बीमा निगम के बारे में, तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में, क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं उसमें, कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
2: नीलम जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक हैं शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है। तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ। मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ एमओयू साइन करके कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये हमारे उत्तर क्षेत्र एलआईसी से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं। कहीं भी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसी निजी बैंक ने या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो। तो लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए, हमारी जो भी राजकीय व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत सक्षम है और जितने भी नियामक हैं वो अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं। और ये तो योजना ही सरकार की है और इसमें वित्तीय सेवाएं विभाग हमारे मॉनिटर के रूप में काम करता है, समय समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती हैं, जो भी आंकड़े हैं उस पे अनुसंधान किया जाता है।
1: जी
2: अगर कुछ ऐसा होता तो आज तक पकड़ में आया होता, तो मुझे लगता है कि हम भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को कि ये जो भी प्रणाली है एकदम बढ़िया कार्य कर रही है और वो चिंता मुक्त होके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहाँ मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले, क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त हैं। या तो एक ससेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है, या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल हीयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है।
1: जी और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकती है।
2: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।
1: जी अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस है, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
3: थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सी इंडियाज विजन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग एवरी सिटीजन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावरमेंट। अ डेवलप्ड नेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली एम्पावर्ड। वी एज अ बैंकर, as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there. We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme

0: border in the southwest, that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one. That is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation. We specifically in Northeast, yes, there are difficult terrain, there are difficult road condition, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away, where there is no proper accessibility. But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office. We ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner by way of opening customer service points, by way of giving these mitras from time to time. Post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts, there are also difficult centers. But still then, we are doing our best so that India, everyone is economically strong. Everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like, as a banker, as a financial services, we are working on it.
1: Jee. Thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, वो भारत का पहला गांव है माणा. और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है. तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को. हम आम तौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं, यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं. लेकिन ये भावना नहीं है. ये योजनाएं जो हैं, हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं. और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे. और यही उद्देश्य आकाशवाणी का, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं. और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है. क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है. तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा. मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी. इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से. हमारे साथ थे श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं. श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. और श्री अशोक कुमार, आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए.
2: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में, और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया. जैसे नॉमिनी के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए.
3: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी.
1: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए.
0: धन्यवाद.
1: मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूं. आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ. मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: पोस्ट बॉक्स नंबर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत

कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है।

0: कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हवाई हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। देशभर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने कल एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ सम्पन्न किया। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ के साथ।

फिल्म बहू बेगम से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की। ये फिल्म 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। फिल्म का संगीत रोशन का था और गीत साहिर साहब ने लिखे थे। ये फिल्म रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत जो अभी हमने आपको सुनवाया, हम इंतज़ार करेंगे, के लिए भी जानी जाती है। और इस फिल्म का संगीत दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म पारसमणि से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार थे असद भोपाली। ये फिल्म आई थी 1963 में और इस ये एक संगीतमय फिल्म थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और ये फिल्म संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली आधिकारिक रिलीज फिल्म थी और इस फिल्म को तमिल भाषा में मायामणि शीर्षक से 1964 में रिलीज़ किया गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी।

फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी, आवाज़ महेंद्र कपूर की, संगीत ओपी नैयर साहब का और गीतकार शेवन रिजवी साहब। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने, निर्देशित किया था शहीद लतीफ ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे माला सिन्हा, धर्मेंद्र, तनुजा और रहमान। इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया था और अब बढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ। अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में।

14.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 25 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत आशा जी और शमशाद बेगम की आवाज़ में।

नया दौर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में, दिलीप कुमार और वैजंती माला के अभिनय से सजी हुई ये फिल्म आई थी 1957 में और जिसे बनाया था बी आर चोपड़ा साहब ने, और इस फिल्म का संगीत आज भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा जाता है और बहुत ही चाव के साथ सुना भी जाता है। ये अपने ज़माने की बहुत सफल फिल्म रही थी और ये उस ज़माने की एक क्रांतिकारी फिल्म भी मानी जाती है और मशीन बना मनुष्य को लेकर बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस फिल्म को बनाया गया था। और ओपी नय्यर साहब का पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित संगीत इस फिल्म को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है और ज़्यादा ख़ास बनाता है। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म असली नकली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों के

नक्स की तरह उभरना तुम्ही से सीखा, नक्स की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्तार रफ्तार नजर आना भी तुम्ही से सीखा। तुमसे हासिल हुआ एक गहरे समंदर का सुकून, और हर मौज से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। अच्छे शेरों की परख तुमने ही सिखलाई मुझे, अपने अंदाज से कहना भी तुम्ही से सीखा। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी सी बात पे चुप रहना तुम्ही से सीखा। नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्तार रफ्तार नजर आना भी तुम्ही से सीखा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:35। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ। आवाज़ है तलत अजीज़ की।

वैसे ये बात तो सच है कि जब भी आपसे बातें होती हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है, तो ये ज़मीन चांद से बेहतर नज़र तो आती है, क्योंकि आप और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। कितनी अजीब बात होती है ना कि हम अक्सर खुशियों को आसमान में, चांद सितारों में ढूंढते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारी जो सूखी पड़ी हुई ज़मीन होती है खुशियों की, वो अचानक हमें जन्नत बन जाती है, हमें खुशी महसूस होने लगती है। क्या आपके पास कोई ऐसा ख़ास शख्स है जिसके साथ होने से दुनिया और खूबसूरत हो जाती है? अगर है तो फिर आपका थोड़ा इतराना तो बनता है। अगला गीत भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, आप ही के लिए।

मोहब्बत अगर मुकम्मल हो तो फिर इतराना तो बनता है। और वैसे भी प्यार में जब कोई थोड़ा सा इतराता है तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि दिल को और दीवाना बना देता है। अगर आज रात वो आपके पास हैं तो मुझे लगता है ये वक्त शायद यही गुनगुनाना चाहता है। अगला गीत उन्हीं के लिए।

ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शब्द थक जाते हैं, जहाँ शब्द सीमित हो जाते हैं, वहाँ संगीत अपनी बात कहना शुरू करता है, क्योंकि संगीत अनंत है, असीमित है। मुझे जब मैं इस गाने को सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अनंत में बैठी हुई हूँ। वहाँ से खुद को वापस लेकर आना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अगर इस गाने को सुनते हुए अगर आपने भी इसी तरह का कुछ महसूस कर रहे थे तो थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गाना भी सीधे आपके दिल तक पहुँचने वाला है।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक। वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ

आपकी रात की हम सफ़र मंजू, वक्त हुआ है 2:41 और 57 सेकेंड। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, ऐसी सुरमई रात जहां हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को एक सुर में ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक उस बांसुरी की तरह जो जीवन में संगीत देती है, जीवन में आवाज देती है। अगली गजल अब तक पहुंच रही है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

बस यही तो दिक्कत है कि मोड़ से ज़िंदगी कभी शुरू नहीं होती, बल्कि वहाँ से तो सिर्फ रास्ते बदलते हैं। सच कहूँ, आपको तो मालूम ही है, मैं जैसा सोचती हूँ समझती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। जब मैं ये गज़ल सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में काश एक रिवाइंड बटन तो होना चाहिए था। काश एक बार तो ज़िंदगी, जैसा कहा गया है गज़लों में कहना शायद, या शब्दों में कहना बहुत आसान होता है, पर असल ज़िंदगी में जितना शब्दों में कह दिया उतना ज़िंदगी में कर गुज़रना बहुत मुश्किल होता है, और शायद नामुमकिन होता है, क्योंकि आपको भी पता है ज़िंदगी सिर्फ पल दो पल की है। कल कोई और होगा, कल कोई और था। अगला गीत अभी के लिए।

साहिर साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो उन्होंने अपने वक्त उस दौर में महसूस किया, जिया, वो महसूस करना, वो जीना आज भी बेमानी नहीं लगता, आज भी वैसा ही महसूस किया जा सकता है। इस दुनिया के रंगमंच पर हम सब पल दो पल के मुसाफिर हैं। आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी का मज़ा भी तो यही है, जो पल हमारे पास है वही सच है, बिना इस फिक्र के कि कल क्या होगा, जो है आज ही है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आज ही के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के

0: हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crores 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा,
3: as temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could

भीगी हुई फिजाओं में कुछ राज उतर आते हैं, दिल जब किसी को याद करे तो बादल भी बरस जाते हैं। मोहब्बत का मौसम भी कितना अजीब होता है, एक नाम सुनते ही चेहरे मुस्कुरा जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपकी हमसफर अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात मौसम सुहावना है, ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद खूबसूरत बना दिया है। ऐसी रातें अक्सर दिल के बंद दरवाजों पर धीरे से दस्तक देती हैं, कुछ पुरानी यादें लौट आती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब जाग जाते हैं और कुछ नाम बिना पुकारे ही होठों पर आ जाते हैं। कहते हैं अगर किसी की याद बारिश की पहली बूंद के साथ आए तो समझ लीजिए वो रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं रूह का भी है।

परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। फिल्म थी दो बूंद पानी। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ इजहार कर देने का नाम नहीं। मोहब्बत वो सुकून है जहां किसी की खामोशी भी समझ आने लगे, वहां किसी की मुस्कान देखकर अपना दिन रोशन हो जाए और किसी की उदासी देखकर बिना कहे दुआ निकल जाए। कभी बारिश बनकर बरस जाना, कभी खुशबू बनकर बिखर जाना, अगर याद हमारी आए तो बस मुस्कुरा देना। यही हमारी मोहब्बत का खूबसूरत अफसाना होगा।

जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। दोस्तों, दिल की किताब में एक पन्ना तुम्हारे नाम का है, हर दुआ में जिक्र सिर्फ तुम्हारे नाम का है, बारिश की हर बूंद यही कहती है ये मौसम भी किसी के इंतजार का है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमराही के साथ मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:25:27।
1: ये पर

दोस्तों जानते हो रिश्तों में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? अपनापन। वो अपनापन जहां बातें कम हों लेकिन एहसास बहुत गहरे हों, जहां कोई ये पूछ ले कैसे हो तो उसमें भी पूरी मोहब्बत महसूस होती है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म प्यार का मौसम से। दोस्तों, बारिश की ये बूंद हमें ये सिखाती हैं कि आसमान से गिरने वाली हर बूंद अलग होती है, लेकिन धरती पर जाकर सब एक हो जाती है। ठीक वैसे ही दो अलग दिल जब सच्चे प्यार से जुड़ते हैं तो उनकी धड़कनों की आवाज़ भी एक जैसी लगने लगती है।

की इस रात में जब खिड़की पर बारिश की बूंदें अपनी मधुर धुन बजा रही हैं, ठंडी हवाएं किसी पुराने गीत की तरह दिल को छू रही हैं, तो क्यों ना बातें दिल की जाए। कहते हैं मोहब्बत का मौसम कोई कैलेंडर नहीं देखता, लेकिन बरसात तो जैसे प्यार की सबसे प्यारी साथी है। कभी ये किसी की पहली मुलाकात याद दिलाती है, तो कभी किसी की मुस्कान, तो कभी किसी की याद, जो आज भी दिल के बेहद

भीगी भीगी सी इस रात में एक बात याद आती है, हर गिरती बूंद के साथ तेरी मुस्कुराहट नजर आती है। दूर होकर भी तुम दिल के इतने पास हो कि हर धड़कन बस तुम्हारा ही नाम गुनगुनाती है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते बारिश की बूंदों जैसे होते हैं। छूते तो पल भर को हैं, मगर महक उम्र भर छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग दिल में ऐसे उतर जाते हैं कि हर मौसम उन्हीं का हो जाता है।

चलते चलते बस एक बात, न चांद की तमन्ना न सितारों की ख्वाहिश, बस इतना सा अरमान है इस दिल का कि जब भी बारिश हो तुम्हारी याद मुस्कुराकर मेरे साथ चल पड़े।

इसी खूबसूरत गीत के साथ ही अब हमराही कार्यक्रम से मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक आइए सुनते हैं समाचार हिंदी और अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार

संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी

0: 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
2: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
1: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one-day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. External Affairs Ministry said that Parliamentary Affairs and Minority

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। रोज इसी समय हम आपको सुनवाते हैं सकारात्मक भाव के गीत, जिसमें जुड़ी होती है प्रार्थनाएं, और इसी भाव के साथ आज मैं आपके साथ अर्चना गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं भगवान की प्रार्थना से, क्योंकि ईश्वर ही वो माध्यम है जो हम सबके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हरिओम शरण और नंदिनी शरण की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। दोस्तों, कहते हैं कि हर सुबह हमें ये याद दिलाने आती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया अवसर हमारे सामने है और इस नई सुबह में हमें अच्छे अच्छे विचारों को अपनाना है और दिन को खुशहाल बनाना है।

हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म काबुलीवाला से। दोस्तों, जीवन में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए पूरे मन से प्रयास करें। आइए इस खूबसूरत सुबह की वो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो जीवन में नई उम्मीद जगाता है।

गीत के बाद आपका अरुणिमा कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुबह केवल घड़ी का एक समय नहीं होती बल्कि सोच बदलने का भी समय होती है। यदि दिन की शुरुआत मुस्कान से हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:31:34। दोस्तों याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत है। आज किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, किसी को मुस्कान दीजिए या किसी का मनोबल बढ़ाइए। यकीन मानिए आपका दिन और भी सुंदर हो जाएगा।

0: दोस्तों, सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़ें और धीमे धीमे अंधेरे का रोशनी में बदलना, यानी आसमान का धीरे धीरे रंग बदलना, ये हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति भी बिना थके अपना काम कर रही है। इसलिए हम इंसान को भी लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
1: उठे सबके कदम, देखो रंग।

दोस्तों, हमें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इन बातों से जो खुशी मिलती है वो हमारे अंदर एक प्रेरणा प्रदान करती है, और अक्सर छोटी छोटी खुशियां ही बड़े सुख का आधार होती हैं।

कहते हैं जब सोच अच्छी होती है तो हर दिन अच्छा बन जाता है, और अच्छा दिन बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, कृतज्ञता और मुस्कान के साथ की जाए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है अरुणिमा की ये बातें आपके मन में नया आत्मविश्वास जगाने में सफल रही होंगी। याद रखिए, हर सुबह जीवन हमें एक कोरा पन्ना देती है, उस पर क्या लिखना है ये हमारे हाथ में होता है। इसी सोच के साथ अरुणिमा कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत

नमस्कार, सुप्रभात। रात ने धीरे धीरे अपनी चादर समेट ली है और पूरब के आकाश पर सूरज की हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगी है। हवा में एक नरम सी ठंडक है। पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई सुबह का संदेश बांट रही हैं। ऐसे ही मौसम में आपके साथ मैं जुड़ी हूं, आपकी अपनी अर्चना गोयल, और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम भूर सुहानी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद खूबसूरत पॉजिटिव गीत के साथ।

दोस्तों, सुबह और संगीत का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। एक अच्छा गीत जब सुबह सुबह कानों में पड़ता है तो लगता है जैसे मन की खिड़कियां खुल गई हों और ताज़ी हवा सीधे दिल तक पहुंच रही हो। वैसे सुबह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कल चाहे दिन कैसा भी रहा हो, सूरज ये कभी नहीं कहता कि कल बादल थे इसलिए आज मैं नहीं निकलूँगा। वो हर दिन आता है अपने पूरे उजाले के साथ।

rima ni sa, rima pa ni sa, rima pa ni sa, rima pa ni sa. शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है बीता हुआ कल, हमारे आज के उजाले को कम नहीं कर सकता। साथियों, अगर कल कोई बात मन के मुताबिक नहीं हुई, कोई काम अधूरा रह गया या किसी की बात ने मन को उदास कर दिया, तो उसे आज की सुबह पर हावी मत होने दीजिए। आज नया दिन, नई शुरुआत है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आपने कभी सूरज को बहुत करीब से महसूस किया है? बस कुछ पल खिड़की के पास खड़े होकर, कहीं चाय की केतली से उड़ती भाप, कहीं मंदिर की घंटियां, कहीं दूर साइकिल की घंटी और कहीं कोई माँ अपने बच्चे को जगा रही होती है। यही तो हमारे जीवन की असली तस्वीर है।

अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में हम छोटी छोटी खुशियों को देखना भूल जाते हैं। एक प्याली गर्म चाय, अपनों का साथ, शरीर में ऊर्जा और आंखों में नया सपना। यकीन मानिए, जिंदगी बहुत कुछ दे रही है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए।